उनके बदनों पर दीवाए सब्ज और अतलस के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका परवरदिगार उनको निहायत पाकीजा शराब पिलाएगा।

0: होता
1: और उस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। जिस चीज को तुम झुटलाया करते थे अब उसकी तरफ चलो। यानी उस साये की तरफ चलो जिसकी तीन शाखें हैं।
0: ला ग़लील वला युग्नी मिन अल्लहब,
1: न ठंडी छाँव और न लिपट से बचाओ।
0: इन्नहा तर्मी बिशररिन कल्कस्र,
1: उससे आपकी इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां उड़ती हैं जैसे महल।
0: कअन्नहू जिमालतुन सुफ्र,
1: गोया जर्द रंग के ऊंट हैं।
0: वैलुन यौमइज़िन लिल्मुकज़्ज़िबीन,
1: उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है।
0: هذا يوم لا ينطقون,
1: ये वो दिन है कि लोग लब तक ना हिला सकेंगे।
0: ولا يؤذن لهم فيعتذرون,
1: और ना उनको इजाजत दी जाएगी कि उज्र कर सकें।
0: ويل يومئذ للمكذبين,
1: उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है।
0: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين,
1: यही फैसले का दिन है जिसमें हमने तुमको और पहले लोगों को जमा किया है।
0: فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ,
1: अगर तुमको कोई दांव आता हो तो मुझसे कर चलो।
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ,
1: उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है।
0: إن المتقين في ظلال وعيون,
1: बेशक परहेजगार सायों और चश्मों में होंगे।
0: وفواكه مما يشتهون,
1: और मेवों में जो उनको मरगूब हों।
0: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون,
1: जो अमल तुम करते रहे थे उनके बदले में मजे से खाओ और पियो।
0: इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन,
1: हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं।
0: वैलुन यौमइज़िल लिल्मुकज़्ज़िबीन,
1: उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है।
0: कुलू वतमत्तउ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून,
1: ऐ झुटलाने वालों तुम किसी कदर खा लो और फायदे उठा लो तो तुम बेशक गुनाहगार हो। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको तो झुकते नहीं। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। अब इसके बाद ये कौन सी बात पर ईमान लाएंगे।

وضرب لك

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

صدق الله العظيم.

0: feels like your favorite FM 101.
1: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: कोई सारा दिन गाना सुनता रहे, पसंद रसूख भाई।
1: दादाजी दादा सुनो भेजने दाखो अली जफर दे।
0: हाँ होगा भाई, हमने गाना वाला बड़ा जब

0: आपके लिए FM 11 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक।
1: This is FM 101.

यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या।

0: This is FM 101.
1: आप सुन रहे हैं FM 101 अब बल्ले जावो शाबा।

Righto, in the name of Allah, the merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, and of course, Assalamu alaikum, Ahle Pakistan. Janab se mukhatib aapka host, aapka dosta, DJ Sahil signing in. Alright, Janab, kaise hain tamam log? Yakeenan theek thaak hain, fit hain, mazay mein hain. Khoob enjoy kare apni zindagi ko. It's 8:21 on the dial, and you're listening to the show called Coffee and Cookies with DJ Sahil's Weekend Special. तो जनाब कैसे हैं और क्या हाल है आपके? मैं हूं साहिल और मेरे साथ मौजूद हाय क्यों मेरी खुशियों पे पानी फेरने वाले आप लोग छोड़े 8:22 हो चुके हैं और प्रोग्राम आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। डेफिनेटली आज के प्रोग्राम में खूब मस्ती करने वाले हैं। 111 इज द नंबर, 9202540 इज द नंबर। आप हमें इन दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जनाब प्रोग्राम की पोस्ट जो है वो भेज दी गई है और आज ये पोस्ट जो है मैंने सख्ती से आज मैंने कहा है, मैंने कहा जी मेरी पोस्ट अगर आप लगाते हैं तो उसको फिर आप इंस्टा पे भी लगाया करें। तो लेट्स सी कि क्या होता है। इंस्टा पे लगेगी तो इंस्टा से भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, वहां पे भी जाके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और वहां शामिल होने के लिए हमारा जो आईडी है, जो हमारा अकाउंट है जो फॉलो करना है आपने, दैट इज FM 101 PBC। पीबीसी मींस पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। जनाब प्रोग्राम में शामिल करूंगा आज का पहला गाना, उसके बाद लौट के वापस आएंगे और आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट ट्रैक जो हम प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं वो है ये वाला, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। हियर वी गो। अच्छा ये मैंने प्ले कर दिया, आई हैव नो आइडिया ये इस पे कुछ। चलें एंजॉय कीजिएगा। गुड मॉर्निंग।

0: Righto, welcome back once again. 8:27 हो चुके हैं. आप सुन रहे हैं 101. Well, 111-111 पे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं. प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ. आप भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जरा एहतियात से कॉल लेनी है. नंबर दोबारा यहाँ पे लग गया है. बस क्या ही कर लें हम. सो लेट मी ड्रिंक सम वाटर. मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जो है शुरू करते हैं. जी, तो कॉल आपकी आ रही है 111-111 पे. लेट मी चेक हमारे से टेलीफोन लाइन्स पे कौन मौजूद. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया. इस लाइन नंबर 3 पे ना हमेशा ये वाली ट्यून के साथ मामला खराब हो जाता है. आई हैव नो आइडिया कि क्यों, लेकिन कुछ मुझे लग रहा है कि वापस मामला जो है वो गड़बड़ वाले लग रहे हैं मुझे टेलीफोन के. जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
1: जी तमाम
0: अच्छा,
1: मेहरबानी
0: ठीक है. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
2: जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. प्यारे उस्ताद जी, प्यारे भाईजान, क्या हाल चाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल. बड़ा जाने पहचानी आवाज लग रही. कल भी बात हुई थी मेरे ख्याल से, राइट?
2: सर कल बात हुई तो नहीं थी, लेकिन कॉल आपने उठाई थी, लेकिन मुझ तक आवाज नहीं पहुंच रही थी.
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं हाफिज सुहेल अख्तर कमाली बात कर रहा हूँ, जिला मेंबर आजाद कश्मीर से.
0: अरे वाह सुहेल साहब, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
2: जी अल्लाह का करम, आज शुक्र है कि आपकी आपने कॉल उठाई है तो आपकी आवाज सुनने में मिली है.
0: चले सर, आप बड़े लकी हैं कि आपकी पहली कॉल शामिल हुई आज प्रोग्राम में, आपको पता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, पहली कॉल. अक्सर प्रोग्राम आपके जो है वो सुनता हूँ, जब लिंक करते हैं ना सियालकोट वाले आपके साथ, फिर आपका जो प्रोग्राम चलता है या गुफ्तगू होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है मुझे.
0: अच्छा, आप सियालकोट से कॉल कर रहे हैं?
2: नहीं, जिला भिम्बर आजाद कश्मीर से.
0: अच्छा, मतलब सियालकोट की ट्रांसमिशन आपके पास आती है, हमारी आती है?
2: सियालकोट की भी आती है, आपकी भी आती है, क्योंकि ये दामन पहाड़ियों का दामन है, शादी शहीद के करीब ना.
0: सही सही सही, ठीक हो गया. क्या कहना चाहेंगे बोलिए.
2: सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह.
0: थैंक यू.
2: आपकी पूरी टीम को सलाम करूँ, सुनने वालों को सलाम देता
0: हूँ. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया.
2: ये बताएं कि इस्लामाबाद का जो है सिचुएशन क्या है? मैंने के लिए आना था आंखों के लिए.
0: इस वक्त जो सिचुएशन है बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है, कोई इश्यू नहीं है. हाँ, लेकिन आप फिर भी जहाँ आ रहे हैं उस तरफ से आप कहीं से अगर और मजीद मालूमात लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन रास्ते खुले हुए हैं.
2: सारे मालूमात आपसे लेना बेहतर है ना, क्योंकि आपसे ज्यादा. हाँ
0: जी,
2: कोई नहीं
0: जी, रास्ते तो खुले हुए हैं. और जो अभी ये भी सुना था कि जो अभी थोड़ा सा धरनों वाला सीन है वो आगे चला गया, अब है नहीं, जो रास्ते खुले हुए हैं. जाहिर कैपिटल है, बंद तो नहीं कर सकते ना, लोगों की रसाई है.
2: मैंने अल शफा में आना था ना, आप दुआ भी करें मेरी आंखों के लिए.
0: जी जी इंशाल्लाह,
2: आंखों का ऑपरेशन होना था 24 तारीख को, तो वहां के रास्ते बंद हैं, तो फिर 2-3 दिन जो है वो डिले कर दी थे, इसलिए आपसे पूछना वो मुनासिब समझा.
0: ठीक है ठीक है, आप कॉन्टेक्ट जरूर करें, अपने हॉस्पिटल से पूछें कॉल करके. वैसे रास्ते खुले हुए, जो हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन यही है. ठीक है
2: जी, ठीक हो गया सर.
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. एक और कॉल. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर है. दूसरे नंबर से कॉल कर रही है. कैसी हैं आप? ठीक हैं?
3: ठीक ठाक.
0: अच्छा मैं बात सुनो, देखो तुम जब भी आई हो ना कॉल पे यहाँ तो हमारी जिंदगी में कुछ कुछ ना कुछ हुआ है. और ये देखो कौन आया. हेलो,
4: कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम राहत, क्या हाल है?
3: मैं ठीक, बस बाले बड़े रह गए.
4: बाले बड़े
3: ऐसी ऐसे गाल नहीं अंदर करनी. अच्छा
4: क्यों
3: हम आप से बात कर रहे थे? कैसे
0: ये नहीं चल रहा, ये ले ले.
3: हां जी ठीक हुई है
4: अल्हम्दुलिल्लाह. मैं वैसे भी ठीक थी, रास्तों की वजह से नहीं आ रही. मेनू क्यों हो रहा है?
0: एक मिनट ठहर जाए यार, एक मिनट ठहरे. रिबेका ये और माइक्स नहीं चल रहे हैं तो ये मुझे मजा नहीं आ रहा भाई. कुछ जाए नहीं, सबको आवाज मेरी आ रही है, इनकी आ रही है.
4: बाहर पूछे ना मलाइका को, अगर आवाज आ रही है इसका मतलब बाहर.
0: यार कहने का मकसद माइक 3 माइक 2 कोई भी आपको नहीं अगर आवाज दे रहा तो इट मीन्स के देर इज समथिंग ना, कोई चीज इशू हुई हुई है. ये तो गलत है. ये भी बंद है, सारे माइक्स बंद है सवाय इसके.
4: चलो तो मुझे बताओ सब कैसा चल रहा है घर में, सब ठीक ठाक है?
0: ये
3: शुक्र अल्लाह का.
4: आज तो मेरा दिल नहीं चाह रहा, पता है सुबह 4 बजे तक मैंने सीरीज देखी है और मेरी अम्मी मुझे उठ के कह रही है, वो उठी है तो उनको पता चला मैं जाग रही हूँ, तो मुझे कहती बस हमारी जो पंजाबी माए नहीं करती, बस फिल्मा देखती रही, नींदरा ना पूरियां करी। मैंने कहा यार क्या हो गया, फिल्में तो देख रही हूँ, मेरा प्रॉब्लम है राहत, मैं एक सीरीज शुरू कर लूँ जब तक वो खत्म नहीं होती मैं सोती नहीं हूँ। अरे मैं देखे, मैं डिस्क्लेमर सुनो ना राहत, मैं ना डिस्क्लेमर भी चला देती हूँ, खुदा का वास्ता ये हरकत नहीं करनी जो मैं कर रही हूँ। मलाइका तुम्हें आवाज आ रही है तो अंदर आओ। हाय हाय हमारे तो माइक ही नहीं चल रहे। राहत तू की किता आके सुबह सवेरे?
1: मलाइका
4: मैं जाती मैं जाती हूँ। तो कुछ फूक मारी,
3: यही कह रहा था ना।
0: अच्छा मेरी बात सुने, आप लोगों ने बता रहा है, आप लोगों ने बच्चे क्या होता रहा यहाँ पे, कोई माइक ही नहीं चल रहा, सिर्फ ये चल रहा है, एक वो चल रहा है।
4: करो हमारी आवाज आ रही है या नहीं, जरा पहले बाहर जाके एक काम करो,
0: कॉलर की आवाज अब आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हाँ। ये वाला माइक जो है ना इसमें भी इशू आ रहा है, चेक कर
3: लेते।
0: तो जदों भी आई है ना, क्या नाम है अपना,
4: राहत
0: बानोबाजी,
4: हाँ हाय तू तो सीधिया सा डिश कहता लाल लग जाती।
0: सही बात है,
4: है? आपको मैसेज कर
0: क्या कह रही है?
4: थैंक यू।
0: पोस्ट
4: पोस्ट नहीं लगाते ये
0: पोस्ट?
4: हमारी ये
0: नहीं, हमने पोस्ट मैंने भेजी थी, पोस्ट लगा दी होगी उन्होंने, सिंगल वाली लगाई, मैंने कहता डबल वाली लगाई,
4: जो कि आई थिंक हमने कमेंट से पढ़ने तो वो भी रहे तो लोगों को सुन के पता चल जाएगा।
0: इशू नहीं, चले सही है। इस वक्त जो मसला है वो ये है कि कॉलर्स की आवाज जो हमारे माइक के थ्रू जा रही है, लेकिन डजंट मैटर, कोई बात नहीं, लोगों ने तो हमें ही सुनना है ना।
4: अच्छा बताओ राहत, नाश्ता किया तुमने? छोड़ दो,
3: मैंने आपको बहुत मिस किया।
4: मुझे या साहिल को?
0: इन्होंने, मैं तो सारे वक्त आता रहा, मेरी कोई छुट्टी नहीं थी, आपको इतना मिस कर रहे थे सारे, इतना मिस कर रहे थे, आपकी तो सोच हमने कहां कहां पहुंचाया आपको, अभी आपको कॉलर आके बताएंगे।
4: थैंक यू राहत, तुम जीती रहो। साहिल को तंग किया तुम लोगों ने? साहिल को तंग किया? साहिल को तंग किया?
3: कोई नहीं,
4: करना था ना, क्या फायदा, मैं नहीं हूँ तो तुम लोगों ने ये काम भी नहीं किया कि तो काम करना
0: इतने, है। इतने इतने तेज है उन्होंने, इतना तंग किया, इतना तंग किया कि कोई हिसाब नहीं है।
4: अरे राहत तो
3: तंग किया
4: है, किसना अगली स्थिति होगी सुना, मैं तेनो की की दे। राहत आप जीती रहो, आप ना लव और लव, प्यार और प्यार। हाँ राहत
3: ठीक है,
0: इसी का तो इंतजार है लोगों, कि आप लोग आपस में लड़ाई करें।
4: सलामत रहो, प्यार दुआएं ढेरों ढेर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखे। अरे वेलकम, अरे काश तुम्हारे दिल जैसे दिल दुनिया में लोगों के पास और भी हो। मैं कह रही हूँ बस मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि आप लोग ना, मैं नहीं होती तो साहिल को तंग किया करें, ठीक है? बस अब अपना टास्क समझ जाए। बस ठीक है, जीते रहो।
0: अब बहुत सारी कॉल जा रही है राहत,
4: अपना ख्याल रखो।
0: मैगी करो,
4: राहत है।
0: अब मैं तुम्हारा नया नाम भी बताता हूँ, मैं भी रिबेका।
4: हाँ, क्या रखा है?
0: मैं भी बताता हूँ, लोगों ने रखा, मैंने रखा, एक बंदा है
4: क्या कहता
0: है आगे ना सलाम दे रहे सबको, तो कहते हैं उनको भी सलाम, उनको भी सलाम, राहत फतेह बानो को भी सलाम। राहत फतेह, उस दिन से जितने लोग आए ना, अगर राहत फतेह बानो
4: आप सोचो ऊपर से ढक्कन मेरी अभी ना राया को देखे आई हूँ कि मैं निकलने नहीं देर थी, कहती मैंने साथ जाना है,
0: ढक्कन रखा उसने।
4: हाँ जी, उसको ढक्कन दिए। हाँ
0: घर घर पानी नहीं निकाल लिया
4: उसने। मैं तो शर्मिंदी हो गई, मैंने कहा यार बगैर ढक्कन की
0: बोतल। जी एक और कॉल हमारे पास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? जीती रहे। आए हैं बिनते हवा, क्या हो गया तुम्हें? हवा नहीं चल रही उधर,
4: नाश्ता नहीं किया बिनते हवा ने। बिनते हवा क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात, समथिंग सीरियस, कुछ मसला है?
4: नहीं।
0: तो क्या बात है, आपकी आवाज क्यों इतनी वो हुई हुई है?
4: मैं तो सही बोल रही हूँ। बिनते हवा क्या कहना चाहोगी, क्या कह रही हो? हाल चलो ठीक है, फिर मैं भी नहीं पूछूंगी।
0: तो फिर फिर अल्लाह हाफिज करिए, फिर की करिए।
4: क्या टॉपिक क्या रखा हुआ?
0: टॉपिक अभी रखने दिया कहा तुम लोगों ने?
4: रखने भी तो दो टॉपिक, सांस भी तो लो।
0: हेलो,
4: चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो बिनते हवा। कुछ कहना है बिनते हवा?
3: नहीं।
4: अच्छा चलो थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
4: अच्छा कुछ कहने के लिए तो कॉल किया करें ना।
0: नहीं मुझे थोड़ा सा लग रहा है शायद थोड़ी मेबी ऐसा अपसेट है, शायद मे भी हो सकता है, कोई होता है ना कभी पर्सनल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत तंग कर रही होती हैं, उसके वजह से उनको फिर वही लोग नजर आते हैं जिनसे उनकी बहुत मोहब्बत हो, उन्हें कॉल कर लेते हैं लेकिन वो शायद
4: भी तो करें।
0: हाँ ये मसला है कि हमें तो कॉल करके अगर आप कुछ भी ऐसी बात नहीं करेंगे तो हमसे तो फिर यही उम्मीद करें कि हम तो हंसी रहे होते हैं आगे बैठ के।
4: नहीं फिर देखिये हमारा
0: नहीं, मैं तो नहीं रो सकता इस तरह।
4: एक और बात है साहिल, देखिये एंड हमारा काम क्या है, हमारी ड्यूटी और जॉब क्या है, हमें अपने भी कितने सारी जिंदगी में मसले होंगे।
0: बिल्कुल सही है,
4: बिजली का बिल आ गया होया नहीं, और कितना कितना बिल आ गया।
0: आज मेरी सासू माँ का ऑपरेशन है,
4: किस चीज का
0: नहीं नहीं पित्ते दा ऑपरेशन है।
4: सी हाय ना,
0: तू गुड फॉरन बहुत की तू,
4: अल्लाह
0: को सही जिंदगी दे।
4: लेकिन आप देखिए कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं।
0: हाँ
4: आपको हंसना है साहिल,
0: सही बात है।
4: मेरी अम्मी ना, शायद मैंने पहले भी ऑनर किया, मेरी अम्मी कहती है पंजाबी में, क्योंकि पंजाबी मदर है मेरी, तो वो कहती है हंस के कट्टो या रोके कटनो,
0: कटनी तो है, है। सही गाल है।
4: तो कहती है अगर तुसी हंस के कट्टोगे तो काट दिया पता नहीं लगेगा,
0: लगेगा।
4: And it's like, पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है।
0: पता मैं बताऊं, हम चूंकि इतने जज्बाती होते हैं अपनी चीजों को लेकर, हमें उस वक्त नहीं आइडिया हो रहा होता कि जो हमें ये कह रहे हैं, हमें ये लग रहा है हमारी प्रॉब्लम ही नजर आ रही होती है, लेकिन वो जो बड़े होते हैं ना, उन्होंने जिंदगी के तरह तजर्बे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं उनके कि उनको पता होता है कि यार ये काम ही यूं भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चे इनको नहीं अकल अभी इस चीज की समझ नहीं आ रही, तो हमें नहीं समझ आता।
4: और मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ, कोशिश किया करें कि आप ना दूसरों के तजुर्बात से सीखें, जरूरी नहीं अल्लाह माफ करे कि आप खुद कोई ठेस खाएं, आपका कोई बैड एक्सपीरियंस हो, आपके साथ पैसों का फ्रॉड हो जाए, बिजनेस में फ्रॉड हो जाए, किसी भी तरह से कोशिश किया करें कि जो आपका, अब हमें लगता है कि बड़े का मतलब होता है जो आपसे उम्र में 10-15-20 साल बड़ा है, वही आपसे उम्र में बड़ा है, किसी का शायद एक्सपीरियंस
0: आपसे
4: ज्यादा है, तो आप उन चीजों से जरूर सीखा करें। उसके बाद जो है ना,
0: सबसे बड़ी मिसाल ये कि भाई हमारी गाड़ी पंचर हो जाए या हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, तो जो मैकेनिक है, जो बनाने वाला है, वो छोटा बच्चा 12-15 साल का पंचर जोड़ देता, हम नहीं कर सकते उस तरह से ट्यूबें खोलकर सारा कुछ, लेकिन वो कर लेते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस है उसका। तो हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस है, और ये कॉल नहीं लेनी
4: जी,
0: ये कॉल लेनी है जी।
4: अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे
0: साथ? तू आई है तो मैं रोना ही पड़ गया लोगों को। हेलो
4: जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मेरे साथ ये कौन आदमी जी मेरे साथ शो कर रहा है, आप कौन है, नाम बताइएगा।
0: तो मुझे भी तुम्हारा वो लग रहा है, कामिल सा।
4: नहीं कामिल नहीं, नाम तो अपना नाम तो हराइएगा।
0: नसीर जट।
4: नसीर साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं जी पिछला हफ्ता मैंने शो नहीं किया था, रास्ते थोड़े से मुश्किल में थे, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी ना फंस जाए। चले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
0: लोग जो है ना, हाँ इसको आप बेशक
4: तार, नहीं नहीं ये तार अंदर फंसी हुई है, रहने दे, छोड़े मुझे आईडिया।
0: वो ना लोगों को मैंने सारा सिचुएशन बताई कि भाई इस तरीके से हालात जो है वो बंद हैं सारे रास्ते वगैरह, और हम फीमेल एम्प्लॉइज जो हैं उनको हम जो है वो थोड़ी सी वैसे भी प्रेफर करते हैं कि भाई आप कोशिश करें कि अगर थोड़े से मामला इस तरह, तो आप स्पेशली गाड़ी पे थी तो वो
4: Have you seen the containers?
0: Yes, exactly. बहुत ज्यादा अभी तो कम आप देख रही है इस साइड पे, मैंने कोई छुट्टी नहीं की, मैं रेगुलर आ रहा था। यकीन करें कि इतने कंटेनर थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जाते ही, मैं तो आपको पता है
4: बंद हो जाऊंगा,
0: मैं जाते ही मेरे पीछे लगा देने उन्होंने कंटेनर। एक दिन तो बीच में मुझे कॉल भी आई कि आप निकले यहाँ से क्योंकि अभी कुछ मामलात हो सकते हैं, तो इस वजह से भी वो था। लेकिन मैंने लोगों को बताया, मैंने लोगों को बताया कि देखिए कंटेनर से वॉट एवर जो भी हो, रिबेका के घर के बाहर खड्डे खुदे
4: वो इसलिए नहीं,
0: रिबेका नहीं निकल सकती वहां से।
4: झूठ बोले नन नन
0: यार, देयर इज समथिंग,
4: देयर इज समथिंग। मेरे पीछे लोग बैठे जिन्हें तुसी मनु गल कीती ना, मैं आपको बताऊं लिसनर्स, इन्होंने मुझे बात की है, स्टूडियो में खलबली मच गई है, मैं इनको कह रही हूं मुझसे बच के
0: रहे, मैं ना बंदे आ रहे हैं,
4: मैं ना बंदे आए
0: हैं,
4: मक्कल मेरे नाल में। So, मैं आपको, अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वेयर आई लिव, मैं आज कोशिश करूंगी कि अगर वापसी में मैं ना, क्योंकि ड्राइव करते हो तो मैं बिल्कुल फोन यूजिंग इट, मैं वीडियो बनाऊं। कैन यू बिलीव, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हाउ इट इज पॉसिबल वेयर आई लिव, वो पूरा मतलब दो तरह से उसकी एंट्रेंस है, मतलब एक तरफ से आप एंटर होते, दूसरी तरफ से एंटर भी हो सकता है, एग्जिट भी हो सकता है, इस तरह का। कैन यू बिलीव इट, एक पिंडी को रास्ता निकल रहा है, एक इस्लामाबाद को निकल रहा है, वो दोनों तरफ कंटेनर्स रखे हुए और हम कह रहे हैं एक सेकंड की मार होएगी और ऐसे उन्होंने कंटेनर लगा दिया। मैंने कहा हमारी साइड पे क्यों रखे,
0: उधर उधर के उधर है ना,
4: मतलब नहीं लिटरली आप बीच में रह जाएंगे जिस जगह पे हम रहते हैं। मैंने कहा फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एंड देन इट वाज अलार्मिंग, माय मदर इज लाइक छड़ परे तू रेडियो तो जेड़े पैसे मेरे को ले ला। मैंने कहा यार इतने कम पैसे सब देने को तैयार हो जाते हैं घर में तो हमसे ले ले। हमने कहा काश रेडियो डबल ट्रिपल कर देना।
0: अच्छा दे मैं रात को हम लोग आई एट गए थे एक डिनर पे, तो रास्ते में ना मेरे ऑफिस का रास्ता आता तो वहां इतने कंटेनर्स खड़े थे। मैंने कहा यार थोड़ा सा आगे करके गली बंद करो ना याली, छुट्टी करानी है तो पूरी कराओ तुम लोग यहाँ पे, ये क्या बात है, हमारी गली खोली हुई जहाँ से अंदर जाना है इन्होंने तो खोला। बारे लेके अल्लाह ताला भाई खैरियत का मामला करे, मुल्क के हालात अच्छे रहे, कोई इस तरह के मामला ना हो।
4: इसमें साहिल जो आप बात करें उसमें मैं जरूर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, देखिए एट द एंड ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं प्रोटेस्ट की तो पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो हर आई थिंक
0: नेशन का वो है
4: राइट बनता है, लेकिन जिस तरह से हमारे मुल्क में चीजें होती है, और मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस तरह गवर्नमेंट अच्छे तरीके से मुल्क को चला रही है हमें उस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग, मैं एज अ जनरल, मैं एक सिविलियन पाकिस्तानी नेशनल होने के नाते आपको बता रही हूँ, चीजें बहुत हद तक बेहतर हैं। हाँ मसाइल होते हैं, हमने ये भी तो देखना, असल में हमारा प्रॉब्लम ये है हम ना इंटरनेशनल मीडिया को बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, ना हम उनको सुनते हैं। हम अल्लाह माफ करे ये जो हमारे चार चैनल्स हैं ना हम उस पे देख लेते हैं निजी चैनल्स, और वो फिर जब आते हैं ना टुनटुनू और आपको बता रहे हैं फलाना हो रहा है, हम उस चीज पे इतना लगे हुए हैं कि हमें नहीं पता कि वाकई ही इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन अगर देखी जाए तो पूरी दुनिया में है, लेकिन अगर हम फ्यूल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, अभी मैं भी तो देखे इतनी दूर से आई हूँ और मेरी गाड़ी तो लेती भी इतने सीसी है।
0: मेरा मैं पता कहता है इतनी दिन से सोच रहा था, मैंने कहा कि अब किस तरह
4: Literally,
0: इसका गुजारा,
4: इट्स ऑलमोस्ट टेक लाइक कि कितने 4-5 लीटर लगा के आप आ जा रहे हैं। और खैर
0: थैंक यू रिबेका, थैंक यू सो मच।

101. A ballet, ballet, a shower, shower.

0: Street Socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हरमैन शरीफ़ैन हमारी रेड लाइन है, जिसकी हुरमत और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने वैक्सीन और ज़रूरी तिब्बी इक़दामात तक मसावी रसाई और मुस्तक़बिल की वबाओं से निमटने के लिए आलमी इदारे सेहत की क़यादत में कसीर जहती रद्द अमल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शामिल ममालिक के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने सऊदी अरब को दरपेश सिक्योरिटी की सूरत हाल और खतरात का जायजा लिया है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मशरिकी वुस्ता में जंग मुज़ाकरात के जरिए खत्म करने पर जोर दिया है। खबरें तफसील के साथ।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: हर वक्त बार वक्त
1: बदलती दुनिया में आज
2: आपने तो मेरे साथ
3: पाकिस्तान
4: पाकिस्तान
5: दिस इज एफएम 101.

0: متحد پاکستان، مضبوط پاکستان، ہمارا وطن پاکستان ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جہاں مختلف رنگ و نسل، زبان، مذہب اور سماجی اقدار کے حامل افراد آباد ہیں۔ یہاں مسلمان اکثریت کے ساتھ اقلیتی برادری بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس سلسلے میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی طرف سے متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے عنوان سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن برائے اقلیتی حقوق ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں غیر مسلم شہریوں کے جمہوری حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے جمہوریت اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان ہیں شبانہ عارف۔ آئیے پروگرام سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم سامعین، متحد پاکستان اور مضبوط پاکستان کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری ایک اقلیتی برادری یعنی کہ ہندو برادری کے وراثت کے قانون کے بارے میں بات ہوگی آج، کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پرسنل لاس کے بعد سب سے اہم جو لا ہوتا ہے وہ سکسیشن یا وراثت کا قانون ہوتا ہے کہ جو کسی شادی کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی وراثت کیا ہوگی، کیسے وہ چلیں گے آگے، ان کو کیا حصہ دیا جائے گا، ان سے کیسے بات کی جائے گی۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں اکثریت یعنی مسلمانوں کے لیے وراثت کے واضح قانون موجود ہیں، جبکہ یہاں پہ رہنے والی اقلیتوں میں ہندو برادری جو کہ تقریباً ملک میں پاکستان کی آخری مردم شماری کے مطابق 50 لاکھ، لیکن اور محتاط اندازوں کے مطابق تقریباً 80 لاکھ ہے، ان کے لیے وراثت کے قوانین موجود نہیں ہیں، لیکن اگر کچھ اصول اور ضوابط ہیں بھی تو ان کے اوپر خاطر خواہ عمل نہیں ہو رہا۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے جو ہے دعوت دی ہے اپنی ایک بہت ہی عزیز ہماری دوست ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ممبر رہی ہیں۔ ان کے لیے جو سب سے اہم بات میں کہہ سکتی ہوں وہ یہ کہ جو ہندو میرج ایکٹ سندھ میں بنا 2017 اور 2018 میں، ان میں ان کا بہت فیصلہ کن کردار تھا، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا اور اب وہ وراثت کے قانون کے اوپر بھی بہت گہرائی سے کام کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ قانون بھی ضرور پاس ہوگا۔ نمستے۔
2: نمسکار،
1: کیسی ہیں آپ؟
2: بالکل ٹھیک۔
1: پشپا، آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس قانون کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے، کیا وجہ کیا ہے بھائی؟ مطلب آپ کی اب شادی کے تو قوانین بن ہی چکے ہیں، تو پھر وراثت کے قانون کی کیا خاص ضرورت ہے؟
2: دیکھیں، ہم اگر ہم تاریخ دیکھیں، 1947 سے پہلے دیکھیں تو ایک 1925 کا قانون موجود تھا، سکسیشن ایکٹ موجود تھا۔ اگر ہم تاریخ کو دہراتے ہیں تو ہم یہاں آبادی میں دیکھیں 50% جو ہیں وہ میل ہیں اور 52% فیمیل ہیں۔ ہم خواتین کی بات کرتے ہیں اور ہم خواتین کو امپاور ہونے کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ خود مختار ہوں، با اختیار ہوں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ان کی وراثت کا، ان کے حقوق کا، ہم یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ خواتین کو ان کے حق دینا چاہیے، لیکن جب ہم وراثت پر آتے ہیں یا ان کے جانشینی پہ ان کے حق کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم صرف بیٹے کو سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہی ہماری وراثت کا حقدار ہے، یہ روایات کہتی ہیں، یہ ہمارے پرانا کلچر کہتا ہے، جو پرانی اقتدار ہیں یا پرانی روایات ہیں ان کے مطابق ہم بیٹے کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ہم ان کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں، لیکن بیٹی کو یہی کہتے ہیں کہ اعتدی ہے، اس کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم جب ان کو خود مختار بناتے ہیں اور وہ شعوری طور پہ ایک اہم جو ہے اس معاشرے کا فرد ہوتی ہے تو ان کی ملکیت میں حصے دینے کے لیے ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی وراثت کا حق نہ دیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس پر سوچنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے برابر میں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری مسلم بہنیں ہیں ان کو تو شرعی طور پہ وراثت کا حق دیا گیا ہے، اور وہیں اگر میں سمجھوں کہ میرے والدین یا میرے پیرنٹس میں مجھے کوئی حق نہیں مل رہا ہے تو اس صورت میں مجھے ایک ایسی فیلنگ آتی ہے کہ دیکھیں، ہم اسی ملک کا حصہ ہیں، اسی ریاست کا حصہ ہیں، لیکن وہاں ہم خواتین جو ہیں ہمارے پاس وراثت کے حق نہیں ہیں، انہیریٹنس لا موجود نہیں ہے۔ हाँ इतने 77 सालों के बाद, 78 सालों के बाद हमें हिंदू मैरिज एक्ट जो है 2017 का अमेंडमेंट एक्ट आके 2018 में मिल तो गया, लेकिन जब हम दूसरे हकूक़ की बात करेंगे तो उसमें हम समझते हैं कि ख़वातीन जो हैं, ख़ास तौर पे हिंदू ख़वातीन जो हैं, उनके हकूक़ भी बहुत अहम हैं।
1: तो आप हमें बता रही थी कि शायद जो जस्टिस भगवान दास थे उनकी बेटियों को भी नहीं राइट मिल पाया सक्सेशन का।
2: जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब देखें वो जस्टिस मतलब इंसाफ दिलाने वाले, जब उनकी ही बेटी अपने हक से महरूम रही। यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं, दिया भागा और मताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट। तो जो हैं हमारे जस्टिस साहब, जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद उनकी बेटी ने जब अपना हक मांगा तो उस वक्त उनको कहा गया कि क्योंकि आप मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट हैं उसके मुताबिक जो है वो अपना जो है हिस्सा नहीं ले सकती हैं। तो एक जस्टिस इंसाफ दिलाने वाले की बेटी को भी जब हक नहीं मिले तो एक आप समझ सकती हैं कि वो ख़वातीन या वो बच्चियां या वो ख़वातीन जो हिंदू अकलियत से ताल्लुक़ रखती हैं उनके पास एक मैसेज जाता है कि हमारा इंसाफ कौन करेगा।
1: बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जो कानून आप तजवीज़ कर रही हैं उसके क्या अहम पहलू हैं, क्या अहम उसकी शिकें हैं?
2: देखें सबसे पहले तो ये कानून जो है बराबरी का हक देता है, उसकी जो शिकें हैं उसके मुताबिक आप बराबर के हिस्सेदार हैं। 50% अगर आपके पास बेटे का हिस्सा है तो 50% बेटी का हिस्सा है। जब आप बराबरी की बात करते हैं, इक्वल राइट्स की बात करते हैं, ख़वातीन को कहा जाता है कि इनके भी इक्वल राइट्स हैं, तो वहाँ हम क्यों ना सोचें कि उनको जो है बराबरी का हक दिया जाए। विरासत में बराबर जो है वो किसी और जिनसे भी सिंफ से ताल्लुक़ रख सकते हैं, जैसे बेटा बेटी बेवा। उसके बाद ट्रांसजेंडर को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है कि अगर वो उसका ज़ाहिर औलाद तो है ना, तो क्यों ना उसको भी वहाँ पे हम हिस्सा देने की कोशिश करें,
1: उनको भी 50% ही आपने कहा।
2: बिल्कुल, वो भी उसी मिल्कियत का हिस्सेदार है। देखें विरासत कब होती है, जब किसी की डेथ हो जाए या किसी का इंतकाल हो जाए उसके बाद जो है वो हम विरासत तकसीम करते हैं। तो उस वक्त जब तकसीम हो रही होती है तो उस वक्त हम सबका सबसे पहले तो बेवा आ जाती हैं उसमें,
1: ठीक है,
2: उसके बाद बेटा बेटी, फिर अगर बेटा बेटी मौजूद नहीं है तो बेटे के जो औलाद है आपके पोता पोती वहाँ तक ट्रांसफ़र होता है। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो फिर आपके जो ब्लड रिलेशन है वहाँ पे आपकी ये तकसीम होती है, डिवाइड होती है। तो मेरे ख्याल में एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है कि उसमें तमाम पहलुओं को जो है हमने नज़रसानी करके ये तजवीज़ किया है कि वो तमाम जो हायर्स हैं, क्लास वन क्लास टू के हायर्स हैं, जिसमें पहले तो आपके जो इमीडिएट हायर आ जाते हैं उन तक ये पहुंचना चाहिए, उसके बाद क्लास टू है, फिर क्लास थ्री है। इस तरह से हमने उसको तकसीम किया गया है कि अगर वो उनके वालिदैन, फिर उसके बेवा जो है उसका हक देना। इससे पहले अगर हम देखें तो बेवा को कोई हक नहीं दिया जाता। आपको पता है कि यहाँ अगर मैं थरपारकर की बात करूँ तो वहाँ जब डिस्प्लेसमेंट हो रही थी और आफ्टर जो है थरकोल के ज़मीनों की जो विरासत हो रही थी उनकी तकसीम हो रही थी, तो अगर एक बेवा थी, एक बेवा है और उसके पास 10 एकड़ ज़मीन थी और उसके जो शौहर है उसका इंतकाल हो गया है लेकिन उसको वो ज़मीन नहीं मिल रही क्योंकि उनने उसके जो भाई उसके जो देवर हैं उन्होंने उस ज़मीन में कहा कि ये जो है क्योंकि इनके शौहर मौजूद नहीं हैं तो ये जो ज़मीन है हमारे नाम कर दी जाए। तो मेरे ख्याल में इस तरह की वो बेवा जो है अब भी दरबदर हैं, वो बेवा जो है उनके पास खाने को नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो हमें सोचना पड़ेगा कि उन ख़वातीन को हिस्सा देना बहुत ज़रूरी है, और वो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो हमारे माशरे का ज़ाहिर है एक फ़र्द तो मौजूद है, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि उनको उनका हिस्सा दिया जाए।
1: अच्छा, मेरा उससे फिर अगला सवाल आपसे ये बनेगा कि आप क्योंकि सिंध में रहती हैं और आप ख़ुद भी सिंधी हिंदू हैं, तो आप मुझे बताएं कि एक दो मेरे सवालात हैं। एक तो ये सवाल है कि जो सिंध में रहने वाली अक़लियती बरादरी, हिंदू बरादरी की जो ख़वातीन हैं, उनकी ज़िंदगी पे ये जो विरासत का कानून है ये किस तरह उनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा, नंबर एक। और नंबर दो, आप ये बताइए कि जो मुख्तलिफ़ ज़ातें हैं हिंदू में, जैसे कि कुछ शेड्यूल कास्ट हैं और कुछ सो कॉल्ड कहा जाता है कि ऊँची ज़ात के हिंदू हैं, वो किस तरह से देखेंगे, क्या उसमें कोई फर्क होगा, किस तरह से देखा जाएगा?
2: देखें, कानून जब स्टेट लॉ बनता है किसी के लिए तो वो सबके लिए बराबर होता है,
1: ठीक
2: उसमें कोई भी ऊंच नीच या उस कानून के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो तो सबको बराबरी का हक देता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो शेड्यूल कास्ट है, मेरा ताल्लुक भी शेड्यूल कास्ट से है
1: जी।
2: और मैं भी उन्हीं कम्युनिटीज़ को बिलोंग करती हूँ जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। यहाँ आपने बात की कि अपर कास्ट के जो लोग हैं वो किस तरह से जो है इस कानून को देखते हैं, बहुत सारे हमें ऐसे जो लोग मिले कि उन्होंने हमें यही कहा कि जब हम बेटी को पढ़ाते हैं, बेटे को भी बराबर का दर्जा देते हैं तो उनको विरासत में भी हिस्सा बराबर होना चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पे हमें ये बताया गया कि आप जो हैं, हमारी तो बहुत सारे बैंक बैलेंस हैं या हम बिज़नेस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किस तरह से विरासत जो है वो तकसीम करेंगे। तो देखें, जब भी कोई किसी की डेथ होती है तो उसके बाद ज़ाहिर है जब फौती खाता बनता है तो उस वक्त तमाम जो वारसीन हैं उनको बुलाया जाता है, उनके साइन लिए जाते हैं कि आपकी जो मिल्कियत है वो किस तरह से तकसीम होगी। ये पहले भी एक तरह से मौजूद था लेकिन अब जो है इसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है कि इसमें बेटी और बेवा उनके भी बराबर के हुकूक हैं। इस एक्ट की जो दफ़ा 4 है वो ये कहती है कि तमाम वारिसिन, वो मर्द औरत या वो किसी भी बुनियाद पर तफरीक के बग़ैर जो है वो अपनी खुद कमाई हुई जायदाद में बराबर की हक भी रखते हैं। और उसमें सबसे अहम ये है कि उसमें सिन्फी इम्तियाज़ ख़त्म हो जाता है। सबसे अहम बात ये है कि आपका सिन्फी इम्तियाज़ ख़त्म हो जाता है, तो ये उनकी लाइफ में एक बेहतर और पॉजिटिव मेरे ख़्याल में चेंज है कि अगर मैं अपने वालिद की जो है मिल्कियत में से या उनकी प्रॉपर्टी से, अगर मैं, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ तो मैं अपनी तालीम कैसे जारी रखूँ,
1: ठीक है,
2: तो उस सूरत में मैं अपने वालिद की प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा लेके अपनी तालीम जारी रख सकती हूँ। या अगर मेरे पास अपने पास कुछ, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मेरे शौहर के पास इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है और वो इतना मुझे कमा कर नहीं दे सकते हैं, उस सूरत में मैं अपना कारोबार कर सकती हूँ,
1: बिल्कुल ठीक है,
2: बिजनेस कर सकती हूँ।
1: अच्छा, ये जो आपका मजवजा जो कानून आप कह रही हैं, जिसकी आप तजवीज़ पेश कर रही हैं, इसमें दफ़ा 4 के मुताबिक ख़वातीन की विरासत में बराबरी को कैसे यकीनी बनाएंगे आप?
2: देखें, ये मैं अभी आपको कह चुकी हूँ कि दफ़ा 4 जो है वो सिन्फी इम्तियाज़ ख़त्म करती है, उसके तहत जो है बराबर के हुकूक दिए गए हैं। और दफ़ा जो 5 है उसके मुताबिक जो है उसमें जो महदूद मिल्कियत जो है ना, जो आपकी लिमिटेड स्टेट कहें जिसको हम महदूद मिलकर, उसका तस्वुर ख़त्म हो जाता है कि बेटी को, आपने देखा होगा कि हमारी रिवायतें कि डावरी या जहेज़ देके ये कहा जाता है, आपके फ्रिज, टीवी और बैंक बैलेंस, इसके अलावा आपको सोना चांदी इतना कुछ दिया जाता है आपके जहेज़ में, लेकिन वो जहेज़ अलमारियों में पड़ा रहता है, वो जहेज़ आपके ससुराल में आपके किसी काम नहीं आता है। मेरे लिए, मैं उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करूँ, मेरे किस काम आएगा, वो एक मटीरियलिस्टिक या मटीरियल है। अगर मुझे उस प्रॉपर्टी से हिस्सा दिया जाए, इससे एक बहुत अहम बात ये आती है कि हम उस डायवरी की इस लानत को भी ख़त्म कर सकते हैं कि मेरे ख्याल में जहेज़ एक बुरी लानत है।
1: बिल्कुल।
2: तो एक जो फादर हैं वो अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक बिज़नेस क्लास है वो अपनी बेटी को 50 तोले सोना दे रहा है और मेरे फादर जो हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो मुझे जहेज़ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो उस एक दूसरे को देखते हुए कि इसने इतना दिया है तो वो कर्ज़ की उसमें आ जाते हैं और वो लोन लेके मुझे वो उतना सोना देंगे, तो वो उनकी पूरी ज़िंदगी उस कर्ज़ को चुकाने में लगी रहेगी।
1: बिल्कुल।
2: तो ये एक मेरे ख्याल
1: इसके मुकाबले में जो विरासत है जितना मौजूद है बस उसमें से
2: आ जाए, तो आपका, आप डावरी ना दें, आप उनको जहेज़ ना दें, आप उनको इतना सोना देने के बावजूद वो जो सोना है वो उनके जो ससुराल ही हैं, फिर उनके, देखें आप, और बहुत सी चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि जलाया जाता है उनको, बर्नर से जलाया गया, वो आपने देखा होगा ज़्यादातर बहुएं जलती हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: वो क्यों जलती हैं? ताकि उनके जो जो सोना या चांदी या उस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन पे कब्ज़ा किया जा सके, उनको बेचा जा सके, क्योंकि वो हमेशा से, बेटी जो होती है अपने वालदैन की चीज़ों से बड़ा प्यार करती है, उन अपने जो भी जहेज़ में मिले होते हैं तो बड़ा प्यार करती है, तो वो जब उसको मिसयूज़ किया जाता है या उसको कहीं बेचा जाता है तो वो ज़ाहिर है कोशिश करती हैं बेटियाँ कि इनको ना दिया जाए। तो मेरे ख्याल में रोका जा सकता है इसको कि जहेज़ जो है उसकी लानत को रोक, आप अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा दे दें बेटी को, कम अज़ कम वो अपनी मिल्कियत की खुद। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, वो ये इस लॉ में है इनहेरिटेंस की, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मेरी जो मिल्कियत मुझे मेरे वालिद ने दी या उस प्रॉपर्टी से, आप सिर्फ बेटी को नहीं दे रहे हैं, आपके घर में जो बहू है वो भी तो ला रही है ना आपके
3: बिल्कुल
2: पास.
3: सही.
2: अब वो जो मिल्कियत है या वो जो विरासत है, वो जो छोटी सी प्रॉपर्टी मुझे मिली है, उसकी मैं खुद मालिक हूँगी. अब वो मेरी मर्जी है कि मैं उसको जो है किसी को हैंड ओवर करूँ या किसी को तोहफे में दे दूँ या अपनी कोई विल बना दूँ. वो मेरी अपनी मिल्कियत है ना, वो मेरा अपनी चीज़ है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं उसमें अपने आप को खुद मुख्तार भी फील करूँगी और किसी पे इनहसार नहीं करूँगी.
3: अच्छा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि यहाँ तक सुनने में आता है और मुख्तलिफ कि ख़ास तौर पे जो हिंदू बरादरी, उसमें ये भी होता है कि अगर बेटी बहू जहेज लेकर आती है तो वो आगे बेटी को देने में काम ले लिया जाता है वो जहेज, और फिर वो लड़की वहीं की वहीं के उसके पास कोई भी चीज़ ना रही. तो ये भी क्या कोई ऐसी सिचुएशन है या ये वैसे ही ख्याल है?
2: नहीं, ये तो हमारी कल्चर का काफ़ी जगहों पे जब आपके इस तरह के केसेस आप देख रहे होते हैं कि बहू बहुत सारा जहेज ले आई, वो फिर है ना उसको वहाँ से लेकर वो बेटी के जहेज में डाला जाता है. वो कहते हैं आपको, आपकी शादी हो गई, मेरे बेटे के लिए मैंने ये सोना चांदी आपको दिया था, तो अब ये मेरी बेटी को ब्याह रहा हूँ तो उसके लिए ये मैं इस्तेमाल करूँगा. तो ये रिवायतें वाकई में मौजूद हैं, और इन रिवायतों को तोड़ने के लिए और उस प्रेशर को कम करने के लिए, उस तकलीफ को, उस दुख को कम करने के लिए मेरे ख्याल में हमें इस कानून को लाने की अशद ज़रूरत महसूस हुई है. और इस कानून के आने के बाद मैं समझती हूँ कि ख्वातीन के लिए एक बहुत बड़ा मिसले रहा होगा या हमारे लिए एक रोशनी की किरण होगी कि हम उस खिड़की में देख सकेंगे कि वो जो जहेज की लानत भी ख़त्म हो रही है, मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ और मैंने जितनी अपनी दौलत या अपनी मिल्कियत या अपनी प्रॉपर्टी या एक छोटा सा प्लाट लिया है वो मैं अपने, अगर मैं अपनी बेटी को देती हूँ तो मेरी बेटी तो खुश होकर ही जाएगी ना. मेरी 3 बेटियाँ हैं.
3: अच्छा.
2: और तीनों बेटियां जो हैं, अब रिवायतें ये कहती हैं कि मेरे जो जेठ हैं या मेरे जो देवर हैं या मेरे वो जो इन लॉज हैं उनके मुताबिक ये बेटियां ब्याह देंगी. उसके बाद जो इसकी जो भी थोड़ी बहुत इसने जो कमाई है अपनी मेहनत से वो तो हमारे नाम हो जाएंगी, हम उस पर कब्ज़ा कर लेंगे. तो ये इस चीज़ को भी हमें तोड़ने की सख्त ज़रूरत है कि ये जो कल्चर है या जो रिवायतें हैं हमें कहती हैं कि इन लॉज के पास जाएगा, तो मैं, मेरी औलाद तो मेरी बेटियां हैं. बेटे और बेटी में मैंने तो कभी फ़र्क नहीं समझा.
3: बिल्कुल सही.
2: तो वो मेरी बेटी अगर अपनी तालीम जारी रखना चाहती है या उसको अब्रॉड जाना है तो क्यों ना,
3: या उसे छोटा सा यहीं पे कुछ सहारा मिल जाए तो कोई,
2: यहाँ पे कोई सहारा मिल जाए. ज़रूरी तो नहीं है हर जो बेटी है वो किसी बहुत बड़े बिजनेस क्लास में या बहुत ही अच्छी किसी फैमिली में ब्याही जाए. कभी कभी बिजनेस लॉस होते हैं, कभी ये होता है कि डेथ हो जाती है हस्बैंड की, डेथ भी अचानक हो सकती है, कोई एक्सीडेंट में गुजर जाता है. तो हमारे तो इस तरह के रिवाज हैं कि उस बेटी को दोबारा ब्याहना भी वो पाप समझा जाता था कि ये एक बहुत बड़ा पाप है कि अगर आपकी,
3: लेकिन इसकी तो आपने कला कमा कर दी आपने हिंदू मैरिज एक्ट में.
2: बिल्कुल, ये बिल्कुल हमने उसका, अब उसमें हम रीमैरिज का
3: कॉन्सेप्ट
2: हमने किया है कि नहीं, जब आपकी डेथ हो जाए. अब कभी ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं हमारे नज़रों के सामने कि एक शादी हुई, उसके फेरे हुए, तीसरे दिन उसके शौहर का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से
3: जी.
2: अब उस सूरत में क्या वो यंग लड़की जो है पूरी जिंदगी सफेद लिबास पहन के बैठेगी?
3: बिल्कुल.
2: क्या वो सफेद लिबास में गुजारेगी?
3: जाहिर है उसकी पूरी जिंदगी आगे है, वो
2: आगे वो जिंदगी है उसके, उसके वो शादी कुछ अरमान लेके आई थी, कुछ खुशियां लेके आई थी, और हम नहीं चाहते कि वो उस दुखी लिबास में अपनी जिंदगी गुजारे. तो रीमैरिज का हक तो हमने उसमें हिंदू मैरिज एक्ट में रखा है कि रीमैरिज जो
3: बहुत है प्रोग्रेसिव एक तरह से वो कानून है.
2: बिल्कुल प्रोग्रेसिव है. तो ये इनहेरिटेंस लॉ भी इसी तरह हम प्रोग्रेसिव बनाना.
3: अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ये तो बेटी की बात तो बहुत हो गई, लेकिन आपने कहा कि जैसे बेवा को भी कुछ नहीं सक्सेशन में मिलता था, तो अब आपने बेवाओं के लिए क्या रखवाया है इसमें?
2: बिल्कुल बराबर का हिस्सा.
3: मतलब
2: ये कि अगर जैसे ही किसी की
3: मरने वाले की प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा बेवा को मिलेगा और कितना बच्चों को मिलेगा, सबको बराबर,
2: सबको बराबर का हिस्सा. पहले बेवा आती है उसमें, फिर बेटा, बेटी, फिर बेटी के बाद जो उसके सेकंड हायर हैं उसके पोता, पोती.
3: नहीं, तो फर्स्ट क्लास या दर्जा अव्वल के वारिस जो है वो बेटा, बेटी और बेवा है.
2: जी बिल्कुल,
3: ये दर्जा अव्वल है.
2: जी, ये दर्जा अव्वल है.
3: और अगर ये इन तीनों को हम, तो मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स फौत हो गए, हाँ, تو اس کے بعد ان کی بیوہ کا ایک حصہ رکھ دیا جائے گا.
2: بالکل.
3: یعنی کہ ان کے پانچ وارثین تھے.
2: جی.
3: اب پانچ میں سے چار زندہ ہیں اور ایک زندہ نہیں ہے.
2: جی.
3: ٹھیک ہے. تو مثلاً جو مرنے والا تھا اس کی بیوی زندہ ہے, اس کی ایک بیٹی زندہ ہے, ایک بیٹا زندہ ہے اور ایک بیٹا مر گیا ہے. تو جو وہ مرنے والا جو بچہ ہوگا یا بیٹا ہوگا, کیا اس کی اولاد کو پھر آپ ٹرانسفر کریں؟
2: بالکل. وہ اگر دیکھیں آپ نے جو وارثین بتائے ہیں, بیٹا, بیٹی, بیوہ, لیکن ایک بیٹا اس کا گزر گیا ہے, آپ نے یہ کہا, تو اس بیٹے کے جو وارثین ہیں, اس بیٹے کے جو بیٹا یا بیٹیاں یا جو بھی اس کے وارث ہیں, وہ جو اس بیٹے کی جو
3: حصہ بنتا ہے
2: وہ حصہ بنتا ہے. بالکل بنتا ہے. تو اس لا کو ہم نے اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا کہ اگر اس بیٹا نہیں ہے لیکن اس کے وارثین تو موجود ہیں نا,
3: اور اس کو آپ نے کہا ہے کہ درجہ دوم کے یہ وارث.
2: بالکل, درجہ دوم کے ہیں, کیونکہ درجہ اول میں ہم نے بیوہ اور بیٹا بیٹی,
3: یعنی جو فرسٹ ان کے پہلے رشتہ داری ہے
2: جی,
3: پہلے کی ہے اور دوسرے. لیکن یہ حصہ رکھا گیا ہے کہ اگر وہ بچہ مر گیا ہے, بیٹا مر گیا ہے یا بیٹی مر گئی ہے, تو جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کے وارثین میں نیچے چلا جائے گا,
2: کیونکہ اس کے پوتا پوتی تو وہ بلڈ ریلیشن تو موجود ہے نا.
3: ٹھیک ہے.
2: تو وہ اس سے یہ ہوگا کہ کیونکہ کسی کا بھی ہے نا ہم زیادتی یا اس سے ناانصافی ہونا, میرے خیال میں تو قانون جو ہے نا ہمیشہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کسی سے بھی ناانصافی نہ ہو, انجسٹس نہ ہو. تو اگر بیٹا نہیں ہے یا بیٹی نہیں ہے تو بیٹی اور بیٹے کے وارثین میں وہ اس طرح سے.
3: اچھا, اب میں اگلی بات آپ سے پوچھوں گی, وہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کتنی دفعہ ہمارے جو اکثریتی لوگ ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں, اور اب جو ایک بہت نیا فنومنا آ رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بیوہ ہوئی خاتون, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ ینگ ایک آدمی کی بیوی ہے, اس کے دو بچے ہیں, ابھی بالکل ینگ ہے وہ, اور 30-35 سال کی ہے اور اس کے دو بچے ہیں, اور میاں خاوند فوت ہو گیا, یا اگر کسی افواج وغیرہ میں وہ نوکری کرتا تھا تو وہ فوت ہو گیا. تو آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی جو افواج کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں, فوج کی جو نوکری کرتے ہیں, ان کا تو بالکل سمپل سا رول ہوتا ہے کہ وہ بیوہ کو پہچانتے ہیں, وہ بیوہ کے نام پہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی اور بچوں کی ہے. لیکن اب ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیوہ تو شادی کر لے گی, اگر یہ شادی کر لے گی تو پھر ہمارا کیا بنے گا. سو اب آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ اگر میں مثال ایک آپ کو مثال پیش کر رہی ہوں کہ ایک بیوہ ہے 30-35 سال کی ہے اور اس کے دو بچے بھی ہیں, لیکن خاوند فوت ہو گیا اور اب بڑی گنجائش موجود ہے کہ اس بیوہ کی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے.
2: بالکل ہو سکتی ہے.
3: ہاں, تو اب آپ بتائیے کہ پھر بھی کیا وہ حصے کی حقدار رہے گی, یا جو ہماری روایتیں ہیں کہ بھئی یہ تو بیوہ ہے, یہ تو ابھی دوسری شادی کر لے گی, جوان ہے, یہ چلی جائے گی, تو یہ تو پیسے اس کے ماں باپ کو ملنے چاہیے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟
2: یہ میرا خیال نہیں ہے, یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس بیوہ کا اتنا ہی حق ہے, کیونکہ وہ اس شخص کی بیوہ تھی. وہ شادی تو اس نے بعد میں کی, اس سے پہلے تو وہ
3: ابھی تو یہ قانون جو ہے بن رہا ہے نا, ابھی
2: جی,
3: بنا
2: ابھی,
3: نہیں
2: ابھی انڈر ڈسکشن ہے,
3: ڈسکشن ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی ہمارا کیا خیال ہے اس کے.
2: ہمارا تو یہی خیال ہے کہ اس کا اتنا ہی حق ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اس شخص کی بیوہ تھی.
3: جی.
2: مطلب اس نے زندگی کے کچھ سال یا کچھ ٹائم اس کے ساتھ گزارا, تو وہ اس کے ظاہر ہے ایف آر سی میں جو آتے ہیں ایف آر سی میں, وہ سارے جو وارثین ہیں وہ اتنے ہی حقدار ہیں جتنے کہ اس کے بیٹے, بیٹا یا دوسرے حقدار ہیں. بالکل اسی طرح سے وہ بیوہ بھی اتنی ہی حقدار ہوگی.
3: اچھا, چاہے وہ شادی کرے یا نہ کرے, یہ اس کا آئندہ زندگی کا فیصلہ ہے.
2: جی, یہ وہ شادی کرنا یا نہ کرنا وہ تو اس کا بعد کا فیصلہ ہے نا, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کسی کی بیوہ تھی, تو وہ ظاہر ہے اس کا تو حق اتنا ہی بنتا ہے نا.
3: اچھا, اب میرا اس سے اگلا سوال ہوگا, یہی بات نکل کے آتی ہے کہ والدین کا حصہ کیا مقرر کیا ہے کسی انسان کی وراثت میں سے, کیونکہ دیکھیں جس طرح سے اگر جو مسلم آبادی ہے یا جو ہمارا جو مسلم مذہب ہے وہ تو والدین کا حصہ بھی مقرر کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جائے تو اگر اس کے والدین بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں اور وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں, تو اس کی جائیداد میں سے ایک خاص حصہ ان کو بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں, کیونکہ لوگ ظاہر ہے اپنے بچوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا اس میں کوئی ایسا رول رکھا گیا ہے؟
2: بالکل ایسا رول رکھا گیا ہے کہ اگر دیکھیں جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے کسی بیٹے کی اور اس کے پاس اتنی جائیداد ہے, تو ایک حصہ اس کی والد اور والدہ کے لیے.
3: وہ حصہ کیا ہے اس قانون میں؟
2: اس قانون میں اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ بیوہ کا حصہ ہے, جتنا بچوں کا حصہ ہے, کیونکہ
3: برابر حصہ ہو.
2: جی بالکل برابر حصہ ہوگا, کیونکہ وہ اپنی ایک لائف جو ہے وہ بوڑھے ہیں, ان کے پاس کوئی ارننگ نہیں ہے, تو میرے خیال میں ان کو بھی حصہ جو ہے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. तो इस कानून के तहत जो है वो उनको भी हिस्सा देना चाहिए. तो ये अंडर डिस्कशन भी है और कंसल्टेशन जो हैं वो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे जो हमारी हिंदू कम्युनिटी के जो मुख्तलिफ पंचायतें हैं और मुख्तलिफ जो हमारी पंचायतों के अलावा जो वो जो स्टेक होल्डर हैं जो ख़ास तौर पे बिजनेस क्लास है उनके साथ भी हम लोग कंसल्टेशन कर रहे हैं. उनके साथ भी बातचीत जारी है हमारी कि आया इस कानून को उन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया है कि इतने सालों के बाद जो है वो एक कानून जो है वो आपने बनाया तो सही, इतने सालों बाद एक इनहेरिटेंस लॉ आया तो सही. जाहिर है जब हम ऐसे बहुत सारे केसेस इस सोसाइटी में देख रहे हैं कि उन ख़वातीन के वो दर बदर हैं, वो जो उनके पास कोई अर्निंग नहीं है, उनके पास कोई ख़ुद मुख्तार नहीं है, बाइख्तियार नहीं है, उनके पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी आगे चला सकें. कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि उनके हस्बैंड गुजर गए, माँ बाप भी उनके पास नहीं है, अब उनके पास दो छोटे बच्चे हैं, लेकिन है ना वो अपनी ज़िंदगी, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें.
3: बिल्कुल ठीक. अच्छा मैं अब इसी से, क्योंकि विरासत की जब बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है कि ख़वातीन का मसला ज़्यादा होता है क्योंकि वो इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है. लेकिन जब विरासत की बात होती है तो वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बात होती है. ज़ाहिर है हर लेवल पर हमको चेक करना होता है कि भाई किसको क्या हिस्सा मिल रहा है. तो अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पे बयान करूं कि अगर एक मैयत या जो मरने वाला है, ना तो उसके माँ बाप हैं और ना ही उसके बच्चे हैं, ना उसने शादी की है, ठीक है, तो फिर उसका हिस्सा कहाँ तकसीम होगा, बहन भाइयों में या किधर?
2: बहन भाइयों में.
3: ठीक है,
2: क्योंकि वो जो ब्लड रिलेशन है वहाँ हो जाएगा, उसके औलाद नहीं हुई
3: जी
2: और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं रहे, तो हाँ. उसके जो भाई और उसकी बहनें उसमें तकसीम होगा, वो इसी तरह ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी.
3: और अगर बेवा मौजूद है लेकिन तो, बच्चे नहीं है तो
2: बेवा पे, हाँ बेवा पे,
3: तो बेवा का हिस्सा बराबर होगा या ज्यादा होगा?
2: नहीं, बराबर होगा बेवा का.
3: अच्छा,
2: वो बेवा का हिस्सा निकाल कर उसके बाद जो है उसके जो दूसरे रिलेटिव्स हैं, मीन्स उसके भाई और उसकी बहनें, वहाँ पे वो तकसीम होगा. अगर उसके इमीडिएट जो फर्स्ट क्लास जो होती है, जो दर्जा अव्वल है, वो मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में जो है उसके भाइयों की तरफ जाएगा वो.
3: और दर्जा दो में आपने बहन भाइयों को भी डाला हुआ?
2: जी, दर्जा दो में बहन भाइयों.
3: बिल्कुल ठीक. अच्छा, तो अब ये है कि ये जो कानून है ये ना सिर्फ औरतों को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि मर्दों के लिए भी इससे जो है राहें मुतय्यन कर दी गई हैं कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता. और इससे मर्दों को भी एक बहुत तरह का तहफ़ मिलेगा कि अगर उनका उनकी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर नहीं भटक जाएंगी, बल्कि उनके जो सही वर्सा हैं उसके अंदर तकसीम होंगी, चाहे कि वालदैन हो, चाहे कि बहन भाई हों, चाहे कि बीवी बच्चे हों.
2: देखें, हम सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं.
3: बिल्कुल.
2: इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ज़ाहिर है जब हम एक किसी के पास बहुत 20 एकड़ ज़मीन है और 20 एकड़ ज़मीन के अलावा कोई और भी बिजनेस है उसके पास, और उसकी ज़ाहिर है वो उसकी डेथ हो जाती है या वो इंतकाल कर जाता है, तो उसके बाद जो है उसके जो उसके बेटे, उसके भाई, उसकी बहनें, वो सारे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी, ज़ाहिर है आपके मर्द, सिर्फ हम औरतों की तो बात नहीं करेंगे ना, बेटी की बात नहीं करेंगे कि सिर्फ औरत को ही हम एम्पावर करना चाह रहे हैं या उसको ही हम देना चाह रहे हैं. ये जो है माइंडसेट जो है इसको चेंज होना चाहिए. ये हमारा ये जो पदरशाही निज़ाम है उसमें हम यही कहते हैं कि ख़वातीन की ज़्यादा मज़लूम है और ये ख़वातीन की बात कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है. ज़ाहिर है इक्वल राइट्स की बात करेंगे तो उसमें हमारे जो मेल हैं वो भी आ जाते हैं, तो उनको भी राइट मिलने चाहिए. ज़ाहिर है वो भी उतने ही हकदार हैं अपने वालिदैन की मिल्कियत के जितनी के बेटी.
3: बिल्कुल ठीक. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सैर हासिल हमने गुफ्तगू की, हर पहलू से बात की, और मुझे लगता है कि दो चार चीज़ें हैं जो कि आपने तो बहुत अच्छी तरह बयान किए, लेकिन मैं इरादा उसके लिए कर दूँ हमारे सामेईन के लिए कि एक तो ये जो कानून है ये अब तक हिंदू अकलैती बिरादरी के लिए कोई सक्सेशन और विरासत का कानून मौजूद नहीं था मुल्क में, इस वजह से इस कानून की एक बहुत ज़रूरत पेश आ रही थी. क्योंकि ख़ास तौर पे क्योंकि जब भी होता है किसी भी चीज़ में जब कोई मसला आता है तो सबसे ज़्यादा जो उसका शिकार होती हैं वो ख़वातीन होती हैं, तो ज़्यादा ये नज़र आता है कि भाई ख़वातीन को तो बिल्कुल ही हिस्सा नहीं दिया जाता, लड़कों को हिस्सा दे दिया जाता है, लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, उनको जहेज़ वगैरह पे कर दिया जाता है. लेकिन इस कानून की रूह से एक इंसान मैयत जो मर जाएगा इंसान, उसकी जो चीज़ें हैं, ना सिर्फ उसकी बेवा, और फिर ये भी जैसे हमें پشپا نے بتایا کہ بیواؤں کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں تھا ان کو وراثت میں ڈالنے کا یا وراثت دینے کا, تو وہ طریقہ کار اسٹیبلش اس طرح کیا گیا ہے کہ درجہ اول کے جو ورثہ بنائے گئے ہیں وہ بیوی اور بچے بنائے گئے ہیں, اور درجہ دو میں بہن بھائی اور ماں باپ, اور پھر اگر کوئی ایسا بچہ ہے میت کا جو کہ اس سے پہلے فوت ہو چکا ہے تو اس کے بچوں کی وراثت آپ نے یقینی بنانے کے لیے اس قانون میں شک رکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ چاہے کہ وہ عورت ہو چاہے کہ وہ مرد ہو, اگر وہ پیسے والا ہے اور اس کے پاس کچھ جائیداد ہے تو اگر وہ مر گیا ہے تو اور اس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اس کے بچے ہیں تو پھر اس کے بہن بھائیوں میں وراثت کی ایک تقسیم کس طرح کی جائے گی, وہ اس کا ایک فارمولا بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ عورتوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے, کیونکہ ہم بالکل اس بات سے سب میرے خیال میں میرے جو سامعین ہیں وہ یقیناً اس سے ایگری کریں گے کہ عورتوں کی زندگی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے, تو عورتوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیونکہ وہ اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ہمیشہ مردوں پہ, تو ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان کی ملکیت کو یقینی بنایا گیا ہے کہ وہ ملکیت جو ہے ان کو ضرور دی جائے. اور یہ بھی بات ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت رجسٹریشن کا ایک بہت ہی اچھا قانون نادرا کے تھرو جو ہے وہ نافذ العمل ہے, جس میں اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کم از کم مسلمان جو اکثریتی آبادی ہے پاکستان کی, اس میں سکسیشن کا جو قانون ہے وہ نادرا کے تھرو بھی نافذ العمل کیا جا رہا ہے. تو جیسے ہی بے فارم پہ جو آپ کے بچے ہوتے ہیں, جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو میت کے بچوں کی وراثت کا فیصلہ بے فارم کے تھرو ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ عدالت کے پاس چلا جاتا ہے اور عدالت اس کے اوپر ڈکری کر دیتی ہے اگر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو. تو اسی طرح سے جب یہ قانون بھی بن جائے گا تو ہمیں پورا یقین ہے کہ نادرا کے رجسٹریشن کے یہ اس میں چلا جائے گا نظام میں, اور اس کے بعد جو بھی قانونی حیثیت ہوگی جتنا بھی حصہ مقرر کیا جائے گا وہ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق بے فارم کے مطابق خود بخود جو ہماری اقلیتی ہندو برادری ہے اس کے اندر وہ تقسیم کر دیا جائے گا, اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو عدالت کو نادرا کے ریکارڈ کے مطابق ڈکری کرنے کا حق دیا جائے گا. سو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے بہت مفید رہی ہوں گی, اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ پشپا.
2: تھینک یو. اور اس میں آخر میں میں ایک چیز ایڈ بھی کر دوں کہ 1925 کا 1925 کا ایک قانون موجود ہے سکسیشن ایکٹ, اس میں بالکل کلیئر اور واضح لکھا ہوا ہے کہ مسیحی خواتین کے لیے جو ہمارے کرسچن بہنیں ہیں اور بھائی ہیں ان کے لیے 50-50% مطلب آدھا آدھا حصہ ان کا مقرر کیا ہے, لیکن اس سکسیشن ایکٹ میں کہیں بھی ہندو برادری کے لیے اس طرح سے انہیریٹنس لا موجود نہیں ہے. تو تاریخ تو ہمیں بھی بھول گئی ہے لیکن اب ہمیں جاگنا پڑے گا.
3: اور بالکل ٹھیک جی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. خدا حافظ.
4: This is FM 101.
5: You're listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Oshawa.
6: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith in my mom, who can never do me no wrong. I have a faith in my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I.
7: And I on you. 101. FM.

Alright jenab, assalamualaikum and assalamualaikum FM 101 ke Lahore studio se main hu aapki host, aapki dost, aapki RJ aur aapki presenter Nimra Aruj. जनाब क्या हाल चाल है आप लोगों के, उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे. और अगर आप मेरा पूछते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, एक दफ़ा फिर से आप लोगों के साथ. दिन है जनाब आज सैटरडे, और सैटरडे को मेरा और आपका साथ होता है लेडीज़ लाउंज में 11 से 1. टाइम हो चुका है 11:43 और आज डेट हो चुकी है सितंबर की 26 और सन है जनाब 2026. आई होप कि आप तमाम लोग जो है ना वो ठीक होंगे. टाइम जो है ना वो बड़ा तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है, सितंबर आ गया है और साल का जो है ना वो ऑलमोस्ट एंड है. बहुत सारी चीज़ें इंसान ने सोची होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी उम्मीदों के बहुत बरक्स हो जाती हैं कि फिर उसको जो है ना वो डाइजेस्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. लेकिन बहरहाल जी यही तो ज़िंदगी है. खैर जनाब ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारा क्या कहना चाहिए आपको कि म्यूज़िक है मेरे पास और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. और टाइम चुके हमारे पास आजकल शॉर्ट होता है और पहले जो है वो 35 मिनट्स का एक कमर्शियल प्रोग्राम होता है जो हमारे प्लेटफॉर्म से चलता है, उसके बाद जो है ना वो हमारा और आपका साथ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, सवा घंटा रह जाता है मेरे पास. तो मैं मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूं जी किस तरह से आप लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एक तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं फेसबुक के थ्रू. फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है जी FM 101 लाहौर का, उस पेज पर आप जाएंगे और हमारी पोस्ट पर कमेंट करेंगे. इसके साथ साथ 4471 पर आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं. साथ साथ 4471 पर आप लोगों ने किस तरह से SMS करना है, आप जाएंगे अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पर, वहाँ जाकर आप लिखेंगे 101, एक अदद देंगे स्पेस, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे 4471 पर. ठीक हो गया. और 0420100101 हमारा टेलीफोन नंबर है, इस नंबर पर आप लोग हमें कॉल करेंगे लेकिन आफ्टर 12. और जनाब आज हम बात कर रहे हैं किस हवाले से, आज हम बात कर रहे हैं वहम के हवाले से, नजर लगने के हवाले से. कुछ भी होता है ना, तबीयत खराब हो गई है, हाय नजर लग गई होगी, सर में दर्द हो रहा है, नजर लग गई होगी, सूट जल गया है, नजर लग गई होगी, मतलब कोई भी इस तरह की चीज है हमारे घर में. मेरा ख्याल है मतलब जो नॉर्मल एक सिस्टम चल रहा होता है ना, कोई भी चीज होती है उसको रेलेवेंट किया जाता है जी नजर लग गई होगी. आपका क्या ख्याल है इस हवाले से, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि भाई कभी आपकी तारीफ किसी ने कर दी हो, आपके सूट की तारीफ किसी ने कर दी है और जी वो सूट जो है ना वो ख़राब हो गया, फट गया, जल गया, कुछ भी हो गया, या आपकी अगर किसी ने तारीफ कर दी है और अगले ही लम्हे जो है ना वो आपकी तबीयत अपसेट हो गई हो, सर में दर्द शुरू हो गया हो, या वैसे ही कोई ऊपर नीचे चीज़ें हो गई हो, कोई चोट लग गई हो, कोई भी इस तरह का मामला, या कभी कोई आपने काम किसी के साथ शेयर कर दिया हो, कोई अचीवमेंट, कोई प्लान कि हाँ भाई मैंने ये करना है या मैंने ये चीज़ खरीदनी है या ये चीज़ मैंने खरीद ली है, वो लोग एक दूसरे को कह रहे होते हैं यार फलाने शख्स को अपनी ना अचीवमेंट के बारे में ना बताना, उसकी नज़र बड़ी बुरी है नजर लग जाती है, या उसकी जुबान बड़ी काली है, जो मुंह से निकालता है ना वो पूरा हो जाता है. कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने ये सोचा है और वो पूरा हो गया हो, और फिर आपका जो वहम है या वो जो एक यकीन, मतलब वो जो एक चीज है जो शक है वो यकीन में बदल गया हो, यार नहीं वाकई मुझे इसको नहीं बताना चाहिए था कुछ कोई ऐसी चीज. हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद होता है ना जिसके बारे में जो है वो इस तरह की मिथ्स होती हैं, इस तरह की बातें अफवाहें जो हैं वो फैली हुई होती हैं, फलाना बंदा जो है ना वो उसकी नज़रें अच्छी नहीं है, वो जिस चीज़ को नज़र डालता है या जिस चीज़ पे नज़र उसकी आती है ना वो चीज़ ख़राब हो जाती है. कभी कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ आके ज़रूर शेयर कीजिएगा. फिलहाल अब्रारुल हक की आवाज़ को इंजॉय कीजिएगा.
इसके बाद वापस आती हूँ स्टिक अराउंड टू एफएम 101. मुझे कहते हैं निमरा अरूज. अगर आप लोग इस टाइम रोड पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो कहेंगे ड्राइव रियली वेरी केयरफुली, क्योंकि आप और आपकी जान उन तमाम लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं और उन तमाम लोगों के लिए जो जिनसे आप प्यार करते हैं बहुत प्यारी है, बहुत कीमती है. और वैसे भी इस वक्त रोड्स पे रश था, रेगुलर रश था. जो नॉर्मली सैटरडेज जो हैं वो वीकेंड पे जो है वो मॉर्निंग टाइम में रश नहीं होता, बट आज रश भी था और धूप भी बड़ी तेज थी. मौसम चेंज हो रहा है लेकिन रात में लगता है कि चेंज हुआ है, डे टाइम जो है ना वैसे ही गर्मी वाला होता है. एनीवेज, एंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को. इसके बाद वापस आती हूँ.

ऑलराइट जी, गाने को बैकग्राउंड में रखते हैं और साथ साथ जो है ना वो आप लोगों के मैसेजेस भी ऑन करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि टाइम जो है ना वो काफ़ी शॉर्ट होता है आज के दिन, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं आपको जो है ना वो ज़्यादा वेट करवाऊँ। बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बताती

बीजीएम अच्छा बन सकता है। चलो इस पे भी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। नजीर खोजा साहब अगेन सोबतपुर बलोचिस्तान से, मिसबा मलिक हैं जी, ग्रेट शो, थैंक यू। रियाज भट्टी साहब अगेन, वसीम खान हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शो आप अच्छा होता है, ओके थैंक यू। जब स्टार्ट हो तो सुनेंगे, वह ये अच्छी बात आपने की है। आपने उस टाइम मैसेज किया था जब मैंने शो स्टार्ट नहीं किया था और आपने ये मेंशन भी किया है, दैट्स वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सच्ची बात की है। कह रहे हैं जी लेकिन कॉल मिलती है तो आप अटेंड कम करती हैं, कुछ ज्यादा कॉल लिया करो। ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज जो है ना मैं बैक टू बैक कॉल्स लूं आप लोगों की। और जी कह रहे हैं कि अच्छा आगे ना आपने पंजाबी शायद लिखी है तो मुझे नहीं समझ आ रही है ये क्या कह रहे हैं। हाँ देखा, आगे आपने खुद कहा है, अगर समझ आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो जैनब से पूछ लेना क्योंकि हमारी कॉल तो मिलनी कोई नहीं है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, मैं जैनब से पढ़वा लूंगी ये और फिर मैं देखती हूँ आप क्या कहना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच जी। अगेन रियाज भट्टी साहब मौजूद दोबारा से, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू ढेर सारे मैसेजेस के लिए। साथ साथ ना मेरी नजरें हैं घड़ी के ऊपर भी कि मैं कुछ मिस ना कर दूं क्योंकि 12 बजे हमने जाना है न्यूज़ ब्रेक की जानिब और 12 बजे के बाद जो है ना वो आप लोगों की कॉल्स लेंगे हम और हम बात करेंगे जनाब किस हवाले से, हम बात करेंगे नज़र के हवाले से। क्या आपको वाकई लगता है कि नज़र शजर लग जाती होती है या वहम होता है, ये क्या होता है, ये आपने आज हमारे साथ शेयर करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हैं जी गुल यासीन नाज हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। एम एजाज अली हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और शरकपुर शरीफ से आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, वेलकम कह रहे हैं जी, आनू बोल रहे हैं, खुश आमदीद बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कह रहे हैं जी अच्छा वक्त हमेशा उनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि बाज़ुकात ना जो बहुत सारे लोग हमारे जैसे भी होते हैं जो दूसरों के साथ बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो काफ़ी उनके रास्ते में मुश्किलें आती हैं और शायद वो अल्लाह ताला की आजमाइश ही होती है, ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन होता है ऐसा। और कह रहे हैं जी कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं हकीकत तक ले जाते हैं, वाह जी वाह ज़बरदस्त, बेस्ट विशेस दे रहे हैं। जाहिद खान हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हफीज़ुर रहमान हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। खजर हुसैन हैं जी, अस्सलाम वालेकुम आपी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मला खैर हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वसीम खान हैं जी, सॉन्ग अस्सलाम वालेकुम हैं प्ले करना बाय ज़ीशान खान, अच्छा सॉन्ग का टाइटल है ये, ठीक हो गया। और एम एजाज अली कह रहे हैं नज़र लगती तो है पर मुझे नहीं, वेरी गुड, ये भी अच्छा हो गया, ठीक हो गया जनाब। और मज़ीद मैसेजेस आप लोग हमें कर सकते हैं, फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं, 4471 पर मैसेज करके शामिल हो सकते हैं। 11 बज के हो चुके हैं 57 मिनट, 12 बजे हम बढ़ेंगे न्यूज़ ब्रेक की जाने, 12 बजे के बाद वापस आएंगे, देन आप लोगों की कॉल्स की जाने बढ़ेंगे। मुझे कहते हैं निमरा अरूज, क्या कर रहे हैं आप लोग, नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? आज है सैटरडे, मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है ना फिर दिल करता है कि कोई अच्छा सा मज़ेदार किस्म का नाश्ता हो, गर्मी में जो है ना वो ये वाली जो ख्वाहिश है ना वो कहीं मर ही जाती है, बट सर्दियों में दिल करता है कि यार कुछ अच्छा हो, कोई निहारी पाई शाय, मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि वो मैं खाती नहीं हूँ, निहारी हो अच्छे से मज़ेदार किस्म के अंडा चने हो, लेकिन पता नहीं क्या हो गया पिछले कुछ अरसे से ना नान चनों के साथ मुझे वो कहते हैं ना एक नफ़रत सी हो जाना, वो हुई भी है कि मैं नान चने जो है ना वो चने खा लूँगी पराठे के साथ, लेकिन नान नहीं होना चाहिए। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि मैं कहीं कोई मतलब अवॉइड कर रही हूँ, कोई मतलब मैं कोई डाइटिंग शाइटिंग कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एम ही मेरा दिल जो है ना वो नान चनों से उकताया हुआ है। हालांकि मैं वैसे कोई आम मतलब जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले हलीम बनाया था उसके साथ नान खा लिया, इस तरह का काम ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन नान चनों के नाम पे जो है ना वो मुझे कुछ हो रहा है। खैर जनाब क्या खा रहे हैं आज आप, क्या प्लान है आज आपका, कोई दावत शावत है, कुछ सोचा हुआ है? मैंने तो आज बहुत कुछ सोचा हुआ है, अल्लाह करे कि अब जो मेरी सोचे हैं ना वो पूरी हो जाएं, मैं अपने प्लान्स को पाए तकमील तक पहुँचा सकूँ।

क्योंकि डेली यही चल रहा था जी आज बनाना है आज मैंने मतलब मेरे ना शामी कबाब नॉर्मली फ्रीजर में होते हैं जो कि कुछ अरसे से ख़त्म हुए हैं तकरीबन कोई 1 वीक हो गया और मैं बना नहीं पा रही तो अब जो है ना वो मैंने आज प्लान किया हुआ था कि नहीं यार आज का दिन जो है ना वो मेरे पास आज ही का दिन है कल भी मेरी एक मीटिंग है मैंने वहाँ जाना है इसलिए जो है ना आज के दिन पे मैंने अपने शामी कबाब शबाब जो है ना वो बना के रखने हैं ताकि फिर आगे जो मेरा वीक बिजी होगा ना उसमें मेरे काम आ सकें। और जी न्यूज़ ब्रेक के जाने पड़ते हैं उसके बाद वापस आते हैं स्टिक अराउंड।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने हरमैन शरीफ़ैन की सलामती और तकद्दस को लाहक़ किसी भी खतरे को ऐसी सुर्ख लकीर करार दिया है जिसे कभी उबूर नहीं किया जाना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक के चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ ने सऊदी अरब को दरपेश सिक्योरिटी की सूरत हाल और खतरात का जायजा लिया। कैनेडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने इंजीनियरिंग और दूसरे हाईटेक शोबों में दो तरफा तआवुन बढ़ाने के इम्कान को उजागर किया है। जौहरी हथियारों के मुकम्मल खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
1: Get what you want. Get only the best music.
2: It is time for the music.
1: Continuous music.
3: On Beyond FM 101.
4: Step into the world of women and talk about everything that matters to you, from fashion to feelings and everything in between. Welcome to Ladies Lounge with your favorite RJ, Nimra Arooj.
5: Alrighty, welcome back. Once again, आपको खुशामदीद कहते हैं, मुझे कहते हैं निमरा अरूज. अगर आप लोगों ने अभी अभी FM 101 ट्यून इन किया, कहेंगे वेलकम, वेलकम टू माय शो एंड वेलकम टू FM 101. सो जनाब, 12:04 हो गए हैं और 04211111001 हमारा टेलीफोन नंबर है. आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं. फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज FM 101 लाहौर का, उस पेज पर जाइएगा, हमारी पोस्ट पर कमेंट कीजिएगा और प्रोग्राम में शामिल हो जाइएगा. इसके अलावा जी 4471 पर आप लोग हमें SMS कर सकते हैं. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां जाकर लिखें 101, एक अदद दें स्पेस, अपना नाम लिखें, अपना मैसेज लिखें और उसको सेंड कर दें 4471 पर. और टॉपिक जनाब मैंने क्या रखा है आज, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि देखें जी, होता है ना बाज़ुकात सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सडन कोई ऐसा मसला हो जाता है, फिर हम सोचते हैं यार शायद नज़र लग गई है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है तो जी किसी की नज़र लग गई होगी, या हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, कोई काम अच्छा चल रहा है तो फिर उसमें नुकसान अगर हो जाए तो उसको भी हम रिलेट कर देते हैं जी नज़र लग गई होगी. तो क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके आपने भी इसी तरह जो है ना कोई मतलब बात की हो, कोई इस तरह का किसी के साथ कुछ शेयर किया हो और आपका काम ख़राब हो गया हो, या किसी ने आपकी तारीफ़ की हो और एकदम जो है ना वो आपको आपके सर में दर्द हो गया हो, तबीयत ख़राब हो गई हो, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है ना, कि आप किसी काम के लिए जा रहे थे और रास्ते में कोई शख्स मिल गया और आपने उसके साथ कोई चीज़ शेयर कर दी जिसके साथ आप नहीं करना चाहते थे. क्योंकि कुछ मिथ्स होती है ना, हम लोगों से रिलेट कर देते हैं कि यार फलाना बंदा जो है ना वो जब कोई चीज़ देखता है, बहुत सारे लोगों को जैसे आदत होती है, आप शॉपिंग करके आए छुपा के रखते हैं जी, दिखाना नहीं है किसी को, नज़र लग जाएगी. तो क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है तो ज़रूर मेरे साथ आकर शेयर करें. अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखें, इस्लामिक रिवायात में नज़र बद का तसव्वुर तो मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम हर नुकसान जो है वो, हर परेशानी जो है या हर बीमारी जो है उसको हम इसी से रिलेट करना शुरू करते हैं. या आप वहम की बात करें हम तो बाज़ुका जो है वो हमारी ज़िंदगी में वहम की वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो बन सकती हैं. बार बार बार बार एक ही बात को सोचना, बार ही बार बार जो है एक ही बात को किसी से रिलेट करना और उसके बाद उसमें शक में पड़े रहना, ये बहुत बड़े बड़े मसले जो है ना साइकोलॉजिकली भी जो है वो इश्यूज आ जाते हैं. अब मिसाल के तौर पे अगर घर में आपकी कोई चीज़ ख़राब हो गई है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, या आपके काम में किसी कोई लॉस हो गया है, किसी भी तरह का नुकसान हो गया है, तो हम कह देते हैं फ़ौरन ही एकदम हमें जो है ना वो किसी की नज़र लगी है. और वैसे भी मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, बट हर चीज़ के लिए फिर हम ना इसी बात से करते हैं, हम उस बात की तह में जाते ही नहीं, या फिर यूँ कह लें कि हम उसका जो पॉइंट होता है ना, जो भाई कॉज जो होता है, हम उस तरफ जाते ही नहीं है. हमें होता है कि अच्छा जी बस ठीक है, नज़र लग गई है, वो जी लोग मिर्चों से नज़र उतार रहे हैं, मिर्च जल रही होती हैं और उसके बाद सबको खांसी शुरू हुई होती है घर में, इस तरह के मामलात भी होते हैं. मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं. एक दफ़ा मुझे याद है बचपन की, मेरे बच्चों के बचपन की बात है. एक हमारे अंकल थे, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, अब तो वो दुनिया में नहीं है, चीनी के साथ वो नज़र उतारते होते थे. और फिर जो कॉन्सेप्ट था ना उनका, वो ये था कि जी जो तवे पे जब चीनी जलाई जाती है, वो जो क्या करते हैं उसको, बच्चे के गिर्द घुमा के ना, सात चक्कर लगा के और उसके बाद लास्ट वाला उल्टा चक्कर, वो जी नज़र उतारना होता है. और क्या जी के तवे पे जलाते हैं तो वो जो शक्ल बनती है ना, वो नज़र, अगर शक्ल सी बन जाती है तो इट मीन्स के नज़र लगी है और इस तरह के मामला. आई डोंट नो, मुझे रिमेंबर भी नहीं है कि क्या चीज़ें थी और क्या नहीं थी. बहरहाल इस तरह की चीज़ें होती हैं. क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कोई भी ऐसा मामला जो इससे रिलेट करता हो, तो ज़रूर आके मेरे साथ शेयर करें, ठीक है. अच्छा नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है. ट्रैक के बाद वापस आते हैं, देन आप लोगों की कॉल्स की जाने बढ़ेंगे हम. और कॉल्स जो हैं वो हमने कहाँ लेनी है, 0421110101 ये हमारा कॉलिंग नंबर है, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं. तीन कॉल्स लेंगे, देन एक गाना प्ले करेंगे, इस तरह से चलेंगे आज हम. तो मेरे साथ रहिएगा, ये आई की मेहरबानी है जी, बड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, कुछ मेहरबानियां हैं और कुछ जो है ना वो जहमतें भी हैं. कहती हूँ ना, हर चीज़, कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है. उसका इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. तो हम इन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करें तो बहुत आगे जा सकते हैं. नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो बर्बादी है और ख़राबी है. इन्जॉय की जगह ट्रैक को इसके बाद वापस आती हूँ. स्टिक अराउंड.

0: ऑलराइट जी, इस गाने को अपने बीजीएम में रखेंगे और हम बढ़ेंगे फर्स्ट लकी कॉलर की जानिब। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन बात कर रहे हैं और कहां से? जी जी बिल्कुल बात कर रही हूं।
1: अच्छा, मैंने समझे निमरा अरूज बात कर।
0: जी जी निमरा अरूज बात कर रही हूँ, नाम बताइएगा प्लीज।
1: आई एम ज़हीर अब्बास स्पीकिंग फ्रॉम मॉडर्न टाउन लाहौर।
0: ज़हीर अब्बास साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे साथ मेरे दोस्त मलिक अली हैदर भी सुन रहे हैं, वो भी आपसे बात करेंगे।
0: ओके, उनको हम वेलकम कहते हैं। मुझे बताएं जल्दी से टॉपिक के बारे में क्या बात करेंगे।
1: टॉपिक का मुख्तसरन ये, काम जितना मर्जी मॉडर्न हो जाए ना, जो हकीकत है उससे हम मुंह नहीं फेर सकते।
0: ओके,
1: नजरे बद ये अटल है,
0: बिल्कुल है,
1: क्या सूरत में है,
0: बिल्कुल है,
1: इसमें असर भी है और इसको जाहिल करने की भी चीजें हैं।
0: ठीक है,
1: तो अगर हम ये कहें कि ये ऐसे नहीं होता, ये हमारी अपनी कमफहमी तो हो सकती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। नजर जरूर लगती है इंसान को, और उसके नजर को तोड़ने के भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत सारी चीजें बता,
0: बिल्कुल बेशक बेशक,
1: हमने खुद काफी सारी चीजें उतारी हैं। तो ये चीज
0: नहीं आपके, अच्छा मैं इन सारी बातों को मानती हूँ, मुझे ये बताएं कि कोई किस्सा, कोई वाकया कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो?
1: आई एम ब्लाइंड पर्सन, और मुझे नजरें बद लगी थी जिसकी वजह से मेरी आंखें बिल्कुल
0: ओके,
1: बचपन में ही मैंने दुनिया में कुछ नहीं देखा।
0: अच्छा,
1: बहुत खूबसूरत था वालदेन के मुताबिक, और जितने मेरी फैमिली सब यही कहते थे कि सबसे ज्यादा ये बच्चा खूबसूरत था, और उसको फिर ऐसी नजरें बद लगी कि इसकी आंखें जाया हुई, और बड़ा इलाज मुआवजा कराया, बहुत दूर दूर तक हम लोग, डॉक्टर ने कहा नामुमकिन। तो इसके अलावा और मेरी जिंदगी में भी, एक जगह मैं पढ़ाता था तो बड़ा तैयार तैयार होके गया, तो मैं इस तरह कुर्सी पे बैठा हुआ था तो पीछे की तरफ गिर गया मैं नीचे।
0: ओके,
1: जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो मैंने पूछा ये क्या हुआ, तो वो मेरे जो कुलीग थे टीचर साहब थे, वो कहते थे ये फला फला खवातीन थी, एक टीचर, वो टीचर थी, एक प्रिंसिपल थी, एक मैं नफ्सियात थी, वो आपको बहुत गौर से देख रही थी, तो आप बस जो ही उन्होंने नजर फेरी, बस ऐसा हमें भी नजर नहीं आया, आपको ऐसा झटका लगा, शुक्र है आपने हाथ पीछे कर लिए, वरना आपका कबाड़ा हो जाना था।
0: ओए होए, ना खैर, ठीक हो गया।
1: ये चीज होती है। अच्छा, ये मेरे दोस्त उनसे बात कर,
0: जी जी जल्दी से करवा दें।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम। दोस्त अपना नाम बताइएगा।
2: जी मेरा नाम मलिक अली हैदर है, और मैं भी लो विजन हूँ, ये नजरे बद जो है मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं, तो आपका ये तो मैं सुन रहा था, तो बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक सुना है,
0: थैंक यू सो मच।
2: मैं ये है कि इसकी नजरे बद का अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो है ना वो हल रखा है,
0: बेशक बेशक बिल्कुल रखा है
2: मोमिनीन के लिए। सूरह आले इमरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने हर चीज की जो शिफा है वो कुरान में रख दी, इसका चारों कुल शरीफ, दुरूद पाक और आयतुल कुर्सी अगर आप देखते हैं, महसूस करते हैं, तो ये पढ़ें आप बावजूद होकर, तो इंशाल्लाह ये दूर भी हो जाती है।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल अटल है, कोई शक नहीं,
0: बिल्कुल ठीक हो गया सर।
2: बाकी ये नाश्ते की आप बात कर रही थी, चने वगैरह की मैं सुन रहा था, तो मैंने भी आज दो कुलचे खाए हैं, साथ दाल फ्राई।
0: सही, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच।
2: साथ चाय का कप पिया, अपना ख्याल रखें,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी। अच्छा मैं बिल्कुल मानती हूँ ऐसे ही है, नजरे बद जो है वो बरहक है, और बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट आपने मुझे कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया बताना है, ठीक है? काली बिल्ली रास्ता काट गई आपका, और आपका वो काम नहीं हो पाया, या किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, आपके सूट की तारीफ कर दी, और वो सूट प्रेस करते हुए जल गया, कुछ भी इस तरह का इंटरेस्टिंग सा, मज़ेदार सा। मैं इस टॉपिक को सीरियस नहीं करना चाहती, मैं इसको जो है ना चाहती हूँ कि हम एक मतलब फ़नी उसमें भी रखें, लाइट मोड में रखें। आई नो ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं होता, जिनका कोई अजाला नहीं कर सकता। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो वाकई नज़र मतलब वो तो एक बात है ना कि नज़र इतनी शदीद होती है कि अच्छे खासे ऊंट को जो है वो हंडिया तक ले जाती है। ये बात हमारे मतलब बहुत दफ़ा हमने सुनी है, और ये यकीनन जो है वो ہماری ہسٹری میں ہماری احادیث میں جو ہے وہ موجود ہے. اور اونٹ کو چونکہ ایک طاقتور جانور سے جو ہے وہ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی مثال دی گئی ہے. میں اس بات کو مانتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ زندگی میں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ جو نقصان آپ کے ہو جاتے ہیں نا, وہ آپ ان کا ازالہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن کیا کریں جی, زندگی ہے نا, زندگی میں تو پھر یہ سارا کچھ جو ہے وہ تب ہوتا ہے. کیا کروں گا میں, ہم بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں سے ملوائے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اینی ویز جی, نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم.
3: جی آتی جی, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اپنا ریڈیو سیٹ جو ہے نا وہ بند کر دیں پلیز.
3: میں بند کر دیتا ہوں جی.
0: تھینک یو سو مچ جی. عبد الحمید صاحب کیا حال ہیں آپ کے, ٹھیک ٹھاک؟
3: ہاں ماشاء اللہ, کیا بات ہے آپ کی نمرہ
0: بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے بتائیں
3: آپ. ہاں ٹاپک تو میں گل کروں گا آپ. میں نا چھوٹا جا ہی 4-5 سال.
0: جی جی.
3: میری والدہ نے کالے کپڑے پائے میرے, میں جی باہر نکلا تو میرے کالا کپڑا
0: نہیں
3: سوٹ کرتا. لگے نا نظر ماں پیو کی بھی لگ جاتی, گھروں کسی کی بھی لگ جاتی,
0: محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے. بالکل ایسی.
3: ہاں جرا ایک بار کہہ کے نا, بس یہ گل ہے جب کسی نے شہر بچے نو ویکھ نا تو سبحان اللہ ماشاء اللہ پھر نظر نہیں لگتی, تو جی ویخ کے کہ ہوئے ہوئے ہوئے اتنا سونا نظر آپ ہی لگ جاتی
0: ہے.
3: نظر واسطے ایتل کرسی ہے رات نو پڑھ کے مدا دم کرے ان شاء اللہ نظر
0: بالکل
3: چل جائے گی.
0: ٹھیک ہو گیا. آپ
3: بہت ساری دعا.
0: تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.
3: اللہ حافظ.
4: ریورس شوڈ نرش نیشنز ناٹ ڈیوائڈ دم. دیئرفور اینی اٹمپٹ ٹو اسٹاپ امپیڈ اور ڈائیورٹ پاکستانز share of the waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
5: وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ جنوبی
6: پاکستان

0: इश्क दा। ऑलराइट जी, गाना हमें देखकर लग रहा है दिल कर रहा है ऐसी कुछ लाए जाऊं। वेल जी, चेक करते हैं कि लाइन पे नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम 101 के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से।
0: जी वालेकुम अस्सलाम।
1: अस्सलाम वालेकुम निमरा रूज।
0: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं?
1: जी अल्लाह का शुक्र।
0: शमीम आप ही हैं हमारे साथ इच्छरा से। और
1: निमरा जी, सबसे पहले तो यह है कि आप पहचानने का गैस करने का बहुत बहुत शुक्रिया के बहुत जल्दी से पहचान लेती हैं आप।
0: बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है कि आप इतने खलूस से हमारे साथ शामिल होती हैं।
1: बस ये तो बहुत अच्छा शो हमेशा की तरह।
0: थैंक यू।
1: तो निमरा जी, जो ना क्या नाम, नज़र जो ना लग जाती है, मतलब किसी को भी नज़र लग जाती है किसी को, तो नज़र नहीं लगानी चाहिए, नज़र उतार देनी चाहिए। जब कोई कहे ना कि फलां चीज़ बहुत प्यारी है, ये तो बहुत खूबसूरत है, तो ये समझ लो कि उसको नज़र लगने के चांस होते हैं। किसी को नहीं, मतलब ऐसी बुरी नज़रों से नहीं देखना चाहिए। और अगर कोई बच्चा हो ना, छोटा बच्चा, तो जब वो होता है ना छोटा सा बच्चा, उसकी ना एक साइड पे काला तिल लगा देना चाहिए सुरमे का।
0: अच्छा ठीक हो गया,
1: तो उसको फिर नज़र जो ना कम कम ही लगती है।
0: ओके।
1: हम कहते हैं ना फलां बच्चा बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह ये गुटलू सा है, तो फिर नज़र बच्चे को लग जाती है। तो नहीं,
0: बिल्कुल
1: नज़र, और नज़र लग जाती है, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है,
0: बिल्कुल ठीक हो गया।
1: और मैं तीसरे नंबर पे आ गई हूँ आज, अक्सर पहली बनती होती हूँ मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं।
1: सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: आप उसका गाना जो है ना, वो क्या ना, जहाँ जेब का गाना अगर प्ले कर दो तो।
0: कौन सा वाला?
1: तेरा मेरा मिलन।
0: अच्छा, ओके ओके, ठीक हो गया, आई विल ट्राई। थैंक यू।
1: है कि कुछ थोड़े से सलामे खलूस आपका, दो हनी भाई सुन रहे हैं, तारिक भाई कोयत वाले सुन रहे हैं, और फरी फरी भी सुन रहे हैं इस वक्त तुम्हारा देख साजिदा। ये सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: ठीक हो गया, वालेकुम अस्सलाम,
1: अल्लाह हाफिज़।
0: और जी, ये तो थी शमीमा पे हमारे साथ। अच्छा, काले तिल से ना मुझे एक बात याद आ गई, अक्सर गाड़ियों पे आपने देखा होगा कि गाड़ियों के नीचे जो है ना, मुझे हंसी आ रही है अब, कि वो जूता जो है ना, वो काले कपड़े के साथ या काला कपड़ा बांधा हुआ होता है, या फिर जो है ना वो छोटी सी जूती बांधी हुई होती है, और उसकी रीज़न ये होती है कि नज़र ना लगे। हाँ, ये चीज़ मैंने भी देखी है, बच्चे के माथे पर या कान के पीछे जो है ना, वो काला टिक्का लगा देते हैं नज़र ना लगे। है, मेरा ख्याल है कि मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं हम लोग। आई गेस कि जब आपको इस तरह का कोई भी मामला हो, तो किसी कोई, देखें ज़रूरी नहीं है कि नज़र बुरी ही हो, कोई बहुत चाहत से, बहुत मोहब्बत से आपको देखता है, तो बाज़ूकात उसकी नज़र भी लग जाती है। देखें ना, कहते हैं ना, माँ की नज़र भी लग जाती है। माँ तो जाहिर सी बात है अपने बच्चे को कभी भी बुरी नज़र से नहीं देखेगी ना, वो तो मोहब्बत से ही देखेगी। तो माशाल्लाह जो है ना, वो कह देना बहुत ज़रूरी है, या हाय नहीं कहना चाहिए किसी की कामयाबी पर, किसी के मतलब कोई अच्छी चीज़ किसी के बारे में सुनते हैं ना, तो अक्सर बेसाख्ता निकलते हैं हाय, वाकई, इस तरह नहीं कहना चाहिए। मेरा ख्याल है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए और माशाल्लाह बोलना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं आप, तो उसको माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, चाहे वो कुछ चीज़ है, चाहे वो कोई इंसान है, मतलब कुछ भी ऐसा है जो आपको पसंद आ रहा है, आप देख रहे हैं खूबसूरत है, अल्लाह ताला की कुदरत है ना, अल्लाह ताला की खूबसूरती है उसमें, तो उसको माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। अभी काले टिक्कों शिक्कों, अच्छा मैंने ना बड़े उलट काम किए हैं, बड़े उलट काम किए हैं, हर वो काम किए हैं जो मेरा ख्याल है नॉर्मल किसी ने नहीं किया होगा। मैंने ये वो जो एक मतलब एक जब बेबी हो जाता है, तो उसके बाद 40 डेज़ ख़वातीन जो हैं वो रेस्ट करती हैं, घर से बाहर नहीं जाती हैं, और सर पे जो है ना वो देसी घी बांध के, और पता नहीं क्या क्या टोटके आजमाए जाते हैं। मैंने वो वाला कोई काम नहीं किया, मैंने 15 डेज़ मुश्किल से रेस्ट किया है, और उसके बाद मैं अपनी जॉब पर वापस गई हूँ। मैंने कोई मतलब इस तरह की चीज़ नहीं की है, और मैं मतलब इधर से उधर ट्रैवल भी करती रही हूँ, बच्चे के साथ सारा कुछ करती रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने हूँ, साथ हूँ। ठीक है, छोटे छोटे इश्यूज तो रहते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है ना हम मतलब हर चीज़ को हम उससे रिलेट कर दें. नो डाउट नज़र बर हक है और नज़र लगती है एकदम से बंदा अच्छा भला हशाश पशाश होता है और एकदम से तबीयत डाउन हो जाती है. ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन फिर भी जो मानने वाली चीज़ें हैं उनको तो मानना चाहिए, उन पर अमल भी करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए. और चारों को लायतल कुर्सी जो है वो पढ़ के घर से भी निकलना चाहिए. मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा सुबह में ना जब घर से निकलती हूँ ना तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करके निकलती हूँ कि या अल्लाह मतलब बुरे लोगों के शर से बचाना, क्योंकि मैं नहीं जानती किसी की नीयत क्या है मेरे बारे में. ठीक है, कोई मुझसे मिल रहा है, कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है, कोई मेरे साथ अच्छे से चल रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन असल में उसकी इंटेंशंस क्या हैं मैं नहीं जानती. तो अल्लाह ही है बचाने वाली ज़ात. तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करके निकलती हूँ कि या अल्लाह लोगों के शर से मुझे बचाना, बुरे लोगों के शर से बचाना और अच्छे लोगों से मिलवाना, और साथ में जो है ना इज़्ज़त, जो है ना इज़्ज़त से जा रही हूँ, इज़्ज़त से घर वापस आऊँ, मैं ये दुआ मांग के निकलती हूँ. तो बस आपको नहीं पता, आप अपनी चीज़ें मतलब इस चीज़ पे भी मैं मेरा बिलीव है आप बहुत खुशी से देखें. बहुत सारे लोगों को ना आदत होती है अपनी खुशियां शेयर करने की, वो इसलिए खुशियां अपनी शेयर नहीं कर रहे होते कि मतलब रीज़न जो मकसद है कि कोई दिखावा उनका मकसद है. लाइक अगर हम कोई शॉपिंग करके आए हैं और हम अपनी कज़न्स में बैठ के बता रहे हैं, हम जॉइंट फैमिली में लेट्स सपोज रहते हैं, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे घरों में ना ये चीज़ होती है कि अगर आप कोई चीज़ लेकर आए ना तो वो आपने छुपा के लेके जानी है. मतलब दूसरे जो आपके रिलेटिव रह रहे होते हैं साथ, चचा ताया जो भी हैं आपके ताल्लुकात रह रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को होता है कि जी ये छुपा के हमने चीज़ रखनी है, फलाने की नज़र लग जाएगी या फलाने को हमने दिखाना नहीं है. कोई आपकी फैमिली में एक ऐसी खातून या ऐसा बंदा होता है जो कहते हैं नहीं नहीं इससे छुपा के रखना भाई. तो मतलब ये अजीब सी मिथ्स हैं वैसे. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चाह रहे होते हैं कि यार हम अपनी चीज़ें दिखाएं, हम शॉपिंग अपनी करके आए हैं तो हम शेयर करें लोगों के साथ, उसका मकसद कतन ये नहीं होती है, होता है कि आप किसी दूसरे को जो है वो कोई मतलब उसको कम महसूस करवाना चाह रहे हैं या फिर उसके सामने शोबाजी कर रहे हैं, कोई दिखावा कर रहे हैं. उसकी उसका वैसे ही अंदाज़ ऐसा होता है इस बंदे का कि वो अपनी हर चीज़ जो है ना वो अपने जो फैमिली पर्सन्स हैं, जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो अपने कज़न्स हैं, उनके साथ शेयर करता है. अचीवमेंट्स अपनी लोगों के साथ सेलिब्रेट करना लोगों की आदत होती है. मतलब इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, नेगेटिव थॉट्स नहीं है. कुछ लोगों का दिल करता है कि यार आप अपनी खुशी में ना दूसरे लोगों को भी शामिल करें. आपने कोई अचीवमेंट ली है, आपकी बर्थडे है, आप दूसरे लोगों को भी जो है वो उस पार्टी का हिस्सा बनाएं, उस मतलब आप इंजॉय करें, आप सेलिब्रेट करें और लोगों के साथ शेयर करें. इसका मकसद कतन ये नहीं होता है कि आप किसी दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो हर मतलब हर कोई तो नहीं ना इस नीयत के साथ अपनी ये चीज़ करता होगा. हाँ, पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, कुछ लोग हो भी सकते हैं इस तरह के.

0: लेकिन आप हर एक को जो है ना इससे रिलेट नहीं कर सकते हैं. तो बहरहाल जी, ऐसे लोग होते हैं तो आपको नहीं मालूम है कि अगला बंदा जो है वो आपकी खुशी में जेन्युइनली शामिल हो रहा है या वो जस्ट आपको दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है. तो इसलिए जो है ना, मतलब आप अपनी नीयत, मेरा ख्याल है इंसान को अपनी साफ़ रखनी चाहिए. उसका मिजाज जो है, जो दिखावे के लिए या मतलब दूसरों को के कहे में आके अपनी उस चीज़ को ख़त्म नहीं करनी चाहिए. ये आदत बहुत अच्छी है, दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को या अपनी खुशियों को शेयर करना. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई आपसे दिल से मोहब्बत करते हैं, जो वाकई आपके साथ दिल से शामिल होते हैं, और क्या पता उनको जो है वो खुशी जो आपकी शेयरिंग से मिल रही है वो कहीं उन्हें कहीं और से ना मिलती हो, और वो आपकी वजह से किसी कोई स्माइल उनके चेहरे पर आ जाती हो या कुछ पल उनके अच्छे गुजर जाते हों. क्योंकि अल्लाह ही है जो आपको मतलब बचाता है. तो इसलिए जो है ना, अल्लाह पर तवक्कल करके जो है ना अपनी इन आदतों को ख़त्म नहीं करना चाहिए कम से कम. वेल जी, एक और ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, और ट्रैक जो है ना बहुत ज़्यादा तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन जितनी आई मुझे मज़ा आया. बात इन्होंने बड़ी सच्ची की है. हानिया आमिर है, जहाँ पे वो कहते हैं ना, इधर पंजाबी में है, वैसे मैं उर्दू ट्रांसलेट कर देती हूँ, कि हिसाब सबका होना है. वो वाली बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कि हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबका हिसाब होना है. तो हमें अपनी जो है ना करतूतों पर नज़र रखनी चाहिए. इंजॉय कीजिएगा इसको, इसके बाद वापस आती हूँ. स्टिक अराउंड.
1: फेरियां रखा खाली मैं हवेलियां, तो सहेलियां बतेरियां अटकेलियां.

0: यार दिस वॉज द लाइन आई लव दिस. पुत्र मैं थोड़ा सांस ले. मतलब आप वाकई जेन्युइन चीज है और ये मामला जो है ना हमारे इर्द गिर्द बड़े चल रहे होते हैं. हम बस दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. हर बंदे को इंसान होने का मार्जिन जो है ना वो जरूर देना चाहिए, लेकिन हमने जो है ना वो हर वक्त एक तराजू पकड़ा होता है और उसमें हम ना उस तराजू में तोलते चले जाते हैं. यार कौन जो है ना वो कैसे है क्या है. वाह जी वाह. जनाब ज़ूबिया शफीक हमारे साथ मौजूद हैं और कह रही हैं जी सही कह रही हैं आप, नज़र तो लग ही जाती है, लोग नज़र लगा देते हैं बट तारीफ नहीं करते. और आगे से कह रही हैं नहीं हम तो जानबूझकर ऐड करके स्टेटस लगाते हैं. वाह जी वाह, समझ गई मैं आप क्या कहना चाह रही हैं. बहुत शुक्रिया ज़ूबिया. अभी नेक्स्ट हमने एक प्लान करना है इंशाल्लाह. सबको कहते रहते हैं पार्टी करो, गेट टुगेदर करो, फिर कोई जब सुनता नहीं है ना तो मैं और ज़ूबिया एक गेट टुगेदर कर लेते हैं. हम दो ही काफ़ी हो जाते हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह. कोशिश करते हैं बाकी सब लोग भी जो है ना वो शामिल हो, लेकिन जाहिर सी बात है हर बंदे की कोई ना कोई मसरूफियत भी होती है. लेकिन साथ में जो है ना मुझे लगता है कि लेज़ी हो गए हैं सारे. बहरहाल कुछ लोगों की कंपनी में जाके आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है. तो ज़ूबिया जो है ना वो वही एक पर्सन है जिनके साथ मुझे बहुत अरसे के बाद क्योंकि मेरा एक मतलब था कि बस अच्छा स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैंने करनी है, रूटीन से हट के नहीं कर रही थी, बट अब ज़ूबिया की वजह से जो है ना मैं वो चीज़ें दोबारा से कर रही हूँ. मैं हमेशा कहती होती हूँ मुझे बाहर जो है ना वो कभी भी दोस्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ी. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना वो फैमिली में ही, मतलब अपने बहन भाई मेरे लिए काफ़ी होते हैं, अपने मियाँ साहब, अपने बच्चे, और इनके साथ ही जो है ना मैं आउटिंग करती हूँ. जो भी अच्छा बुरा शेयर करना है वो मैं करती हूँ, लेकिन बहुत अरसे के बाद. मेरी फ्रेंड्स हैं, ये बात नहीं है कि मेरी फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन चूँकि सबकी शादियाँ हो गई हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं दो तीन जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा करीबी आप कह सकते हैं ताल्लुक़ है, या एक ज़ैनब हैं जो यहाँ पर होती हैं उनके साथ भी जो है वो ज़रा कम बातचीत होती है. और फिर उसके बाद जो है ना वो एकदम से ज़ूबिया जो हैं उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी एक बॉन्डिंग आप कह सकते हैं बन गई है. क्या मैं कुछ भी अगर कोई चीज़ें कुछ उकलियाँ करनी हो यू ना वो मैं ज़ूबिया के साथ कर लेती होती हूँ. तो बहरहाल मज़ा आता है जी. ऐसी कंपनी जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए आपके पास. कहें जनाब लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है. 12:36 हो चुके हैं, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: कौन बात कर रहे हैं और कहां से. एहसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं राइट.
1: बड़ी मुश्किल से कॉल मिली.
0: वाह जी वाह, चलें जी कैसे हैं आप. ठीक हैं
1: अल्लाह का करम है. और हम भी सोच रहे हैं हमें पता नहीं कि नजर सी लग गई है, कॉल नहीं मिलती.
0: नजर लग गई है ना, देखा ना, फिर काली बिल्ली तो नहीं रास्ता काट गई थी. सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी आपने.
1: काली बिल्ली पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता.
0: ओके
1: हाँ, बस नजर जो है ना ये तो बरहक है.
0: नहीं आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो यार हाँ नजर लग गई.
1: नजर मुझे बचपन में बहुत लगती थी. तो फिर हम बड़े हो गए भी नहीं रही.
0: ओके
1: जो बचपन में इंसान खूबसूरत गोल मटोल सा.
0: हाँ ठीक सही ठीक हो गया सुन भाई.
1: मेरे ख्याल से नजर लगती है लेकिन हमने ना नजर को हर चीज में घसीटा हुआ, छोटा सा भी हो जाए.
0: बिल्कुल बिल्कुल हर चीज में जो है
1: करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसके पीछे असल मुहरकात
0: क्या है उस तरफ भी जाना चाहिए.
1: और खुशियाँ सबके साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए. ये नजर वगैरह की डर से ना
0: हाँ छुपाना
1: नजर तो वैसे ही लग जाती है.
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: नजर लगा कर.
0: अच्छा
1: तो ज्यादा नजर ना उनकी जानवरों वगैरह को लग जाती है. जानवर देखना तो फिर उसकी नजर.
0: हाँ
1: उनको ना एक और बुजुर्ग मिले वो कहते हैं जी आप नजर लगती हो. कहते हाँ लगती है, इसमें शक नहीं है. वो कहते हैं यार ये अगर ना आप फलां चीज आप पढ़े या इस तरह करें ये नजर खत्म हो जाएगी आपकी नहीं लगी.
0: हाँ
1: अच्छा पक्की नहीं खत्म करनी, किसी जगह पे लगानी.
0: सही है, ठीक हो गया।
1: आमीन आमीन आमीन। सॉन्ग आपने हमारा प्ले कर लेना है क्योंकि कमेंट्स मैंने किया था।
0: अच्छा ओके,
1: वो लिखा हुआ था सावी मुरकीम ते बूटा काट दे चोले ते
0: है।
1: सावी मुरकीम ते बूटा काट दे चोले ते,
0: इतना मुश्किल गाना सुन के आप क्या करेंगे ये बताएं मुझे आप।
1: नहीं मैं ये गाना नहीं था, ये
0: फिर क्या है?
1: काल के इशू में मैं कह रहा था कि हम बिल्कुल रूठे हुए, हम दोबारा सुलह नहीं करेंगे।
0: ओके अपनी बातें शुरू कर देती, मैं बोलती बहुत हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एहसन भाई, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
2: जो डर गया समझो।
0: वल जनाब कह तो सही रही हैं, बोलती मैं बहुत हूँ, हालांकि अभी मुझे डॉक्टर ने काफ़ी मना किया है, आपने बातें नहीं ज़्यादा करनी, खामोश रहना है। अब आप हैरान हो रहे होंगे डॉक्टर ये क्यों मना करते हैं, जिनको जॉलॉक का इशू होता है ना उनके लिए फिर मना किया जाता है कि आपने ज़्यादा बोलना नहीं है। ठीक है, तो ये वाला इशू है मेरे साथ और क्या करें जी, अब हम क्या अपनी बातें छोड़ दें, बोलना छोड़ दें? कहते ना मैं ना जी मैं ना खाऊं, तो क्या करें आप, कुछ भी नहीं हो सकता। लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो,
3: हाँ जी कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक है?
3: जी मैं भी ठीक हूँ।
0: आपने हैंड फ्री लगाई हुई है या स्पीकर ऑन किया हुआ है? शोर नहीं आ रहा, लग रहा है बहुत दूर से आप कहीं से बात कर रही हैं, खला में बैठी हुई हैं आप कहीं। हाँ
3: नहीं नहीं ऐसे नहीं है, आज तक थोड़ा सा बात कर रही थी मैं। ठीक है,
0: मैं बेहतर है लेकिन अभी भी कहीं गूंज रही है आवाज, एको आ रही है, पता नहीं आपने या तो स्पीकर ऑन किया हुआ है।
3: वॉल्यूम तेज होगा, वॉल्यूम शायद तेज है।
0: वॉल्यूम किसका तेज है?
3: मेरा
0: नहीं, वॉल्यूम आपका बिल्कुल नॉर्मल सा लाइट सा है।
3: अच्छा
0: हाँ,
3: ये फिर ये होगा कि फैन की आवाज है क्या? एक मिनट बंद करके।
0: नहीं आप ना अगर आपने स्पीकर भी ऑन नहीं किया हुआ, हैंड फ्री भी नहीं लगाई हुई?
3: नहीं हैंड फ्री भी नहीं है, वक्त में उतार देती हूँ जब मेरी कॉल मिलती है।
0: ओके,
3: और अब मैंने फैन बंद कर दिया है तो आप शायद
0: ठीक है, बेहतर है।
3: अक्सर आरजीएस कहते हैं कि आपके पीछे ऐसी आवाज आती है।
0: अच्छा चलें बेहतर है, वैसे नाम बताइएगा प्लीज सुनने वालों के लिए।
3: अच्छा मैं ऑन ईयर हूँ।
0: जी जी, आप ऑन
3: ईयर कर रही हूँ।
0: कौन बात कर रही है?
3: मैं बिस्मा बात कर रही
0: हूँ। बिस्मा बात कर रही है, बिस्मा कहाँ से कॉल कर रही है?
3: मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, दूसरी दफा बात हो रही है मेरी आपके साथ।
0: ओके बिस्मा,
3: शायद आप कम आती हैं, छुट्टियाँ बहुत करती हैं, क्या सीन है?
0: सच्ची?
3: हाँ।
0: नहीं मैं तो पिछले 3 हफ्ते रेगुलर आई हूँ।
3: बात करने की कोशिश भी की थी दोबारा, एक शो में सुन रही थी, इतनी मैंने कॉल की, इतनी कॉल की। उस दिन फिर ना जैना बापी थी ना, उनके शो में जाके मेरी कॉल।
0: देख लें बस, फिर देख लें आप।
3: वो हाँ मैंने उनको कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि अरुज आपी से मेरी बात नहीं होती, तो ये सीन था। और मैंने ना एक चीज नोट की है आपकी और रूबी आपी की, आप दोनों का अंदाज इतना सेम हो जाती है, रूबी आपी है या रूबी?
0: सुन लो रूबी, सुन लो जुबिया, कॉपी करी हो मुझे है ना पूछती मैं जुबिया को भी जाके, जाहिर सी बात है मैं पहले आई थी ना।
3: अच्छा,
0: नहीं नहीं जुबिया, जुबिया हमारी बहुत प्यारी आरजे है, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी।
3: आपका और जुबिया आपी का जो अंदाज है ना बात करने का, बहुत सेम सेम है।
0: वाह जी वाह।
3: जब 14 अगस्त को मैं बात कर रही थी ना आपके साथ, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी, जब आप बोलती थी और जुबिया आपी बोलती थी, तो मैं कहती थी दोनों में से कौन है जुबिया आपी, आपकी मुझे आपका मुझे पता नहीं था,
0: वो
3: मुझे पता चल गया।
0: कहते हैं ना शादी के बाद जो है वो मियां बीवी की शक्लें भी मिलने लग जाती हैं, तो इसी तरह खैर मेरा और जुबिया का ज्यादा साथ रहता है ना, तो शायद हम लोगों का भी जो है वो स्टाइल फिर मिलने लग गया होगा। ठीक है,
3: आपकी दोस्ती के बाद ऐसे हुआ है, शादी के बाद
0: नहीं। मैं मियां बीवी शादी तो ऑब्वियसली मैं मियां बीवी की मिसाल दे रही हूँ ना, तो यहाँ पे हमारी कंपनी क्योंकि ज्यादा है, आपस में हम एक दूसरे से ज्यादा बातचीत करते हैं, तो मे बी इस वजह से हम एक दूसरे से मिलने लग गए होंगे।
3: आपकी मुझे उस दिन भी बहुत अच्छी बात लगी थी जब आपने कहा था, जब रुबी आपकी कहती ऊपर ना एक एरोप्लेन आता है वो ऐसे झंडिया फेंकता, तो आपने बात उनके लगाई तो कहती हाँ बात लगा गई हो मुझे तो okay. और अभी आपने जो बात की है कि अच्छा रुबी आप ही मेरी नकल कर रही है, रुबिया देख लो तो मेरी नकल उठा रही हो, ये भी मुझे बड़ा मजा आया उस बात का भी।
0: चलो
3: टॉपिक इतना अच्छा है आपका,
0: ओके थैंक यू।
3: मैं ये टॉपिक पे बात करूंगी कि देखिए मतलब आजकल लोग जो है ना वो किसी की कामयाबी पे लोगों को पता नहीं क्या खुशी नहीं होती, मींस कि लोग जेलस बहुत होते
0: बहुत ज्यादा,
3: ये बड़ा मुश्किल काम है किसी की कामयाबी पे खुश होना। अब देखो एक बंदा है उसकी प्लेट भरी हुई है खाने की, एक बेचारे गरीब के पास एक जमाला के आ गया उसकी प्लेट में और वो साथ ही उससे हसद करना शुरू कर देगा, होगा देखेगा उसको गया ये एक नवाला भी क्यों आ गया इस गरीब की प्लेट में, अब बल्कि अपनी उसकी प्लेट भी भरी हुई है हर चीज उसके पास अल्लाह की, वो शुक्र अदा नहीं करेगा बल्कि वो उसको दूसरे इंसान को देख रहा होगा ये क्यों खा रहा है या इसके हालात क्यों बदल रहे हैं। तो ये चीज बहुत है, जब हमारे हालात थोड़े से बदलते हैं या अल्लाह ताला या हमारी मेहनत जो है थोड़ी सी भी रंग लाती है, हाँ ही कुछ लोग जो होते हैं ना वो ऐसे देखते हैं बदनगाही करती हैं, नजर भी लगा देती हैं और उस तरह की कमेंट्स करते हैं कि साथ ही मतलब हम बीमार होकर ठूसों से बैठ जाते हैं, तो ये मुझे बहुत अफसोस होता है इस चीज का। आप एक इंसान को दूसरे इंसान की कामयाबी क्यों नहीं वो देख सकता।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक हो गया।
3: इसका क्या हल है आप भी बताइए।
0: इसका हल अच्छा चलिए मैं ऑनर बताती हूँ, ठीक है, जो मैं बिलीव करती हूँ, ठीक।
3: और एक सॉन्ग लगा देंगे आप,
0: कौन सा
3: वाला?
0: अच्छा वो इसरार का है मेरा ख्याल है ये ट्रैक है ना, चलो ठीक हो गया, मैं जरूर कोशिश करती हूँ, ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी इसका हल क्या है? अच्छा इसका हल एक तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर आपकी ये आदत है या आपकी नीयत अच्छी है कि आप अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करना चाहते हैं, आपका मकसद किसी को कमतर शो करवाना, किसी के साथ दिखावा करना, इस तरह की कोई नीयत नहीं है, मतलब आप पॉजिटिव हैं, आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी आपकी खुशियों में बराबर से शरीक हों, आप उनको भी कोई स्माइल दे सकें, कोई उनके साथ अच्छा एक ताल्लुक बना सकें, तो एक तो आपका तवक्कल जो है ना वो आपको इन चीजों से बचाता है कि जब आपकी नीयत साफ होती है ना तो बस आप अपनी तरफ से अच्छा किए जाएं, थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि इंसान है ना, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, लेकिन क्या करें अगर किसी शख्स के अंदर हसद मौजूद है, आपको नहीं मालूम है कौन आपसे हसद कर रहा है, कौन आपके साथ जो है वो अच्छा चल रहा है, वाकई वो आपकी कामयाबी पे खुश हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब आप नहीं जानते अगले बंदे की नीयत, तो एटलीस्ट अपनी नीयत को साफ रखें और अल्लाह ताला से जब आप दुआ मांगते हैं ना तो दुआ में अपने लिए ज़रूर ये मांगें कि अल्लाह तू मुझे सिर्फ अच्छे लोगों से मेरा वास्ता पढ़वाना और हर बुरे नज़र से बुरे शर से महफूज रखना, बस आप अपनी नियत अच्छी रखें और चलते चले जाएं, फिर जैसे लोगों को क्या करें, हम इनको नहीं चेंज कर सकते, इनको नहीं बदल सकते हम। और ज़ूबिया कह रही हैं वाइब्स ब्रो वाइब्स, जी बिल्कुल वाइब्स। अच्छा एक कॉल और लेते हैं, ठीक है, तीन कॉल्स मैंने कहा था, मेरे ख्याल दो कॉल्स हुई हैं, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम
2: जी, बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी, आप?
0: ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ हैं, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है,
2: आपकी दुआएं जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छी बातें हो रही है,
0: बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगे?
2: वो गाना नहीं है दिखाए दिल जो किसी का, वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए तो जिंदगी क्या है,
0: जिंदगी क्या है, बिल्कुल
2: ये इसी तरह मामला ना, जो काम किसी के आना चाहिए जिसको जरूरत हो उसके साथ सुनना चाहिए, यही जिंदगी का मकसद होता है जी।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे।
2: हाँ तो हमने जो पीछे नहीं हटना चाहिए जी, जो मुश्किल किसी पे आए तो हमको के साथ चलना चाहिए।
0: ठीक हो गया,
2: तो बहुत बहुत माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, हमारा साथ जीरा साहब भी सुन रहे हैं,
0: ठीक है,
2: जो बहुत अच्छा आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको भी सलाम दे रहे हैं,
0: वालेकुम अस्सलाम,
2: हमारे बहुत प्यारे आरजे वसीम अहमद उनको भी सलाम, आप सबको मैं दिल से सलूट करता हूँ,
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया,
2: बहुत
0: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और जी ये तो थे मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ, Well, नजर तो बरहक है, आपके गिर्द हासदीन भी मौजूद होते हैं, वो लोग मौजूद हैं जो आपसे हसद करते हैं, हर बंदा आपकी खुशी में दिल से खुश नहीं होता, इन सब चीज़ों को मानती हूँ मैं, लेकिन हर चीज़, हर बुरी चीज़ को, हर नाकामी को नज़र से जोड़ देना भी गलत है। अगर आप बीमार हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर बीमार हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रूहानी तौर पे जो है ना इलाज की तरफ जाते हैं, डॉक्टर्स पे बिलीव नहीं करते, डॉक्टर्स की तरफ नहीं जाते, तो ये भी गलत बात है। आप ज़रूर कराएं, रूहानी इलाज भी बहुत ज़रूरी है और यकीनन अल्लाह ताला के कलाम में शफा है, लेकिन साथ साथ जो है ये तो अल्लाह का भी हुक्म है ना कि अपने लिए जो है वो आप तबीब के पास जाएं, अपने लिए दवा करें, अपना इलाज कराएं, और जो आपको साइंटिफिकली क्लिनिकली आपको आपके साथ जो भी कुछ चल रहा होता है उसका उसकी तरफ जाएं, उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, ना कि ये बात जहन में बिठा लें या इस हद तक वहमी हो जाएं, इस हद तक शक में मुब्तला हो जाएं कि आपको आपकी बीमारी नज़र भी आ रही है लेकिन आप बस यही लगे रहें कि जी नहीं जी ये तो नज़र ही लगी है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे मामलात इस तरह से ख़राब हो रहे हैं। इलाज ज़रूर कराएं, जाएं, ज़रूर जाएं, डॉक्टर पे ज़रूर जाएं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जी, और साथ ही साथ जो है ना वो चारों कुल ज़रूर पढ़ते रहें, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें, सारा कुछ करते रहें, और बाकी तवक्कल जो है ना वो अल्लाह पर रखें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी नियत का फल देते हैं, असल फल मिलता ही नियत का इंसान को। ऑलराइट जी, 12:00 हो चुके हैं 50 मिनट, थोड़ा सा ही गाना सुनते हैं। लास्ट में ना मैंने एक और मज़ेदार किस्म का ट्रैक निकाल के रखा हुआ है, मेरा ख्याल है कुरतुलैन बलोच की आवाज़ है जी, और अभी रिसेंटली ड्रामा स्टार्ट हुआ है गुलबहार के नाम से, बहुत मज़े का ड्रामा लग रहा है। अभी मेरा ख्याल है 4 या 5 किस्तें हुई हैं, बट मज़े की किस्तें हैं, मज़ा आ रहा है देखने में। सनम सईद हैं और कौन है शहरियार हैं और कोमल मीर हैं, तो अच्छा एक ट्रायंगल बनने नज़र आ रहा है, वैसे ट्रायंगल बनने वाला है, और उसके साथ जो मसले मसाइल चल रहे हैं, ओ माय गॉड, बहुत इमोशनल चीज़ें चल रही हैं, अच्छा है, मज़ा आ रहा है, देखते हैं फिर रिव्यू देंगे आपको मज़ीद। मेरा ख्याल है कि गाना हम लास्ट अपना ट्रैक कौन है करते हैं, ठीक है, नहीं नहीं नहीं ये वाला था, ये वाला था, थोड़ा सा स्लो है लेकिन प्यारा ट्रैक है।
4: हमने माना नहीं इश्क की इंतहा, जाए तेरी गली में।
0: अच्छा जनाब, 12:51 हो गए हैं, तो ये था आज का हमारा शो। अब मेरी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को होगी आप लोगों से 11 से एक लेडीज लाउंज में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
4: इश्क की इंतहा,
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।

FM 101, a belly belly, a shower shower.

0: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya
1: आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

0: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji ye koi shak hai kya?
1: आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

0: दो बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आलमी तरक्याती इकदाम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का अदा किया है। नायब वज़ीर आज़म ने तरक्की पज़ीर मुल्कों में इक्तिसादी तआवुन तंजीम को मज़ीद मरबूत, मुसाबकती और मुतहरिक बनाने पर जोर दिया है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि अगर सऊदी अरब के खिलाफ कोई जारहियत हुई तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। पाक बहरिए के जहाज़ों ने बहरे अरब में मनुष्यात के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 2800 किलोग्राम से ज़ायद मनुष्यात कब्जे में ले लीं। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी तरक्याती इकदाम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का अदा किया है। वो न्यूयॉर्क में चीनी नायब सदर हैन ज़ेंग की मेज़बानी में आलमी तरक्याती इकदाम के हवाले से आला सतह के इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी तरक्याती इकदाम के अहदाफ हमारे कौमी इक़्तिसादी तब्दीली के मनसूबे से भी हम आहंग हैं। उन्होंने कहा कि एक खिता एक शाहरा इकदाम और उसके अहम मनसूबे सी पैक के जरिए पाकिस्तान का चीन के साथ तआवुन भी जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2030 के एजेंडे पर पेशरफ्त तेज़ करने के लिए आलमी तरक्याती इकदाम नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इक़्तिसादी तआवुन तंजीम को तरक्की पज़ीर मुल्कों के लिए मज़ीद मरबूत, मुसाबकती और मुतहरिक बनाने पर ज़ोर दिया है। वो न्यूयॉर्क में इक़्तिसादी तआवुन तंजीम की वज़रा कौंसिल के 27वें गैर रस्मी इजलास से खिताब कर रहे थे। इसहाक़ डार ने इलाकाई तआवुन को दोबारा फ़ाल और जुग्राफियाई, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती मसाइल के हल से हम आहंग बनाने के लिए उसकी इज्तिमाई सलाहियत मजबूत बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तआवुन तंजीम की वज़रा कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत से तंजीम का तवील मुद्दती विजन आगे बढ़ाने और खित्ते के अवाम के लिए ठोस नतायज फराहम करने के लिए काम करेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम ख़बरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आलमी तरक्याती इकदाम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का अदा किया है।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: दिस इज FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: This is FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: This is FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: This is FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: This is FM 101।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: आइए सामीन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
5: आज हम बयान करेंगे, पारा है दूसरा और सूरह बकरा है, आयत मुबारका 198 and 99। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगु फज़लन मिन रब्बिकुम फ़ाइज़ा आफ़तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हरामी वस्कुरू कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन कबलिही लमिन दौलीन सुम्मा फीदू मिन हैसु अफादन नासु वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। लैसा अलैकुम जुनाहुम, लैसा मैंने नहीं, अलैकुम तुम्हारे पर, जुनाहुम कोई गुनाह नहीं तुम्हारे पर, के तुम पर कुछ गुनाह नहीं, अन तब तक फजल मिन रब्बिकुम के तुम अपने रब का फजल तलाश करो, फायजा आफत तुम फिर जब तुम लौटो, मिन अरफात अरफात से, फज़कुरुल्लाह तो बस अल्लाह की याद करो, इंदल मशरिल हराम मशर हराम के पास और उसका जिक्र करो, वज़कुरुहु कमा हदाकुम जैसे उसने तुम्हें हदायत फरमाई, वा इन कुंतुम वा मैंने और इन मैंने अगर, बेशक कुंतुम तुम, मिन कबल इससे पहले, अलमिन दौलिन के गुमराह बहके हुए थे, सुमा फीदु मिन हैसु अफादत नास फिर बात यह है कि ए कुरैशियो तुम भी वहीं से पलटो जहाँ से लोग पलटते हैं, वस्तग़फिरुल्लाह और अल्लाह से माफ़ी मांगो, इन्नल्लाह गफूर रहीम बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है, बख्शने वाला और रहम करने वाला है। शान नज़ूल है, बाद मुसलमानों ने ख्याल किया कि राह हज में जिसने तजारत की या ऊँट किराए पर चलाए उसका हज ही क्या, इस पर यह आयत नाजिल हुई। इसे मसला बताया गया, जब तक तिजारत से अफाल हज की अदायगी में फर्क ना आए उस वक्त तक तिजारत मुबाह है, यानी जायज है। अरफात से जब तुम लौटो, अरफात एक मुकाम का नाम है जो मौकफ है कि हजरत आदम व हव्वा जुदाई के बाद 9 ज़िलहज को अरफात के मुकाम पर जमा हुए और दोनों में तारुफ हुआ, इसलिए कि इस दिन का नाम अरफा और मुकाम का नाम अरफात हुआ। हाँ, और इसी तरह एक कौल ये भी है, रोज बंदे अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं इसलिए उस दिन का नाम अरफा है। अरफा वकूफ फर्ज है, तलबिया जो है वह तहलील व तकबीर व सना व दुआ के साथ या नमाज मगरब व इशा के साथ ये है। और इसी तरह मशर हराम जबल कजा है, جس پر امام وقوف کرتا ہے. اس سے مسئلہ ہے کہ وادی محصر کے سوا تمام مزدلفہ موقف ہیں اور اس میں وقوف واجب ہے. بے عذر ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے. اس سے پہلے حالانکہ قریشی تم غافل تھے, طریق و ذکر عبادت نہیں جانتے تھے کچھ بھی, اور اسی طرح قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے. جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی ڈھٹائی سمجھتے. اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ پلٹیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. اور اللہ سے معافی مانگو, بے شک ان اللہ غفور, اللہ بے شک مہربان اور بخشنے والا ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ العظیم.
6: اور مسلمانوں, نماز صحیح وقت پر ادا کرو, اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے. اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
4: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: شکریہ, آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
2: دس از FM 101. دس از FM 101.
7: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
2: This is FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: क्या कह रही थी तुम, एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर, एक दिन एक घंटे।

0: ये काउंटर टेररिज्म का पैसा पूरे पाकिस्तान ने इकट्ठा करके दिया है। तो ये सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे दे कि ये 150-200 अरब रुपए उन्होंने कहाँ पे लगाया और किस चीज़ पर ये खर्च हुआ है, क्या ये जलसों पे खर्च हुआ है, क्रेनों पे खर्च हुआ है, इन्होंने कुछ सियासी कैपेसिटी बिल्डिंग अपने लोगों की है, सोशल मीडिया के कुछ सेटअप लगाए हैं, इसका वो जवाब देने से कासिर है। मगर देखिए कोहाट के लोग, मैं वहाँ पे चेंबर ऑफ कॉमर्स से, ट्रांसपोर्टर से, प्रेस क्लब से, प्रेस क्लब के वहाँ 32 मेंबरान हैं, आप एक एक से मिले, बहुत मुतहरिक लोग हैं और बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझे वेलकम किया, ये सादिक साहब बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे वेलकम किया और उन्होंने कहा कि जी शेख रशीद साहब आए थे, उसके बाद अब आप आए हैं तो हम आपको खुले दिल से वेलकम करते हैं और हम कोहाट की बेहतरी चाहते हैं, सूबे की बेहतरी चाहते हैं और चाहते हैं कि ये एक पुरमन इलाका और खित्ता बने। इसमें देखिए बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है जिससे वो गाफिल हैं। मगर क्या फेडरल गवर्नमेंट ने कभी ये कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे? हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हो सकता है नेशनल एक्शन प्लान के तहत कर रहे हैं, वहाँ पे फौज पाकिस्तान भी कर रही हैं, फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेज भी कर रही हैं और तमाम तर तवज्जो इस चीज़ के ऊपर है कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। मगर वहाँ पर जो फ्रंट लाइन है और जो वहाँ पे बुनियादी जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत की, अगर वो गाफिल भी हम फिर भी कर रहे हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि आप बैठे रहें और आप इनको खुली छूट दे दें कि जो इनके दिल में आए ये करें, कम से कम किसी स्टेज पे आके इनकी मजम्मत करें, इनको नुकेल डालें। ये अल्लाह ताला ने एक दिन मौत का मुकर्रर किया हुआ है, मौत उस दिन आ जानी है, मगर बुजदिली पे बंदा बैठा रहे कि इन दहशतगर्दों को कुछ ना कहो क्योंकि हमने 4 दिन और जिंदगी गुजारनी है, तो ऐसी जिंदगी को जो है मेरा ख्याल है कोई इसकी वक्त ही नहीं है कि वो दहशतगर्दों से डरते हुए जो गुजर जाए।
1: थैंक यू सर,
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत
2: नाज़रीन। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर।

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इमरान नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी तरक्याती इक़दाम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इआदा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में G77 और चीन के वज़ीर ख़ारिजा के सालाना इजलास से खिताब करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा के तरक़्क़ाती एजेंडे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर ना कभी भारत का टूट अंग था और ना कभी होगा। आज जापान में एशियन गेम्स के हॉकी मुकाबले में मलाशिया ने पाकिस्तान को 4-5 गोल से हरा दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी तरक्याती इक़दाम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इआदा किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आज़ाद कश्मीर।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसे मंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू है।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू है।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

dance music, and then dance magic. One Above FM.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: खवातीन हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं।

0: तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
3: सुनते रहिए FM 101 101।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
0: There's music, and then there's magic. One Above.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बआसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।

0: कंपनी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज़ायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफरे हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो ज़वाबित लागू हैं।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

नज़म से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे ख़त्म कर अभी, वो गलतियाँ गिनती गई, नफ़रतें बढ़ती गईं, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शामें तो

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आलमी तरक्याती इकदाम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इआदा किया है। नायब वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी आवाम के हक के खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि आवाम को मुतहरिक करने में नाकामी के बाद पीटीआई ने अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया। डेरा इस्माइल खान के इलाके दरा जिंदा में इत्तला'आत के मुताबिक इंसदाद स्मगलिंग अमन मेला पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश धमाके में 11 अफराद शहीद हो गए।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

मुलाजिम कहते हैं कि जिंदगी एक्शंस पे रिएक्शंस का नाम है. जैसे एक्शंस हमारी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, जैसे एक्शंस ये मामला हमारी ज़िंदगी के साथ चल रहे होते हैं, हम उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं, ज़िंदगी सिर्फ इस चीज़ का नाम है. क्योंकि ज़िंदगी में जो कुछ होना है, जो कुछ हमारे साथ होना है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है. सिर्फ हमारे रिएक्शंस होते हैं वो ये बताते हैं कि हम ज़िंदगी को कैसे ट्रीट करते हैं या ज़िंदगी को कैसे लेते हैं.

Mario ko lovely and smart smart listeners, assalamu alaikum FM 101 and bonjour. आपको दिल पसंद रेडियो स्टेशन FM 101 से आपको अपना मसूद अहमद आपके साथ। वैसे आज हो गई है जनाब सितंबर की 26 तारीख, सन है 2026, तारीख भी 26 है और जो साल है वो भी 26 है। महीने 26 नहीं होते, वरना शायद अगर महीना भी 26 होता तो फिर 26 हो जाता। वेल जनाब कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी बात है, अल्लाह ताला का शुक्र और आप लोगों की दुआएं, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। वेल जी, फिर मैं 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं, आप मसूद अहमद की, मेरा आपका साथ रहता है हर हफ्ते के रोज रात 10 से 12 में इन द शो दैट इज कॉल्ड शब खेजियाँ। और इस प्रोग्राम के बारे में जैसे मैं कहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए होता है, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो जवान नहीं भी है उसको हम जवान बना देंगे, कलर शलर करके नहीं, दिल से, अंदर से। और ये भी जहन में रखिएगा कि बात सिर्फ जवान बनाने की है, शैतान बनाने की नहीं है। वेल आप लोग कैसे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मौसम की जो तब्दीली है उसको आप भी महसूस कर रहे होंगे, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। बस तब्दीली ही है जो इंसान की ज़िंदगी में मुस्तकिल होती रहती है, घूमती फिरती रहती है और आती जाती रहती है। और इसके अलावा तो कोई और ऐसी चीज़ जो है वो कोई इतनी ख़ास नुमाया कभी काबिल ज़िक्र जो है ना कह लें कि महसूस नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी तो होती रहती हैं लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं। आज पता नहीं दिल कर रहा था, शायद मौसम का असर है कि सीज़न आ रहा है शादियों का। अभी तक बुलाया तो नहीं किसी ने, लेकिन ऐ भाई ऐ खुशी चल रही है।

0: वेलकम बैक एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं मसूद अहमद की। मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और बिल्कुल ठीक 12 बजे तक इन द शो दैट इज कॉल्ड द शब खेजिया। अच्छा, वैसे माइक की पावर का मैंने सुना तो बहुत था कि माइक की बहुत पावर होती है और माइक जो है वो इंसानों को चेंज करता है, उनके दिलों को चेंज करता है, उनके ख्यालात को चेंज कर देता है, उनकी सोच को चेंज कर देता है। लेकिन रेडियो लोगों के जज्बात को चेंज कर दे, लोगों का पेट ठीक कर दे, पेट में उठने वाले मरोड़ ठीक हो जाए, ये मैंने कभी नहीं सुना था। ये ज़रूर सुना था कि हाँ रेडियो सुन के किसी के पेट में मरोड़ उठते हो, लेकिन मरोड़ ठीक हो जाने वाला जो काम है ना, वो मुझे आज पहली दफ़ा जो है वो महसूस भी हुआ है और नज़र भी आया है। और सिर्फ ठीक नहीं बल्कि इतना ठीक हो जाए कि इंसान स्टूडियो में घूमता फिरता रहे और अपनी चीज़ें ढूंढता रहे और चीज़ों को सेट भी करता रहे, तो ये पहली दफ़ा मैंने आज देखा है। एनीवेज, इन बातों की वजह क्या है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले ये साहब पूरी तैयारी अपनी कर लें, फिर मैं देखता हूँ कि इनकी आवाज़ से वो ऑनर कैसे जाती है। वैसे इनको मैंने 2-3 दफ़ा चंद बार बल्कि ऑफर तो ज़रूर सुना है, तो आज जो है वो मैंने ऑफर क्या करा दी कि पता नहीं साहब जो हैं वो आसमान पे चढ़ गए एकदम अपने आप को 5-star चीफ गेस्ट समझने लगे थे और कहते कि मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने कहा पेट को छोड़े, हम आपका वो भी ठीक कर देंगे कि आपको किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत रहेगी। एनीवेज, अगर रेडियो पे से तस्वीर आ रही होती तो मैं आपको इंसाफ की तस्वीर शेयर करता कि जिस तरह तैयार होके ये बैठे हैं, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि माइक की जो पावर है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये जितना मर्जी तैयार हो जाएं, जितने मर्जी हेडफोन्स लगा लें, जितनी मर्जी तारें ठीक कर लें, जब तक मैं यहां से बटन ऑन नहीं करूंगा आपकी कोई देरी किसी काम नहीं आएगी। एनीवेज, अगर आप सब रोड पर ड्राइव करें तो ड्राइवर भी केयरफुली, क्योंकि आपकी जिंदगी हमारे लिए और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनके लिए आपकी जिंदगी बहुत कीमती है वो सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, और प्यार का तकाजा ये है कि फिर हम उनका जो ख्याल है वो भी उसी तरह से रखें जितना वो हमसे प्यार करते हैं। टॉपिक जो है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, फिलहाल मेरा तो दिल कर रहा है कि माइक को ऐसे ही रहने दूं, लेकिन उनको पता था कि आते हुए मैं कुछ लेकर जाऊंगा तो ही मेरी बख्शिश होगी। अब वो चीज़ ऐसी ले आए हैं कि मैं जो है, मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं माइक ऑन ना करूँ और उन्हें जो है मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बैठ कैसे देखूँ, कितना अच्छा लग रहा है। अभी शर्मिंदगी, वो बेचारे मुँह से कह नहीं पा रहे लेकिन आंखों से जो है वो उनके यहाँ है। चले अब थोड़ा सा मुंह पर कर लें और बात कर ही लें, मैंने माइक ऑन कर दिया आपका।
1: अस्सलाम वालेकुम, वाकई ऑन कर दिया आपने, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे।
0: आमीन इंशाल्लाह,
1: ऐसे ही सेहतमंद रखे, तरोताज़ा रखे।
0: आमीन इंशाल्लाह,
1: अल्लाह पाक आपको हिदायत दे।
0: आमीन,
1: अल्लाह पाक आपको आजिज़ी वाली जिंदगी दे।
0: आमीन आमीन,
1: बस हम दुआएं कर सकते हैं।
0: हम तो बहुत
1: जो आपने बातें कह दी हैं, जो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया है, लोग समझ रहे होंगे पता नहीं कौन आ रहे हैं।
0: समझ तो वो यही है, पता नहीं कौन आ रहे हैं,
1: वो वाली गल होगी ना, देखो देखो कौन आया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को, वेलकम। और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं, और मसूद भाई का बहुत शुक्रिया, आज बात कर रहे थे, कोई किसी मौजू पे बात हो रही थी और इन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा आज आप भी आओ तो हम मिल के बात करते हैं। मैंने कहा बात तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो सुनूँगा और ये सुनाएंगे जैसे खरी खरी सुनाते हैं, अभी भी सुना रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच मसूद भाई।
0: नहीं मुस्तफ़ा, मुझे
1: मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, पेट खराब है मेरा।
0: पेट आपका इंशाल्लाह शो के दौरान ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है।
1: देखते हैं,
0: हम शो के एंड पे चलेंगे ना तो आप अपनी आवाज देखिएगा कि कितनी।
1: देखते हैं आप ऐसी कौन सी शब्द खेजियां लेकर आते हैं। ये खेजियां वाला नाम मैंने कहीं पे लिखा पढ़ा सुना है ना, तो वो कुछ गड़बड़ वाले मामला सामने आते हैं।
0: मतलब किस तरह से, कुछ मिसाल दे के वाजे करें जरा।
1: खेजियां, अंगेजियां और बाकी ऑनियर कहने वाले अल्फाज नहीं है।
0: नहीं मतलब ऐसा कौन सा लफ्ज़ है, चलें वो मैं ऑफिर आपसे सुन लेता हूँ, फिर उसको बाद में हम आसान अल्फाज में जो है वो अपने शो में शामिल कर लेंगे, ठीक है?
1: जी जी ज़रूर शामिल करते हैं। और अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
0: ओके
1: मौजू आप बता दें क्या बात।
0: मौजू तो हम 10:30 बजे के बाद बताते हैं, उससे पहले हम जस्ट ऐसे चिटचैट करते हैं और आपका जो इंट्रोडक्शन है वो हमने थोड़ा सा सुनना था कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो कैसा है और आप जितने अच्छे माइक से पीछे बोलते हैं कि आया माइक पे भी उतना अच्छा बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो ये ज़रा मैंने कहा कि आज ना चेक करते हैं, क्योंकि कुछ मैंने सुना था कि कुछ आपकी ट्रेनिंग्स हुई हैं, आपको बड़ा ट्रेन करने की कोशिश की गई है, तो मैंने कहा कि मैं भी चेक करूं कि मुस्तफ़ा कितना ट्रेन हो गया है और इसमें जो है वो कितनी चेंज आई है उस ट्रेनिंग के बाद।
1: नहीं नहीं आप चेक नहीं करें, बल्कि हमें ट्रेन करें, मज़ीद ट्रेन करें।
0: नहीं ऐसा नहीं, हम खुद सीख रहे हैं। आपको ट्रेन करना मुस्तफ़ा वो एक जो है एक बजाते खुद उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, ठीक है?
1: अच्छा बड़ी मेहरबानी।
0: और वो ट्रेनिंग भी मुझे लग रहा है कि आपसे ही लेनी पड़ेगी। अच्छा आपसे पूछना पड़ेगा आपको कैसे सिखाएं भाई।
1: नहीं आपने मतलब आप शादीशुदा बंदे हैं, अभी तक आप ट्रेन नहीं हुए हैं तो बड़ी बात है।
0: देखिए ट्रेन तो मैं हो गया हूँ, लेकिन जिस ट्रेनिंग की आपको जरूरत है उसकी मुझे भी जरूरत है अभी।
1: आप सुनने में ट्रेन हुए हैं लगता है।
0: हाँ सुनने में भी कह लें, वो ट्रेन नहीं हुआ, वो टेम्पो बढ़ गया उसका,
1: टेम्पो
0: बढ़ गया उसका, तो जो बर्दाश्त है वो बढ़ गई है उस सिलसिले में। एनीवेज FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं आप मुस्तफ़ा की और मसूद अहमद की। हमारा आपका साथ रहेगा 12 बजे तक इन द शो दैट इज़ कॉल
1: शब खेजियां।
0: और ये खेजियों पे जो आपने इतराज़ उठाया ना, इसको मैं ज़रूर आपसे जो है ना क्लियर करके आज भेजूंगा,
1: क्यों नहीं
0: ठीक है? एनीवेज इस प्रोग्राम में हम बढ़ेंगे इस ट्रैक की जानिब और इसके बाद एक दफ़ा फिर से आपके साथ होंगे। सो स्टे ऑन 101, वी विल बी राइट बैक।

0: We'll just welcome back.
1: इसमें हंसने वाली क्या बात
0: है? अभी मुस्तफ़ा, अभी तुम्हारी मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
1: हाँ, इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह
1: आज कोशिश है, ट्रेन होके जाऊँगा यहाँ से।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों में मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा इंशाल्लाह। ये जो आवाज़ अभी आई थी ना, ये भी नहीं आनी चाहिए थी। कहते इतनी खामोशी होनी चाहिए कि इतनी खामोशी से काम होना चाहिए कि ये वाली आवाज़ जो है ना, ये भी नहीं आनी चाहिए। तो बाकी
1: आप पता नहीं किन कामों की बात कर रहे हैं। वैसे
0: मैं बात करूं ऑन एयर आने से पहले, क्योंकि ऑन एयर जब आप माइक को सेट कर लें तो पहले माइक को सेट कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको ऑन एयर आना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल जी, एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं मसूद अहमद की, और मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही शरीफ नफ्स और बहुत ही प्यारे आरजे।
1: थैंक यू मुस्तफ़ा मुझे कहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, मुस्तफ़ा इन्हें कहते हैं, बट ठीक कहते हैं जो कहते हैं। एनीवेज जी, 10:00 हो चुके हैं 34 मिनट, और 12 बजे तक हमारा प्रोग्राम है। जिस प्रोग्राम का जो टॉपिक है ना, वो आपको हम बताएंगे इस ट्रैक के बाद। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता चलूँ मुस्तफ़ा, कि ऐसा होता है कि मैं 11 बजे तक ना कोई कॉल्स प्रोग्राम में शामिल नहीं करता, ना ही वो ऑफ एयर कॉल्स होती हैं, ना ही वो ऑन एयर कॉल्स होती हैं। जस्ट हम अपनी बात करते हैं और अपना जो एक हफ्ते का जो अपने अंदर जो घर में नहीं कह सकते या किसी को नहीं कह सकते, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ।
1: अच्छा, मुझे लगता है आप दोनों यही करने आते हैं यहाँ पे।
0: देखो, इसीलिए तो मैंने आपको भी बुला लिया ना, कि मैंने ख्याल किया कि अगर मेरे ये जज्बात हैं तो किसी और के भी हो सकते हैं।
1: अच्छा, मेरे साथ भी एक्चुअली यही मामला आता है। मैं कोई बातें ऐसी कहता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ना ही कहूँ तो अच्छा, फिर यहाँ पे आके कर लेता हूँ एक ढके छुपे अल्फाज।
0: नहीं, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आप वैसे ऐसी बातें ना ही करें ना किसी के सामने घर में तो अच्छा है।
1: ये भी घर ही है, फैमिली चैनल है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं फैमिली चैनल तो ज़रूर है, लेकिन बातें यहाँ भी सोच समझ के करनी पड़ती हैं।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत ऐसी है।
0: एनीवेज जी, आपको मैं बात का, हम तो बात क्या कर रहे थे मुस्तफ़ा?
1: मौजू आप बताने लगे थे आज।
0: मैंने कहा था मौजू नहीं बताना अभी।
1: अच्छा, आप वो बताने लगे थे कॉल्स नहीं लेते हैं।
0: हाँ ठीक है, बिल्कुल। हम भी बात कर रहे थे कि जी कॉल्स जो है वो हम 11 बजे के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे पास आना चाहें तो उससे पहले आप हमारे पास आ सकते हैं। इस टाइम के आप हमें डायल करेंगे, हमें हमारा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, द नंबर इन माय सेल इज 1700-0001, इन योर सेल द नंबर इज 1100-1001। दिस इज द मैजिकल, मिस्टिकल एंड द म्यूजिकल नंबर ऑफ लाहौर, और यू कैन से द 3MMM नंबर। इसके अलावा जी फेसबुक पर हमारी पोस्ट है, आज नई पोस्ट लगी है जी, और
1: टोपी शोपी पा के आए हो।
0: हाँ, टोपी शोपी पा के, कंगी शंगी वा के, तेल चेल ला के। तो जब ये पोस्ट जो है वो जब जिन्होंने लगाई ना, हमारे बहुत ही प्यारे हैं शाह साहब, शाह जी ने, अदील ने, तो कहते हैं मसूद भाई गर्मियों में सर्दियों वाली पोस्ट। तो मैंने कहा कि यार बस सर्दियां आने वाली है, उसकी तैयारी है
1: आने वाली, आने वाली।
0: तो मैंने कहा हम भी बताना चाह रहे हैं लोगों को कि हमने असीं सर्दियां के कपड़े ले लेने।
1: ये भी सही है,
0: ठीक है, असीं तैयारी पूरी कर ली है सर्दियों। हुण गर्मियों के कपड़े जड़े ना रखन का मौसम आ गया। तो आप जनाब हमारी सर्दियों वाले कपड़ों वाली पोस्ट पे कमेंट करके भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका और हमारा मुस्तफ़ा, जिस पे आप,
1: उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 0420111111,
0: ये मैंने बता दिया।
1: इसके अलावा मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कभी मैसेज, मुझे आए नहीं है तो मैंने कभी बताया भी नहीं है। नंबर के, नंबर क्या है,
0: ज़ालिम हो
1: यार, बता दे, बता देना।
0: नंबर है जी 4471, और उसके लिए आपने अपने राइट मैसेज के ऑप्शन में जाना है, वहाँ लिखना है 11, उसके बाद आपने स्पेस देनी है, और फिर उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, और फिर उसके बाद एक और स्पेस।
1: मसूद भाई, आपने ये पेट्रोल स्कीम जो आई है इस पर अप्लाई किया कि नहीं?
0: यार मैंने किया था, लेकिन मेरे नंबर से ना मैसेज
1: समझ
0: नहीं आता। नहीं नहीं,
1: अच्छा,
0: वहाँ इंग्लिश में था ना, तो अच्छा, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो बाकी एक और मसला भी था कि मेरे नंबर से उस पर मैसेज नहीं जाता किसी, अच्छा, भी जो कोई भी जो कंपनी है, ये शॉर्ट कोड को ऐसा ना जिसमें पैसे चार्ज होते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो बहुत समझदार है मेरा मोबाइल, उस पर मैसेज नहीं करता।
1: अरे क्या बात है।
0: तो
1: लेकिन यहाँ पे तो पैसे बचाने वाली बात है ना, यहाँ पे तो,
0: लेकिन पहले लगेंगे तो फिर बचेंगे ना।
1: हाँ,
0: तो वो इसलिए वो लगाने ही नहीं देता।
1: सही है, अच्छा वाला मोबाइल है,
0: बहुत अच्छा मोबाइल, महंगा मोबाइल है। अभी सुने कि कुछ लाखों में लॉन्च हो रहा है, ये हुआ है कल परसों लॉन्च हुआ है।
1: क्या बात है, क्या बात है। जाते हुए खैरियत से जाइएगा, मुझे साथ ले जाइएगा।
0: किसके लिए, मोबाइल की हिफाजत के लिए या अपनी हिफाजत?
1: मोबाइल की, दोनों की।
0: चले तो फिर आपकी हिफाजत कौन करेगा?
1: मैं खुद ही कर लूंगा।
0: चले ठीक है जी, और इस वक्त मुस्तफ़ा हम प्रोग्राम में प्ले करेंगे ये वाला ट्रैक, और इस ट्रैक के बाद हम एक दफ़ा फिर से आपके साथ होंगे, फिर हम टॉपिक बता देंगे। ठीक है, और टॉपिक जो है वो हमारा बड़ा अच्छा सा है और इसको हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही और मज़ीद अच्छे तरीके के साथ
1: हल्का सा हिंट दे दें कोई क्या क्या कहने वाले हैं आज।
0: अच्छा सा हल्का सा हिंट जो है वो कह लें कि एक बड़ी हमारी नॉर्मल सी एक कह लें कि एक फीलिंग है, एक हमारा एहसास है कि यार अगर कोई मेरी थोड़ी सी तारीफ़ कर दे तो मैं जो है ना दुनिया में तबाही मचा दूंगा, मैं ये चेंज कर दूंगा। लेकिन मसला ये है कि कोई तारीफ करता ही नहीं है मेरी और कोई कुछ नहीं है, तो ये एक
1: फीलिंग आपकी
0: नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हाँ आप जो अचानक क्यों एकदम पर्सनल अटैक करते हैं ना, वो मैं उसका जवाब तो दे सकता हूँ लेकिन फिर वो फैमिली चैनल वाली बात
1: क्योंकि वो जो आप सवाल करें वो मुझसे रिलेट कर गया था, होंदा थे मेरे नाल भी है वैसे।
0: हाँ अजय मैं गल पूरी नहीं सीखी इसलिए मैं उसे प्लेटफॉर्म बना रहा
1: था। ओके ओके ठीक हो गया। अच्छा जनरल सवाल है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी हम लोगों की तारीफ करते हैं तो मुख्तसरन वो हमारे सर पर जड़ जाते हैं।
0: नहीं
1: फिर
0: हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि इंसान को आगे जो है वो तारीफ लेके जाती है या तनकीद लेके जाती है। ठीक है
1: सही अच्छा सवाल।
0: तो आप भी इस पे ज्यादा गौर नहीं करना आपने
1: ठीक हो गया
0: क्योंकि वो बाद में परेशानी का बहस बन सकता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी।
1: okay, okay.
0: तो बस नॉर्मल सा हम इसको बड़े लाइट वे में हम इस पे बात करेंगे, कोई संजीदगी नहीं करेंगे क्योंकि संजीदगी जो है ना वो हमने अपने प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रखी होती। तो मैं तो अपने प्रोग्राम में अक्सर ये कहता हूँ कि मैं तो बहुत बेअदब सा इंसान हूँ तो मुझसे अदब वाली बातें जो है वो नहीं होती या उनकी तवक्को जो है वो कम रखा करेंगे।
1: अच्छी
0: बात है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम ये वाला गाना और इस गाने के बाद एक दफ़ा फिर से आपके साथ होंगे। और मुस्तफ़ा आपको पछतो आती है?
1: तो समझ आती है थोड़ी थोड़ी लेकिन वो जो मुझे समझ आती है वो बोलने वाली नहीं है यहाँ पे। वेल पश्तो ट्रैक है, किसकी आवाज़ में आए है
0: खातून है कोई मुस्तफ़ा।
1: चलो ठीक है चला दें आप सुने तमाम सुनने वाले हम देखते हैं।
0: हाँ वो हम देखते हैं आप सुने से। एनीवे जस्ट स्टिक अराउंड 101, वी विल बी राइट बैक।

0: वेलकम बैक। और जब ऑफर मुस्फा मुझे कह रहे थे कि मसूद भाई आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो मैंने कहा मुस्फा चले आप बोले।
1: नहीं नहीं, मैंने क्या बोलना है, मैं वैसे कह रहा था कि बीजीएम थोड़ा सा मतलब अगर लाउड कर लें तो ज़्यादा मज़ा आएगा बोलने का, बातें करने का। वैसे भी रात का टाइम है, थोड़ा स्लो बोलें तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मैं हूँ आपका मेज़बान मसूद अहमद, आज हम शेर व शायरी पढ़ेंगे।
0: मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मैं मुझसे अदब नहीं होता।
1: अदब, अदब से मुराद, अदब से मुराद लाजमी तो नहीं है कि आप स्लो ना हो, आहिस्ता ना हो।
0: अदब के ज़ुमरे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैंने उन तमाम को कवर किया है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: ठीक है,
0: ठीक है ना,
1: ठीक है, मैं समझ गया मैं समझ गया, चलिए अच्छी बात है। अच्छा मसूद भाई, आपकी जो वाइब है ना वो है भी थोड़ी यंगस्टर्स वाली है, नौजवानों वाली है। वो और बात है कि आप अभी भी नौजवान।
0: मुझे हालात ने बुरा कर दिया।
1: किसने
0: हालात ने
1: मुझे लगा कह रहे हैं हर रात ने बुरा कर दिया।
0: नहीं नहीं, ऐसा कहते नहीं है, मुझे हालात ने बुरा कर दिया, अदरवाइज दिल मेरा जो है वो भी जवान है।
1: अरे क्या बात,
0: और
1: चलिए अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको जवान ही रखे।
0: आमीन।
1: और ऐसे ही आप माइक पे आते रहे, रौनक लगाते रहे।
0: आमीन इंशाल्लाह। बस आप जैसे भाइयों की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये भी सिलसिले जो है वो चलाते रहेंगे। अच्छा मुस्तफा, बात मैंने टॉपिक के हवाले से आपको बताया था, तो आपके जहन में क्या बात आती है कि क्या होता है कि इंसान जो है वो तनकीद से या सिर्फ पीछे रुक जाता है या आगे भी बढ़ता है?
1: तनकीद ना मुझे लगता है कि करने वाले पे मैटर करती है। तनकीद करने वाला अगर इंसान अपनी सिर्फ भड़ास निकाल रहा है ना, तनकीद भरा है, तनकीद कर रहा है, तो वो मामला ख़राब हो जाता है जिस पे कर रहा है उसके लिए। अच्छा। और अगर वो तनकीद करने का भी तरीका होता है, वो तामीरी हो सकती है, थोड़ी कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, लेकिन अगर तनकीद के अंदर कुछ ऐसे जुमले शामिल हों, कुछ ऐसी बातें हों कि जो कि अगले बंदे को डिसार्ड कर दें, तो मुझे लगता है कि वो तनकीद नहीं होनी चाहिए।
0: अच्छा, डिसहार्ड इंसान कब होता है भला? इंसान, मुझे तो लगता है कि इंसान डिसहार्ड तब होता है जब वो चीज़ों को पर्सनल लेता है।
1: मुझे लगता है कि इंसान अल्फाज से नहीं, लहजों से डिसहार्ड होता है ज़्यादा।
0: हाँ ये भी ठीक है, लहजों से भी डिसहार्ड होता है, लेकिन मैं ही बात करूँ कि डिसहार्ड होना चाहे अल्फाज से हो या लहजे से हो, किसी भी तरीके से हो, वो तभी होता है जब इंसान पर्सनल लेता है चीज़ों को। अगर आप पर्सनल ना लें तो मुझे लगता है इंसान कभी डिसहार्ड नहीं होता।
1: हाँ ये भी ठीक है, ये अच्छी अप्रोच है कि किसी भी चीज़ को ना पर्सनली लेना चाहिए, मतलब आई गई कर देनी चाहिए।
0: हाँ आई गई कर देनी चाहिए और उसको अपनी इंप्रूवमेंट के लिए एक जीना बना के तो इंसान को उस पर स्टेप रख के उस पर आगे चले जाना चाहिए।
1: ये अच्छी अप्रोच है,
0: ये अच्छी अप्रोच है। तो आप क्यों नहीं करते फिर ऐसे?
1: मैं करता हूँ, बस कर रहा हूँ, तो आज यहाँ बैठो ना आपके साथ।
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मैंने कहा चलो बहुत ऐसा हुआ कोई मुस्तफा ने किसी अच्छे बंदे के साथ शो नहीं किया, तो चलो आज मुस्तफा से दावत दे देते हैं।
1: क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया आपकी दावत का।
0: हाँ बहुत मैंने शो आपके सुने तो मुझे लगा कि मुस्तफा के साथ शो करना चाहिए, मुस्तफा से कुछ सीखना चाहिए मुझे भी।
1: अल्लाह माफ करे, आप मुझसे सीखेंगे ना तो फिर
0: आप
1: अच्छा भाभी सुन रही है, मैं आपको बता दूं
0: यार ये मेरे लिए बड़ा मसला है वैसे जो है।
1: नहीं ये मसला है कि मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है, प्रिविलेज आपके लिए।
0: हाँ प्रिविलेज बिल्कुल है, एटलीस्ट ये हौसला होता है और को सुने ना सुने।
1: अच्छा मसूद भाई, ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन है कि जब एक आप आर्टिस्ट होते हैं और आपका पार्टनर भी आर्टिस्ट होता है, तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ा बंदा दब नहीं जाता
0: किस चीज़ से?
1: एक वो आ जाती है कि यार ये मेरी पार्टनर है, मैं ऐसे बोलूँगा वैसे बोलूँगा, मुझे तनकीद करेगी या कीड़े निकालेगी, कुछ ऐसा नहीं होता?
0: नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हम एक दूसरे पे प्रोफेशनली तो बिल्कुल भी तनकीद नहीं करते और ना ही कभी शोज़ को डिस्कस करते हैं, ना ही हम कभी आपस में टॉपिक्स डिस्कस करते हैं कि सुबह प्रोग्राम में टॉपिक क्या रखना है, और ना ही कभी कुछ, क्योंकि उससे मुझे पता है क्या लगता है, उससे ये लगता है कि एटलीस्ट जो चीज़ आपके अपने माइंड में चल रही है ना, क्योंकि अब जो शो है ना बेसिकली, चाहे वो मैंने करना हो, हफ्ते में मैं एक शो करता हूँ, इसके लिए आप ये मत समझें कि ये शो सिर्फ मैं एक दिन के लिए होता है।
1: अच्छा
0: ये आप कह लेंगे तीन चार दिन
1: सोचते रहते हैं टॉपिक्स,
0: तीन चार दिन से मुझे वो जहन में आना शुरू हो जाता है कि मैंने शो में क्या करना है, मैंने सॉन्ग्स कैसे प्ले करने हैं, मैंने उसका टेम्पो क्या रखना है, मैंने उसको एक सिमेट्री क्या बनानी है उसकी, और किस तरह लेके चलना है। इवन के इतने सालों के बाद भी मुझे उसकी एक अब कहने की वर्चुअल प्रिपरेशन जो है ना वो तो करनी ही पड़ती है, कि मैंने एक आउटलाइंस जो स्केच है वो मुझे देखना ही पड़ता है, तो उसमें टाइम गुजर जाता है और फिर जाके कहीं सैटरडे नाइट को जो है वो एक शो में कर पाता हूँ। तो मुझे होता है ये कि बस जो कर लो थोड़ा अच्छा कर लो, लेकिन थोड़ा अच्छा कम कर लो लेकिन अच्छा कर लो,
1: अच्छा कर लो सही।
0: मैं ये नहीं कहता कि जो ज़्यादा कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, माशाल्लाह एक कह लें कि लाइफ का एक हिस्सा होता है जिसमें आपके पास एक एनर्जी और तरह चीजें होती है, आपकी थिंकिंग कुछ और होती है, तो टाइम के साथ साथ जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाती है। हमने भी वो थिंकिंग देखी कि जब आप एक हफ्ते में पाँच छः शोज हम कर लेते थे और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब ये होता है कि अब एक शो करने के बाद घर जाके अगर खाना खा के आए भी है ना तो दोबारा भूख लग जाती है।
1: अच्छी बात है,
0: ठीक है ना। तो एनीवेज लिसनर्स भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ हमने मुस्तफा आप हम दोनों ने आपस में बातें करने के लिए नहीं किया, हमने लिसनर्स को भी इन्वॉल्व करना है साथ।
1: अच्छा, बस अपनी आवाज़ नहीं बदल किया, अपनी असल आवाज़।
0: असलियत इंसान को अपनी कायम रखनी चाहिए।
1: अच्छा, पिछले दिनों मेरे शो में एक खातून आई और मुझसे फ्लर्ट कर रही थी, मुझे कहती मेरे क्लिनिक आ जाएं। लिटरली मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी है और मैंने कहा नहीं, अल्लाह मुझे किसी ऐसे मसले से बचाए कि मुझे आपके क्लिनिक आना पड़े।
0: मतलब वो क्या समझी थी आपको, कैसा मसला है?
1: नहीं, कोई मसला नहीं है। आपने मुझे लगता है आपने जिक्र अब किया है पेट खराब का, तो मैंने पहले कभी किया नहीं है, लेकिन आई थिंक लोग गेस कर लेते हैं क्या मामले आते हैं पहले से। जोक्स अपार्ट, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं 04211100111 पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मसूद भाई ने बातें जो है ना कहीं और ले जानी है।
0: कहीं और ले जानी है, इससे पहले कि कहीं और चले जाएं बातें, कहीं और जो है वो किसी और जानिब चले जाएं, कोई और रुख ले लें। हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं ये वाला गाना और इसके बाद एक दफ़ा फिर से
1: आपसे आज हमने कुछ सुनना भी है, कुछ शेर व शायरी सुना दें
0: मेरे से। आप मुस्तफ़ा ज़रूर सुनेंगे और मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा, जो आप सुनेंगे उनको हम अपनी ज़ुबान में तो खरी खरी कहते हैं।
1: अच्छा, ठीक है,
0: ठीक है ना, तो वो मैं सुना सकता हूँ अगर आप मुझे गाना कहें।
1: चले, तो गाना सुना दे, गाना सुना दे, कव्वाली सुना दे।
0: ये देखें, ये मैं आपको गाना सुनवा रहा हूँ ना, ये गाना सुने आप, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सुनना चाहेंगे।
1: नहीं नहीं, यार
0: गाने के फॉर्म में नहीं, तो वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। स्टे अराउंड 101, वी विल बी राइट बैक।

0: हेलो मुस्वा, इस ट्रैक को हम बैकग्राउंड में रख लेते हैं। और तुमने कहा था ना थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो चुक के रखे हैं।
1: हाँ जी,
0: तो मैंने कहा चलो हम थोड़ा चुक लेते हैं बैकग्राउंड को।
1: क्या बात है,
0: चुकना ते बाना ते कोई मसला नहीं है।
1: अभी आप पिछले दिनों कह रहे थे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ,
0: वो तो मैं वैसे ही आपको सियासी बयान दिया था कि शायद आप अब मान जाए, लेकिन
1: चलिए अच्छी बात है। टॉपिक पे बात करते हैं कि सवाल ये किया है कि तारीफ जो है वो इंसान को आगे लेके जाती है या तनकीद लेके जाती है।
0: बिल्कुल ऐसी है, और तारीफ भी जो है वो अच्छा, मुझे ये क्यों टॉपिक मैंने क्यों रखा, ये मैं आपने मुझसे इसका बैकग्राउंड नहीं पूछा,
1: अब बताएं थोड़ा सा बताएं।
0: अच्छा, बैकग्राउंड चले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि बैकग्राउंड ये है कि कुछ दिनों से ना ऑफिस में एक मैं उस पर क्या कहते हैं उसको असाइनमेंट पे काम कर रहा था कि हमारे बॉसेस ने एक नई ऐप कोई लॉन्च की थी, उस ऐप को जो है ना कुछ डाटा चाहिए था।
1: अच्छा।
0: तो वो डाटा मैं उन्हें प्रोवाइड कर रहा था पिछले तकरीबन कोई एक हफ्ते से। अच्छा, एक हफ्ते से मैं डाटा प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन बस कह लें कि कुछ आंस ऐसा बन रहा था कि मैं भी सर्च में था कि मैंने इतना डाटा उन्हें प्रोवाइड किया, इतना एफिशिएंटली उन्हें सब कुछ दिया, तो कोई अप्रिसिएशन की कहीं से कोई बात जो है वो
1: नहीं
0: आई, बिल्कुल नहीं आई। अच्छा, अब मैं कल की बात है कि कल जब मैंने ऑलमोस्ट डाटा अपना कंपाइल करके कुछ जो एक प्रोजेक्ट जो मुझे मिला था उसमें मैंने करके जब उसका फाइनल जब मैंने उन्हें वो डाटा उन्हें भेजा ना कि भाई सर ये जो है ना इसके अब आपकी पूरी जो है ये कंपाइल हो गया डाटा, अब आप इस पर जो आप करना चाह रहे हैं वो आप इस पर से निकाल सकते हैं। तो हुआ पता क्या कि उन्होंने उस फाइल पर ना एक दिल का निशान बना दिया।
1: अच्छा, ग्रुप बना हुआ था उसमें।
0: हाँ बिल्कुल, हमारी जो टीम का जो जिसपे हम जो भी हमें ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है ना उसका एक कह लेंगे टीम्स पे ग्रुप बन जाता है, तो उससे रिलेटेड जो है वो फिर हम मामला तो उसमें चलाते रहते हैं। तो उस पर वो जो दिल का साइन एक बना हुआ आया ना, तो उसने मुझे यकीन माने कि इतना मोटिवेट किया, इतनी मोटिवेशन दी उसने मुझे कि मैं मतलब घर आके भी बता रहा था कि इतने पिछले दो हफ्ते से
1: बड़ी खुशी होती है,
0: बहुत खुशी हुई। तो इस दौरान दो हफ्ते थे ना, इसमें बॉस ने सिर्फ तनकीद ही की, महसूस साहब ये नहीं है इसमें, महसूस साहब ये क्या किया आपने, महसूस साहब ऐसे, महसूस साहब वैसे, मैंने आपसे मांगा ये था आपने भेजा, जो भी होता है बॉसेस की एक आमतौर पर बात होती है। तो वो मैसेज कर कर सुन के देख के कर कर के ना, तो मैं बस थोड़ा सा एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया। लेकिन एक वो जस्ट साइन ऑफ एप्रिसिएशन जो था ना, उसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मुझे लगा कि मेरा वीकेंड जो है ना बड़ा बम्बास्टिक गुजरेगा।
1: अच्छा, इस वीकेंड की बात है।
0: हाँ, वो ये बात तो मुझे बाद में पता चली थी।
1: ठीक है,
0: हाँ जो आप लेके आए हैं इसकी वजह से होगा, ये मुझे अभी पता चला जब आप आए हैं, और साथ ये पता चला कि फिर आपका पेट क्यों खराब रहता है अक्सर।
1: नहीं नहीं, वो असल में ना बस आजकल खाने की थोड़ी बदभेरी चल रही है, और अभी मैंने खाना था लेकिन मैंने नहीं खाया, मैं अकेले खा के आया हूँ, खा के आया हूँ ज्यादा सारे। हाँ,
0: सस्ते हुए मैं केले, आजकल अच्छे केले आ रहे हैं,
1: अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि आपने जो बात की है ना वो एप्रिसिएशन की वजह से आपको खुशी नहीं हुई। मुझे लगता है कि हमें कई बार ना जैसे खातिन होती हैं काम करती रहती हैं लेकिन एंड पे आके ना फट पड़ती हैं कि मैं उंज किता तो मैंने कोई गल नहीं की, तारीफ नहीं की। मुझे लगता है कि कई बार तारीफ से ज्यादा ना इंसान को इस बात की खुशी होती है कि उसका काम रायगा नहीं गया, जाया नहीं गया।
0: Exactly.
1: असल खुशी ये होती है
0: रायगा नहीं गया। और उसके अलावा ये कि रायगा, वैसे मैं आपको बताऊं, कभी भी हमारे एक बॉस हैं कहा करते हैं, कहते हैं कि हार्डवर्क जो है ना वो ऑलवेज पे कर, हार्डवर्क जो है वो ऑलवेज पे। तो
1: जी
0: मैं हार्डवर्क की बात कर रहा हूँ, तो भाई आप हंसा देते हो मुझे,
1: आप खुद ही हंसी जा रहे हैं, मैं हंसा रहा होता मैं ना हंस रहा होता। चले अच्छी बात है, बिल्कुल इंसान को मेहनत करनी चाहिए, लगन के साथ करनी चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: और नतीज की परवाह किए बगैर,
0: बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मेहनत से भी मुझे एक बात याद आई, इस क्या कहेंगे जुमे को मैं नमाज पढ़ने के लिए गया, तो उसमें अच्छा अमूमन ना हमारे कह लें कि बात ऐसी होती है कि सिर्फ और सिर्फ हम लेकर चल रहे होते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसे हमें वैसे जो भी एक होता है, मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता,
1: ज़्यादा इस्लाही बातें होती हैं।
0: लेकिन इस दफ़ा ना मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगी।
1: अच्छा,
0: उनकी वो और बड़ी दुनियावी हिसाब से उन्होंने बात की, कोई उसमें वो टच नहीं था, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। और उनके अलामा साहब की बात ये थी कि कहते कि हमें मेहनत जो है ना ज़िंदगी में, हम जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें इस तरह करनी चाहिए कि सिर्फ हम कि शायद ऐसे कि जैसे हमने इस दुनिया में हमेशा रहना है। इतनी सॉलिडनेस आपकी उस मेहनत के अंदर होनी चाहिए, इतने कम्प्रोमाइज्ड और कंपोज्ड आप हों अपनी मेहनत के साथ कि जैसे यू हैव टू लिव फॉरएवर।
1: ये बड़ा पैगाम है, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ऐसे कर रहे होते हैं कि बस मगरोला।
0: यस, दैट वाज द पॉइंट, मतलब बिहाइंड द
1: उसके पीछे थिंकिंग ये होती है, हमारी जो होती है वो ये होती है,
0: ये होती है। लेकिन वो चूंकि एक कह लेंगे ज्यादा लोग चूंकि समय के वक्त मौजूद होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि पैगाम जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो मतलब उन्होंने कहा कि मेहनत ऐसे करो कि जैसे तुमने इस दुनिया में हमेशा रहना है, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी जाती जिंदगी है वो ऐसे हो कि जैसे सिर्फ आज का दिन है,
1: आज का दिन है बस अब। हाँ,
0: कि इतनी ऑनेस्टी के साथ आपने दोनों कामों को करना है कि किसी में भी कोई कमी, मतलब उन्होंने कहा कि मेहनत ऐसे करो कि जैसे तुमने इस दुनिया में हमेशा रहना है, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी जाती जिंदगी है वो ऐसे हो कि जैसे सिर्फ आज का दिन है,
1: आज का दिन है बस अब। हाँ,

0: आसिफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी तरक्याती इकदाम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इरादा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने फलस्तीनी आवाम के हक के खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: D101. Just great music.
1: Well, listen, welcome back after this beautiful track. FM 101, sorry, after this news break track तो नहीं था मुस्तफा
2: जी जी
1: तो हम बात करें न्यूज ब्रेक से पहले वाले ट्रैक की एक्चुअली ठीक है तो एलिमेंट्स जी बात आपको बताते चलें कि आपकी कॉल्स जो हैं वो हमारे पास मौसूल हो रही हैं और मैसेज जो हैं वो भी मौसूल हुए हैं हमारी पोस्ट पर भी मैसेज हमें मौसूल हुए हैं और निमरा मसूद ने मैसेज किया कह रही हैं कि आपका पोस्टर बहुत प्यारा है किसने बनाया है ये पोस्टर मैं क्या बताऊँ किसने बनाया है AI ने बनाया है
2: अच्छा जिन्होंने बनाया वो सुन रही हुई ना तो तप जाना मामला खराब हो जाना
1: तो AI ने बनाया ना वो सुन रही है
2: अच्छा
1: अभी देखे ना आपने AI के सामने वो रखी थी ना तो वो AI ने उसको कैश कर लिया ना AI ने कहा मैं आई
2: क्या बात है क्या बात
1: ठीक है एनीवेज प्रोग्राम में टॉपिक आपको बताते चलें उसके बाद आपकी कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे टॉपिक ये है कि जी आपका क्या ख्याल है कि तारीफ इंसान को अपनी मंजिल की जानिब लेकर ज़्यादा तेज़ी से जाती है या तनकीद लेकर जाती है अब इस ट्रैक के बाद जो मैं प्ले करने वाला हूँ उसके बाद हम आपकी कॉल्स शामिल करेंगे मैंने कहा था मुस्तफ़ा से पूछा मैंने कहा मुस्तफ़ा बताओ कि हम कॉल्स ले लें या जो है ट्रैक प्ले कर लें मुस्तफ़ा ने कहा नहीं मसूद भाई पहले जो है ना हम ट्रैक प्ले कर लेते हैं और आजकल हमारे ट्रैक से पता क्या प्रॉब्लम है हमारे ट्रैक से ये प्रॉब्लम है कि पता नहीं इश्तिहार क्यों चल जाते हैं इसमें
2: हाँ
1: ये देखा है आपने कुछ
2: नहीं इसमें नहीं चलेगा
1: नहीं चलता है मैंने इसलिए तो म्यूट किया हुआ था अच्छा, उसको अच्छा। जब गाना चला
2: शुरू में चलता है
1: शुरू में चल जाता है तो हम जरा कॉल्स के लिए टेम्पो बना लें गाना आप सुने
2: हम गाना देखने वाले एक्चुअली एनवीक्यू का गाना है तो बहुत अच्छे गाने होते हैं इनके देखने लायक होते हैं
1: बिल्कुल ऐसे ही एनीवेज़ स्टे अराउंड 101 वी विल बी राइट बैक

0: ऐसे कितनी खूबसूरत बात है कि आपने सिर्फ किसी को देखने के लिए अपने घर की जो खिड़की है वो सिर्फ रखवा ली हो. क्या मोहब्बत का अंदाज है,
1: क्या बात है, क्या बात है.
0: बिल्कुल जनाब. और हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी मौजूद हैं. और लेट्स सी, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है. एहसन खान बात कर रहे हैं आप?
2: जी जी.
0: एहसन भाई क्या बात है, आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है आपकी.
2: बहुत कम आ रही है.
0: हाँ, अब कुछ बेहतर हुई है. कहाँ गायब थे आप भाई इतने दिनों से?
2: बस हम कॉल करते थे, कभी ड्रॉप हो जाती थी, कभी आप अटेंड नहीं करते थे.
0: नहीं यार, ऐसी तो बात अटेंड ना करने वाली जो बात है ना, वो तो बड़ी कह लें कि हमारे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी किसी की कॉल जानबूझ के ना अटेंड की है. और
2: ये नहीं कह रहा कि आपको मेरे साथ ऐसा होता है, वो बस ये समझे कि हमारी वो किस्मत साथ नहीं दे रही होती कि आप बातें करना शुरू कर देते हैं.
0: हाँ, बस ये बात हो जाती है. तो बाकी सब खैरियत है, घर में आपकी खैरियत है, सब मामला ज़िंदगी के ठीक चल रहे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है.
1: जी वालेकुम अस्सलाम. एहसन खान कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
2: अल्लाह का शुक्र है
1: जी.
0: अच्छा एहसन भाई, बताएं हमारे प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे आप?
2: टॉपिक के हवाले से मैं बात करता हूं, लेकिन मुस्तफा भाई मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कह रहे थे कि फड्डा चल रहा है.
1: हाँ जी,
2: पता चला कि फड्डा इस घर में नहीं चल रहा, फड्डा दूसरे घर में चल रहा है.
1: अच्छा अच्छा, चलो छोड़ो, मैंने समझ आ गई है तुसी जो गल कर रहे हो ना. मौजूदे गल करो जरा, तुसी थोड़ी रोशनी पाओ बड़े बल्ब वाली.
2: मेरे ख्याल से ना,
1: हाँ,
2: कभी कभी तनकीद इंसान को ना आगे ले जाती है, क्योंकि बाद दफा अगर हमारी तारीफ ज्यादा हो जाए ना, तो हम फिर समझते हैं कि
0: हम मेहनत करना छोड़ देते हैं.
2: हाँ, मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो वो फिर तारीफ हमें
1: अच्छा पॉइंट है. अच्छा,
2: जो अगर हमने कोई काम किया है उसमें 70-80% ठीक है, 20% उसमें कमी है, तो जो कोई अच्छा बंदा इंसान के ऊपर कहता है कि ये फलां फलां में कमी है, तो फिर इंसान को वक्ती तौर पे वो बुरी लग रही है. लेकिन अगर उस तनकीद पे इंसान थोड़ा सा काम कर ले, तो वो फिर इंसान आगे भी चला जाता है. तो ये पॉइंट है मेरा. तो
1: बिल्कुल ठीक बात की.
0: अच्छा, तारीफ में भी तो ऐसे भाई दो चीजें होती है ना, एक तारीफ होती है जो रस्मी तारीफ होती है, और एक तारीफ होती है जो जेन्युइन तारीफ होती है.
2: ये तो इंसान को समझ आ ही जाता है ना कि जी ये जो अगला बंदा मेरी खुशामद कर रहा है, तारीफ कर रहा है.
1: अच्छा, कईयों को नहीं समझ आता है.
0: हाँ, मुझे भी नहीं समझ आती, जब लोग आगे कहते हैं सुबह प्रोग्राम बहुत अच्छा है,
2: ये समझ नहीं आती ना, फिर बेचारे ना बहुत ज्यादा फूल जाते हैं कि हमें ना इन्होंने को बहुत इतनी ज्यादा तकलीफ करनी है. जैसे एक बंदा आ रहा है ना, वो आपके शो के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, एक बंदा ना हर शो में उसने एक रटी हुई तकरीर सी पकाई हुई है, याद की हर शो में पढ़ रहा है, और हर आदमी जो है ना ऊपर होकर बैठ जाता है. तो मुझे बस बम्बास्टिक और बहुत बड़े बड़े अल्फाज कह दिए हैं, फैंटास्टिक, और इस किस्म के
1: अच्छा एहसन भाई, मुझे ना वो एक मेरा दोस्त है, वो याद आ गया. एक टाइम पे ना मेरा क्लास फेलो था, उसका नाम था, चले मैं नाम ले लेता हूँ, फर्जी नाम, असफंद उसका नाम था.
0: तो सही नाम भी ले लें ऐसे. हाँ हाँ,
1: अच्छा ये सही नाम है वैसे. अच्छा सुन रहे हैं ना एहसन भाई? मैं आपकी बात रिलेट करके एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा. वो उसको ना गाने का बड़ा शौक था, तो ऐसे मैंने एक दो बार उसकी तारीफ़ कर दी. और तारीफ़ मैंने इस वजह से क्यों, क्योंकि क्लास में ना हर बंदा उसको बुली करता था, हर बंदा उसका मजाक उड़ाता था, और मैंने उसके गाने की ना तारीफ़ कर दी. तारीफ़ की वजह से वो इतना ज़्यादा फूला कि उसको इतना शौक हुआ गाने का, इतना शौक हुआ कि वो अभी तक मेरे भी कान खाता है. मतलब मैं उसे अपनी जान नहीं छुड़ा पाता.
0: यानी आपको अपनी तारीफ, उसकी तारीफ महंगी पड़ गई.
1: महंगी पड़ गई, मुझे महंगी पड़ गई.
0: नहीं, हमने तो सुना आप भी बहुत अच्छा गाते हैं.
1: अरे सर हमें भी खुशी हुई है, बस सर आपको ट्राई करते रहा करें, और बिल्कुल दिल पे ना लिया करें कि शायद हम काटते हैं, हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, बटन ही नहीं है यहाँ पे कोई.
2: रात को कोई शो नहीं सुनता,
0: लाहौर नहीं आए अभी वापस? आप
2: मैं अभी लाहौर में हूँ.
0: अच्छा, लाहौर में हैं तो आप तो बताते नहीं, जब आप गांव जाते हैं तो फिर आप जो है वो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन लाहौर में रहते हुए तो
2: मैं जल्दी सोता हूं, इधर भी जल्दी सो जाते हैं। अच्छा अच्छा,
0: सही हो गया, सब चलें। बहुत मेहरबानी कि आप हमारे लिए जाग रहे थे और आपने हमारे प्रोग्राम में शमूलियत की, बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया, आज
2: आपके शो में कॉल मिली और बाकी जितने लोग सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से
0: जीते रहें, खुश रहें। हसन भाई थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
3: वेल जी, ये थे हसन खान हमारे साथ, और हसन खान हमारे बहुत अच्छे कॉलर हैं, बहुत हमें भी याद रखते हैं और हम भी इनको वक्तन फ़ौरन जो है याद करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम
4: जी। बिस्मिल्लाह करां ते वालेकुम सलाम, की हाल चाल के जनाब?
0: क्या बात है सर, ताडी एंट्री जिहड़ी है ना हर वारी चेंज हुंदी है, ते माशाल्लाह इन्ना टैलेंट जिहड़ा ना ताडे च, वो तो मैं आखिरी बारी अली रजा के साथ शो कर रहा, तो अली रजा ने कहा कि जो है सर आप हमें क्यों ना को भड़क मार के दिखाएं। कहते हैं सुदई जो है बहुत अच्छी भड़के मारते हैं ये, मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर उन्होंने जनाब पूरी पूरी जो है ना उनकी कॉपी करके जो है ना भड़क मार के, फनकार आदमी है, दिल से फनकार
4: की एक्टिंग करते हैं जी। तो बशीर साहब के शो में माशाल्लाह बहुत दौड़ लगाते हैं जी हम,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारे शो में हमारे टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे सर?
4: पहले तो ये आपने गाना लगाया था, इसका बड़ा मजा मुझे आया।
0: कौन सा वाला?
4: ये थे बा मुंदरी दा थे बा, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੀ ਨੀ ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾ ਮੈਂ।
0: ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।
1: ਚਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ
4: ਉਹ ਚਾਚੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੜਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ।
1: ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਫੇਸ ਫੇਸ
4: ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ।
0: ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨ?
4: ਆਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਲਿਆਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਨੀਰਾ, ਯਹੀ ਯਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਈ।
0: ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਾਚੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ?
4: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੈੜ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ,
0: ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ।
1: ਤੁਸੀਂ
4: ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ
4: ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸਦਾ ਤੇ ਐਸਦਾ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ,
0: ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ।
4: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ
0: ਬਹੁਤ
4: ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਆਸਿਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ دلوں سلوٹ سلام پیش کرنا جی.
3: بہت شکریہ سر, تھینک یو, جزاک اللہ, خوش رہیں, سلامت رہیں. ویل جی, یہ تو شہزاد صاحب ہمارے ساتھ,
1: انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, سمجھانے میں اور کسی کے اوپر اپنی بھڑاس نکالنے میں فرق ہوتا ہے.
3: بالکل ایسے ہی ہے, بہت فرق ہوتا ہے. اور
1: آپ نے بھڑاس نکالی ہے ویسے کسی نے کبھی؟
3: میرا آج پروگرام تو بہت تھا لیکن آپ بس یہ لے آئے نا تو میرا
1: اچھا, یہ بار بار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, سننے والے سمجھے پتا نہیں میں کیوں لائے ہیں.
3: نہیں نہیں, آپ دیکھیں جو بھی لائے ہیں بہت اچھا لائے.
1: بہت شکریہ آپ,
3: ٹھیک ہے. آپ نے جس طرح اس کا تعارف کروایا نا, جس طرح آپ نے رکھی,
1: میں دیکھ بھی رہا ہوں, ماشاء اللہ آپ نا بلش کر رہے ہیں,
3: بلش کر رہے ہیں نا اس کے بعد سے. تو وہ بس آپ نے جس انداز سے, وہ کہتے ہیں نا کہ جو پلانے کا انداز ہے وہ میٹر کرتا ہے, تو آپ چاہے سادہ پانی کا گلاس کسی کو پیش کریں لیکن کس انداز سے پیش کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اتنا پیارا مشروب لے کر آئے. اینی ویز, پروگرام میں بڑھیں گے نیکسٹ ٹریک کی جانب, اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ ہوں گے. سو اسٹے آن 101, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بیوٹیفل ٹریک.

0: वेलकम बैक और इस ट्रैक को हम रखेंगे बैकग्राउंड में, क्योंकि मुस्तफा कह रहे हैं कि जो बैकग्राउंड में ट्रैक है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैंने कहा ठीक है, ये कौन सा कोई मसला. अस्सलाम वालेकुम. एनीवेज, ये एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आप आवाज़ सुन रहे हैं मसूद अहमद की और आरजे मुस्तफ़ा की. हम बात कर रहे हैं कि इंसान को तनकीद ज़्यादा के ले जाती है या तारीफ. सो वी हैव द नेक्स्ट कॉलर. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: मुस्तफ़ा प्लीज़ आप कॉल लें अब.
2: जी
0: आप कह रहे हैं आप मुझे बात नहीं करने देते.
2: जी जी कौन बात कर रही है कहाँ से.
1: आपकी ना आवाज फोन पे ठीक नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है.
0: वो हमें भी पता है.
1: नहीं जेन्युइनली मैं बता रही हूँ.
2: आप अपनी जो हैंड फ्री है ना वो उतार के बात करें.
1: अच्छा ओके हेलो.
2: जी जी अब आ रही है आवाज.
0: आपने ये नहीं कह दिया मुस्तफा कि वो आपके मोबाइल पे एक वो लाल रंग का बटन होगा उसको दबा दें तो देखें आवाज ठीक हो जाएगी.
2: जी जी
1: आवाज आ रही है लेकिन ना आवाज बड़ी अजीब सी डबल होकर आ रही है. अभी भी मैंने हैंड फ्री उतार दी है. टेक्निकल स्टाफ तक जो है ना मैसेज में डाल.
0: ओके वो दो लोग बात कर रहे हैं ना इसलिए डबल आवाज आ रही है.
2: नहीं तो हम अलग अलग बात कर रहे हैं, इकट्ठी तो नहीं बोल रही है. जबान तो
0: जा तो एक ही स्टूडियो से रही है ना इसलिए डबल जा रही है.
2: ये भी है
1: वैसे. बच्चा बेचारा परेशान हो गया होगा. बच्चे को मशवरे दे रही थी कि ये जो लेकर आया पीने पिलाने के लिए इसकी जगह इसको सौंफ पुदीने का पानी पीना चाहिए.
2: नहीं वो पानी है तो नहीं सही ना.
0: नहीं वो अच्छा है. नहीं उसको इसमें देखा, मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे हैं इसमें लिखा हुआ है.
2: अच्छा फिर ठीक है.
0: पुदीना भी लिखा हुआ है.
1: अच्छा
0: हाँ तो बाकी कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखता है. तो आप अपनी तारीफ हम तो नहीं करते. अच्छे लगते आपकी तारीफ.
1: आपको करनी चाहिए कभी कभी. दर्द नहीं चाहिए.
0: नहीं तो फिर आप तारुफ करवा देना अपना.
1: नहीं आपको करनी नहीं चाहिए तारीफ.
2: अच्छा अच्छा नाम बता दें तमाम नए सुनने वालों के लिए. मुझे बता दें
0: आप नए.
1: नहीं नहीं भी बताऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा.
2: अच्छा आप सबा कमर बात कर रही हैं.
1: आप जो मर्जी समझ ले.
2: हनी आमिर बात कर रही हैं.
1: आप वही समझ ले आप.
2: अच्छा चलिए मैं आपको हनी आमिर समझ लेता हूँ. हनिया क्या कहना चाहेंगी आप मौजू पे.
0: ये हनिया की हानि है
2: बस एक ही बात है. समझ आ रही है ना बस. ठीक है जी जी.
1: मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी. बस आप लोगों का शो सुन रही थी, मजा आ रहा था. और मैं खुद जो है ना वो बड़ी परेशान हो गई थी कि बच्चा बेचारा है.
0: एनीवेज निम्रा हमारे साथ हैं और शायद पता नहीं रेडियो पे तो आगे बढ़ा है. इन्हें अपना बार बार नाम बताने का होता है तो भी आई डोंट नो के नाम बताते हुए क्या.
2: अच्छा यकीन करें जब उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा ना तब भी मैंने आपकी शक्ल देखी. आपने पहचान लिया. मैं नहीं पहचाना था.
0: आपने नहीं पहचाना था.
2: हाँ ये इंसान अपने जो ट्रॉमास होते हैं ना जल्दी उनसे चुका.
0: हाँ जल्दी पहचान लेते हैं उनको.
2: जोक्स अपार्ट आपको सलामत रखे.
0: टॉपिक वाले पूछते हैं. कॉल कर लिए तो पैसे पूरे कर लेना.
2: जी बताएं बताएं बताएं.
1: मेरी बात सुने आप. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तारीफ थोड़ी सी तारीफ कर देनी चाहिए. ठीक है तनकीद तो हर कोई करता है. हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना वो तनकीद के लिए तैयार बैठा होता है. ठीक है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई तनकीद इस अंदाज से करते हैं कि वो दूसरे का भला चाह रहे होते हैं. बट मोस्टली नहीं करते. ठीक है.
0: अच्छा वो कैसे पता चलता है. वो कैसे पता चलता है कि ये तनकीद मेरे भले के लिए थी और ये मेरी तबाही के लिए थी.
1: किसके लिए थी.
0: तबाही के लिए.
1: भले के लिए तबाही के लिए.
0: मुस्तफा मेरा ख्याल है मेरी आवाज अब ठीक नहीं जा रही
1: है. आप आवाज. मैं सीरियसली कह रही हूँ आवाज वाकई जो है ना अजीब सी आ रही है. मुझे मतलब मुश्किल हो रही है.
2: अच्छा ये सवाल कह रहे हैं मेरी आवाज आ रही है ना तनु.
1: अब आई आई नहीं नहीं मुझे वो भी मैंने रिपीट किया इसीलिए. देखिए अंदाजा मतलब लहजा इस तरह का होता है. टोन आपकी जो है ना वो बहुत कुछ बता दो.
2: मैंने आवाज में ये बात की थी वैसे.
1: हाँ बिल्कुल. टोन आपकी जो है वो बहुत कुछ बता देती है कि अगला बंदा वाकई आपसे जो है वो आपका भला चाह रहा है इस वजह से तनकीद कर रहा है या फिर. और तनकीद बरा है तनकीद का वैसे ही पता लगता
0: है. टोन अब तो टोन का बड़ा एक कह लें कि कॉन्सेप्ट भी मुश्किल हो गया क्योंकि जब आपने किसी को कमेंट किया हो अगर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे तो उसमें टोन तो नहीं जाती.
1: वो एक और चीज है. देखिए वो एक और चीज
0: तो वहां से कैसे चलेगा.
1: अल्फाज उसमें आपके अल्फाज मैटर करते हैं.
2: चले हम निकलवाते हैं. क्या क्या कौन सी तारीफ है.
1: सुनना तो सही। एक आज ना शो के बाद मैं अपनी चेयर से उठी हूँ तो जैनब मेरे सामने बैठी हुई थी और जैनब ने जो है ना वो मेरी तारीफ की।
2: अच्छा।
1: और मुझे ना बेसाख्ता तौर पे ये याद आ गए, मैं एकदम मुड़ के देखा तो वो भी मुझे देख के हंसने लगी। मैंने कहा बस मुझे एक बात याद आ गई।
2: अरे क्या बात,
1: मैं हंसी थी।
2: सही,
1: तो वो मुझे ये याद आए थे कि मैं 4 दिन से वेट कर रही थी कि मेरी कोई तारीफ हो, लेकिन वो तारीफ नहीं हुई। लेकिन जहाँ मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी वहां से मेरी मतलब मुझे तारीफ की गई, लेकिन एकदम मेरे जहन में जो है ना वो इन्हीं का एकदम से आया कि यार मैं तो इनके मुंह से सुनना चाह रही थी, बट वो मैंने सुना कहीं और से।
2: अच्छा, वो माजरा क्या था, किस मौजू पे आप अपनी तारीफ चाह रही हैं?
1: छोड़ दे,
2: बता दें आज, बता दें
0: फिर रुलाओगे क्या?
1: चलिए बाकी लोगों को टाइम दे।
0: चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
3: वेल मसूद भाई, आप निमला बाजी की तारीफ करें या ना करें, मैं करना चाहूँगा। बहुत अच्छी, इंतहाई शरीफ नफ्स खातून है और इतनी जोली है, मतलब मैं कहता हूँ कि कमाल है। अगर किसी खातून को जो है ना इनमें मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज दोनों तरह की हैं, जब ये मतलब समझ में है ना, एक अच्छी बात है, ये आजकल की खातून में होनी चाहिए। तो वेल निब्रा, जीती रहें, खुश रहें,
0: अगर हमेशा जो है वो
3: तारीफ कर दिया करें आप कभी कभी।
0: अगर मैस्कुलिन प्रॉपर्टीज हावी रहें तो फिर बंदा क्या करे
3: वो, इट मीन्स कि आपके फेमिनिन ज्यादा हावी होंगे।
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
3: कपल्स में होता है ऐसे,
0: ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज
3: बातें कहीं और जा रही हैं, गाना शामिल कर लेते हैं।
0: नहीं, कॉलर कॉल एक और ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। अभी ये अरूज आपी थी ना?
0: अरूज आपी?
1: हाँ जी, निमरा अरूज आपी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, वही थी।
1: इनके शो में सुबह मेरी कॉल मिली और मेरी उनसे बात हुई थी।
0: अच्छा,
1: तो बड़ा अच्छा लगा बात करके। और मैंने एक बात पूछनी है, जो निमरा आपी है और मसूद भाई है
0: जी,
1: ये क्या मतलब आपस में मतलब क्या है?
3: कजन्स है।
1: कजन्स? और वैसे क्या है, भाई है क्या?
0: इंसान है,
3: नहीं नहीं, ये कजन्स हैं और इनकी मंगनी हो गई है एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से।
1: अच्छा अच्छा,
3: तो आप क्यों पूछ रही हैं पर्सनल बातें?
1: हाँ, मुझे पता है कैसे शक हुआ।
3: अच्छा, शक
1: एक हुआ। आंटी कॉल करती हैं, नहीं शक नहीं, नहीं नहीं शक नहीं, अंदाजा हुआ था। एक आंटी कॉल करती हैं कराची से,
0: शक नहीं करना चाहिए किसी पे,
1: अरवीन आंटी। उन्होंने अच्छा। कहा था जहाँ पे निमरा की बात होगी वहाँ पे मसूद की बात होगी, जहाँ पे मसूद की बात होगी वहाँ पे निमरा की बात होगी। मैंने कहा था ये क्या चीज है,
3: तो अच्छी बात है ना, होनी चाहिए।
0: कौन सा फैमिली चैनल है कि जहाँ रिश्तेदारियाँ बना रहे हैं?
3: नहीं नहीं, तो हो जानी चाहिए बात, दो लोगों की कोई है मामला तो उसको होना चाहिए डिस्क्लोज। हाँ,
1: बस मैंने पूछना था कि आपस में आपका रिलेशनशिप क्या है, अक्सर ये ना हो कि आप मतलब बहन भाई हैं या मतलब
3: नहीं नहीं, ये मंगेतर हैं, फियांसी हैं एक दूसरे के।
1: हाँ जी, ये मुझे कंफर्म करना था।
3: आपको कोई इशू तो नहीं है ना?
1: नहीं नहीं।
3: हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है।
1: आप कौन बात कर रहे हो मेरे साथ?
3: मैं ज़ियान जुम बात कर
0: रहा हूं। ये भी हमारा कजन है।
1: हाँ हाँ, मुझे पता चल गया, ये ज़ियान जुम वाले मुस्तफा भाई है, ये पता नहीं बहुत फैन है ज़ियान को ना, वो कहेंगे मैं ज़ियान जुम बात कर रहा हूँ या ज़ियान जुम का शो सुन रहे हैं।
3: अच्छा, सारा पता है लड़की को, सारा पता है, सुनती रहती है खामोशी के साथ।
0: ये असल में ना ज़ियान जुम के नाम से मशहूर होना चाह रहे हैं।
1: हाँ ना, बड़े ये इंटेलिजेंट है।
3: अल्लाह पाक ज़ियान जुम को सलामत रखे और उसको सेहत दे। अच्छा बिस्मा, आप वही वाली बिस्मा तो नहीं है कि ये जिनका ये सफिया क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है यहाँ पर?
1: कौन सी बिस्मा?
3: बिस्मा मैं बताऊँ, बिस्मा बताएं क्या करती हैं लाइफ में, क्या आपकी एक्टिविटीज हैं?
1: मैं मेडिकल की फील्ड में, मैंने आपसे बात तो की थी, 2-3 दफा हो चुकी है आपसे बात।
3: अच्छा, मुझे क्या पता कौन सी वाली बिस्मा आप बात कर
0: रहे हैं, इसका पेट खराब है, जिसके लिए भी कोई टिप दे दे।
1: किसका पेट खराब है?
0: मुस्तफा का।
1: ज़िया भाई का?
0: मुस्तफा का
1: नहीं, मुस्तफा भाई, वो ज़िया भाई जो कहते हैं ना अपने आप को।
0: हाँ,
1: अच्छा, मुस्तफा भाई का पेट खराब है, उसके साथ और क्या है?
0: और इन्हें उल्टियाँ आ रही
1: हैं, दर्द आए।
3: हाँ बताएं बताएं, क्या क्या कोई दवाई दें, तजवीज करें?
1: मैंने ना अभी अभी ट्यून किया और मैंने सुना, मैं अभी जो है निम्र आपी को ही मिस कर रही थी।
0: अच्छा।
1: सुबह मेरी बात हुई, रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है कॉल की, तो मैं सुन रही थी,
0: तो
1: बहुत अच्छा लगा। और ना फिर एकदम से मैंने ट्यून किया तो उनकी कॉल आ गई, मैंने उनकी आवाज मतलब पहले मैंने पहचाना नहीं, कॉल पे थोड़ी ना चेंज लग रही थी आवाज,
4: दिल को दिल से रहा होती है,
1: पता नहीं शायद अनिला आंटी तो नहीं है, कौन है, कौन बात कर रहा है,
2: नहीं आंटियों वाली आवाज तो नहीं है वैसे, इतनी नहीं है,
4: हो गई है वैसे।
2: जी जी कहिए।
1: तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनको सुन के जो उन्होंने कॉल किया। अब मुझे एक बात बताएं, उन्होंने हमारी तरह कॉल किया जैसे हम कॉल करते हैं बार बार मिलाते हैं, या उनका आपने दूसरे तरह से नंबर पिक किया है?
4: देखें हम जो है ना मेरिट पे यकीन रखते हैं, जहाँ पे जहाँ आपकी कॉल आ रही है बिल्कुल इसी चैनल पे उनकी कॉल, इसी तरह उनकी कॉल आई थी, ठीक है,
1: लेकिन बड़ी मेहनत के साथ कॉल मिली है।
4: हाँ इस टाइम पे अगर वो किसी और जरिए से मुझे कॉल करें तो मैं वो भी पिक नहीं करता। ठीक है बिस्मा,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
4: आपसे और अच्छा टॉपिक के हवाले से तो आपने कुछ बताया नहीं हमें,
1: टॉपिक के हवाले से आप ये कह रहे हैं कि तारीफ करनी चाहिए कि नहीं करनी।
4: नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान को तारीफ कामयाब करती है या तनकीद कामयाबी की तरफ लेके जाती है।
1: मेरे ख्याल में इंसान को दोनों चीजें लेके जाती हैं। अगर तारीफ ही आप सुनते रहेंगे तो आप तो लूजर बन जाएंगे, आप कहेंगे अब देखो मेरे ना फिजिक्स में नंबर मैंने लिए एक दफा बहुत अच्छे टेस्ट में,
4: एक ही दफा लिए थे बस,
1: क्या
2: जी जी
1: फिजिक्स में नंबर लिए, सर ने मेरी तारीफ की और मैं बहुत खुश हुई, और उसके बाद ना नेक्स्ट टेस्ट जब हुआ तो उसमें मेरे ना 20 में से 6 नंबर आए, तो सर से मेरा मुंह देख रहे थे। अच्छा तो कहते यानी कि आपको जो है ना वो इज्जत और तारीफ राहत नहीं आई, तो नेक्स्ट टाइम तो कभी भी नहीं करूंगा। तो ये चीज है कि इंसान को थोड़ी तनकीद भी होनी चाहिए कि वो भी इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती, जब आपको कोई रिजेक्ट करता है ना फिर आपको सीखा आता है, फिर आप कहते हैं अच्छा अब बताऊंगा तुम्हें
4: नेक्स्ट टाइम,
1: रिजेक्ट किया अब तुम्हें अपनी कामयाबी से तुम्हारे मुंह पे एक अच्छा सा प्यारा सा दूंगा, ठीक है। तनकीद इंसान को जो है ना आगे बढ़ाती है, और फिर तारीफ की भी जरूरत होती है ना, बंदा तनकीदें सुन के तब भी बंदा खुदकुशी की तरफ भी कई लोग चले जाते हैं कि भाई
4: जैसे रोटी के साथ पानी की जरूरत होती है ऐसे,
1: रोटी के साथ पानी की, हाँ जी जी जी
4: और हमारे शो में भी कभी कभी कॉल कर लिया करें, ठीक है।
1: एक मिनट बात सुने, मसूद भाई बात करें ना अभी मेरे साथ,
4: जी जी बताएं।
1: मसूद भाई मेरी बात सुने, एक दफा आपका शो सुना तब वो अली भाई थे, अली रजा भाई आपके साथ, और अब मुस्तफा भाई हैं, तो ये क्या सीन है?
4: ये एक गहरा सीन है और ये सीन भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है।
1: अच्छा
4: चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बिस्मा जीती रहें, खुश रहें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
0: वेल ये थी बिस्मा हमारे पास हमारे साथ, और बहुत अच्छा लगा बिस्मा आपसे बात करके, और आप इतने गौर से प्रोग्राम सुनती हैं कि कौन हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं बात कर रहा, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब जान के भी कि लोग इतनी केयर करते हैं, इतना कॉन्शियसली सुनते हैं। एनी वेज बताते चले आपको कि जो बात इससे पहले निमरा करी थी ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुस्तफ़ा के चेहरे पे ना उसके बाद से अजीब सा तासर है, तो मसला पता क्या है, मसला आपकी ट्रेनिंग भी है इसमें मुस्तफ़ा, ठीक है, आपने भी आने वाले वक्त में इस दौर से गुजरना है। अच्छा मैं ऐसे करते हैं साथ साथ ये गाना भी चला लेते हैं बैकग्राउंड में, ताकि मेरी बात भी कवर होती
2: है, थोड़ा बातें कर लेते हैं।
0: हाँ आज हमने ऐसे बातें ज़्यादा की हैं और गाने भी कम प्ले किए हैं। अच्छा बात ये कि इन्होंने ना निमरा ने ना कुछ दिन पहले अपना शॉपिंग की और बड़े ज़ौक शौक से, इनके जो क्राइम पार्टनर है ना वो भी एक हमारे एफएम की आरजे बहुत अच्छी हैं, और जब से इन दोनों की जोड़ी मिली है ना तो ये क्राइम्स जो है ना
2: मुझे समझ आ गई है।
0: हाँ आ गई है ना समझ, अब आपको
2: समझ आ गई।
0: तो वो स्टोरी ये है कि वो जनाब कपड़े शपड़े लेकर आई और कपड़े लेकर आई अच्छे कपड़े लेकर आई और अपनी पसंद से उसके मतलब उसके साथ जूती भी ली और सब कुछ पूरा मैच वैच करके पूरा पैकेज बना के जो है ना वो लेकर आई। अच्छा मुझे दिखा रही थी, मैंने कहा कि देखें जी अब कपड़े देखने में अच्छे हैं लेकिन इंसान जब पहने तो तभी पता चलेगा ना कि ये कैसा जो है पूरा उसका जो एक क्या कह रहे हैं उसको जो स्टाइल जो उसने बनाने के फिटिंग है जो भी
2: सूट करे
0: हाँ सूट करे नहीं करे तो तभी पता चलेगा। तो आज बाय चांस है ना इन्होंने वो सूट पहना, और नहीं आज नहीं शायद एक दो दिन पहले पहना था।
2: अच्छा
0: तो तो अच्छा तारीफ जो है ना मैं तारीफ का इशारा देता हूँ, मैं पूरी खुल के जो ना मुझसे तारीफ नहीं हो पाती,
2: क्यों डर लगता है
0: नहीं डर नहीं लगता मुझे, ये होता है कि जो एप्रिसिएशन है ना वो भी एक बड़े लिपटे हुए अंदाज में होनी चाहिए कि उसके अंदर आपको एक जेन्युइन जो उसका एसेंस है ना वो आप तक पहुंच जाए।
3: अच्छा ठीक है
0: ठीक है। उसको बाज़ूकात अल्फाज की जरूरत नहीं होती, उसको एक्सप्रेशंस की और बस एक फीलिंग की बात होती है कि वो आप...
3: मुझे लगता है कि कभी कभी अल्फाज की होती है जरूरत होती है, खातीन को होती है ज़्यादा।
0: हाँ होती है, मतलब ख़वातीन में ये है मसला और हमारे में ये मसला है कि हम मतलब उतने अल्फाज, उतने अच्छे अल्फाज या उतने ज़्यादा अल्फाज में हम उसको बयान नहीं कर पाते
3: हाँ।
0: तो बस वो जो एक गैप होता है ना वो बस बाज़ूकात इंसान उसको पर्सनल ले जाता है,
3: कम्युनिकेशन गैप होता है।
0: हाँ एक तो वो कम्युनिकेशन गैप कह लें या उसको कुछ भी कह लें आप, एहसास का गैप होता है, कुछ भी होता है, कुछ रिलेशंस के भी गैप्स होते हैं जो आप, जिस तरह जनरेशन गैप होता है इसी तरह हर रिलेशन के कुछ गैप्स होते हैं, आप उसको कभी भी बिल्कुल जो फ्री ऑफ कह लें कि जिसमें कोई रस्मी रिलेशन
3: मोहताज नहीं होता।
0: हाँ मोहताज नहीं होता ना, वो भी मैंने देखे हैं ऐसे रिलेशंस, वो भी एक मौके पे आके तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं।
3: अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें, आजकल जैसे कि डिजिटल दौर है तो जो पार्टनर्स होती हैं आपके घर की फैमिलीज की खातिन आप भी होती हैं, हम अपनी पिक्चर्स लगाते हैं फेसबुक पे लगाते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो अपने बहुत ही प्यारे जानने वाले होते हैं ना हम उनके स्टेटस को भी ऐसे इग्नोर करके विदाउट एनी रिएक्ट पास कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से कई बार जो है ना वो ग्रजेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं, कभी ऐसा आपने फेस किया कि आपने भाभी की पिक्चर देखी हो और आपने उस पर जो लव रिएक्ट है वो ना किया हो?
0: हाँ हो जाता है अक्सर
3: अच्छा मुझे लगता है ये ज़्यादा सेंसिटिव मामला है बजाय मुँह के तारीफ करने के,
0: ये
3: तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से कई बार जो है ना वो ग्रजेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं, कभी ऐसा आपने फेस किया कि आपने भाभी की पिक्चर देखी हो और आपने उस पर जो लव रिएक्ट है वो ना किया हो?
0: हाँ हो जाता है

0: वैलिडेशन का इंसान मुझे लगता है कि पैदाइशी भूखा होता है. बच्चे को भी जब तक तारीफ ना करे ना उसके काम की, तो वो तब तक आगे और अच्छा काम नहीं करता है. तो वैलिडेशन भी एक हद तक होनी चाहिए, लेकिन वैलिडेशन कभी कभी दे देना ये अच्छी बात
1: तो है. कभी कभी
0: हाँ, कभी कभी दे देना
1: तो कभी कभी तो फिर आपको पता है कि देना मजबूरी होती है, हमें भी तो जिंदगी गुजारनी है ना. तो कभी कभी हाँ. तो इंसान कर देता है. अब हर दफा हाँ,
0: लाजमी नहीं है कि वो लव रिएक्ट्स में अल्फाज की सूरत में हो, वो सूरत में हो सकती
1: और सूरत में हो सकती है. देखें अब आपको आपने बात तो फिर वही बात आ जाती है ना कि अब आप हैं या हम किसी एक रिलेशन में होते हैं, हम उसमें मिसाल है कि सर अल्फाज हम नहीं यूज़ कर पाते उतने अच्छे. आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत आपको एज इट इज़ मिल जाती है, आपको पूरी हो जाती है, जैसे भी आप उसको मैनेज करें, जैसे भी करें. तो क्या ये एप्रिसिएशन का या ये जो है एक एहसास का साइन नहीं होता क्या?
0: मुझे लगता है कि होता भी है, नहीं भी होता.
1: अच्छा, ना होने वाली कौन सी बात होती है इसमें?
0: ना होने वाली बात ये होती है कि कई बार ना वो बात अक्सर की जाती है ना कि चांद तारे तोड़ के लाने की बात की जाती है. कई बार एक इंसान जो है मर्द, वो सब कुछ करके भी अगर सिर्फ इतनी सी गलती कर देना किसी मामले में, अपने अल्फाज के मामले में, क्योंकि फीमेल्स के
1: तो
0: मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनिएगा. फीमेल्स के बारे में ये कहा जाता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि वो सुनने की जो है ना ज़्यादा इनकी हिस होती है. जहाँ से सुनती है ना,
1: बड़ा
0: उस हवाले से रिएक्ट करती है. हाँ, मैं उसी तजर्बे की बात कर रहा हूँ. और हो सकता है भाभी रिलेट करें या तमाम सुनने वाली जो खातीन है रिलेट करेंगी. खातीन की जो पसंद है ना वो समातों से होकर गुजरती है.
1: इसीलिए मेरे प्रोग्राम में ज्यादा मेल्स कॉल करते हैं, फीमेल्स की कम कॉल आती
0: है. एक अच्छे खासे अच्छा मामला होता है ना, वो उनकी समात से. मर्दों का जो पसंद का मामला होता है वो उनकी आंखों से होकर गुजरता है. मतलब मर्द उन चीज़ों को लाइक करते हैं जिनको वो अच्छा देखते हैं, और ख्वातीन उन चीज़ों को या उन इंसान
1: बिल्कुल जनाब. और जो है बड़ी अच्छी आपने बात की कि उसका जो स्टडी है आपकी वो मुझे बड़ी डेप्थ में नज़र आई है.
0: क्या क्या समझ आया आपको इसमें?
1: बस ये मैं आपको नहीं बता सकता मुझे क्या समझ आया, बार मुझे लग समझ गई है. एनीवेज प्रोग्राम का वक्त हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है, और बहरहाल अब हम आपसे लेंगे इजाज़त. और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर भी हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें बर्दाश्त किया. और उन तमाम लोगों से माजरत के साथ कि जिनका हम जो है ट्रैक्स या फरमाइश प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सके. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट शो में आपका जो है वो ट्रैक.
0: अभी आप जा रहे हैं कहीं पर? जा रहे हैं एक्सटेंड अगर आप कर ही लिए तो और नहीं कर सकते क्या? नींद आ गई है
1: अभी तो नहीं आई. अच्छा, नहीं एक्सटेंड तो हम कर लेंगे, लेकिन
0: गाना अच्छा है वैसे.
1: अच्छा है ना, मैंने इसीलिए चला दिया, आप इसी तरह चुप करेंगे.
0: ठीक है, यही सुनते हैं.
1: अच्छा तो क्या प्रोग्राम है अभी, कुछ और बात करनी है? चलें इसके बाद हम एक और बात करके तो फिर हम साइन आउट कर देंगे. ठीक है, इतना टाइम काफ़ी है?
0: नहीं नहीं बस ठीक है, आपने कोई बात करनी है तो कर लेते हैं, नहीं तो अब मेरे ख्याल से बातें कम करने की देखने की ज़्यादा है.
1: चलें जी,
0: मैंने भी जाना है, बस कुछ तारीफ वगैरह मैंने भी करनी है. तो
1: चलें ठीक है. वेली एनीवेज जी, आज के प्रोग्राम में हमने मुस्तफ़ा को जनाब स्पेशली रिक्वेस्ट की कि मुस्तफ़ा अगर आप आ सकते हैं मैसेज शो करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा. मुस्तफ़ा ने जनाब टाइम निकाला और मुस्तफ़ा का बहुत शुक्रिया. और
0: मसूद भाई आपका बहुत शुक्रिया. और यकीन कीजिए मेरी तबीयत नासाज थी वाकई, मेरी आप शक्ल देख रहे होंगे, हल्के पड़े हुए हैं. और वीकनेस मुझे फील हो रही थी, वो वजह आप छोड़े ना, मैं अपनी जो वजह बता रहा हूँ इन्हू भी सुन लिया करो, तुम एक तो सुनते नहीं. अच्छा तो मेरे साथ ये मामला था, लेकिन बावजूद इसके मसूद भाई कोई भी मामला है, कोई भी बात है, इनमें इतनी अपनायत है ना कि वो बंदा कहता है यार अभी अपने वर गई है. हालांकि होते हैं कई बड़े, मैंने ऐसे देखे हैं कि वो आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो आपको ना एक अवॉइड करने का दिल चाहता है कि यार छोड़ो दफा करो कोई गल नहीं. लेकिन मसूद भाई की ये बात ये है, इनकी वाइब ऐसी है कि बंदा कहता है यार ये हमारे जैसा ही, हमारी मैंटेलिटी का, हमारे माइंडसेट का बंदा है. कई बातें ऐसी होती हैं कि बगैर समझे बगैर अल्फाज कहे ना एक दूसरे के साथ माइंड कनेक्ट करके, तो हम उस बात पर हंस रहे होते हैं, वो हमें पता होता है हम दोनों हम क्यों हंस रहे हैं. सो ये एक अच्छी बात है. बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए, और बहुत शुक्रिया मेरा आने के लिए.
1: जी जी. खुद का शुक्रिया आप पहले अदा करें.
0: क्यों नहीं,
1: आपको इतनी इजाजत मिली कि आप 2 घंटे मुसलसल बैठ सके,
0: वरना
1: ऐसी कैफियत में 10 मिनट भी बैठना मुश्किल होता है. तो

0: वही जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, और मेरी आपसे मुलाकात अब होगी अगले बुध को सुबह 9 से 11। और कभी मसूद भाई सुबह आइए ना,
1: सुबह मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, बहुत ज़्यादा बहुत लंबा अर्सा मैंने सुबह के प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन अब जॉब की नेचर ऐसी है कि सुबह के प्रोग्राम के लिए टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं इस टाइम पर मैनेज करता हूँ इसको। तो एनी वेज इनशाला हम रात के शो में भी आपसे मुलाकात का दोबारा कोई बहाना बनाएंगे, तो जिस दिन जब आप हमें कुछ तरीके बताएंगे आप जैसी आजजी अख्तियार करने के, तो हम ज़रूर आपको इन्वाइट करेंगे। एनीवेज जी, अब हमने अपने प्रोग्राम को एंड करना है, और जो टॉपिक था हमारा कि क्या इंसान को तारीफ़ आगे लेकर जाती है या तनकीद लेकर जाती है, तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें ही इंसान को आगे ले जाती हैं, बस बात ये होती है कि आप के अंदर अडॉप्टेबिलिटी किस चीज़ की है, आप अपने पर्पज़ के साथ कितने सिंसेयर हैं। अगर आपका पर्पज़ बढ़ना ही आगे है तो इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है या तनकीद कर रहा है। तारीफ़ से आपको उससे भी आप अपने लिए अच्छी चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं, और तनकीद से भी आप अपने लिए अच्छी चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन बस अपने फोकस से आपने कभी हटना नहीं है, अपने पर्पस से कभी हटना नहीं चाहिए, अपना हटना नहीं है, ये कोशिश करें। और बस ये कि सही वक्त पे सही चीज़ मिल जाए ना, अगर तारीफ़ का वक्त है तो उस वक्त तारीफ़ हो जाए, और जब तनकीद का वक्त है तो उस वक्त तनकीद हो जाए, तो वो सबसे बेहतर होती है।
0: और इसमें आपके जो अल्फाज हैं वो भी बहुत नपेतुले होने चाहिए,
1: बहुत नपेतुले,
0: जो लहजा है, टोन की बात हो रही थी बार बार,
1: एक्जैक्टली,
0: तो वो भी वो एक शेर है ना कि हमारे लहजे में ये तवाज़न बड़ी सोबतों के बाद आया, हमारे लहजे में ये तवाज़न बड़ी सोबतों के बाद आया, कई मिजाजों के दश्त झेले, कई रवैयों की खाक छानी। नहीं समझ आई
1: नहीं मुझे, मैंने तो कहा था मुझे तो लग समझ गई है,
0: जब आप कहते हैं लग समझ गई है, अब तो सर कैसम लग रहा होता है। बाय द वे बहुत शुक्रिया मसूद भाई, आप अपनी बात कीजिए,
1: बहुत शुक्रिया। एनीवेज इन सांसों ने अगर वफा की तो जनाब अगले हफ्ते के रोज रात 10 से 12 में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और अपने वीकेंड को अच्छे से इंजॉय कीजिएगा, और नेक्स्ट वीकेंड के लिए कोशिश भी कीजिएगा, मेहनत भी कीजिएगा, और अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह एंड हस्ता ला विस्ता।

शाइनिंग फ्रिक्वेंसी होगी दोस्तों, आप तमाम दोस्तों की FM 101। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप radio.gov.pk को एक्सेस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े FM रेडियो नेटवर्क की लाइव ट्रांसमिशन सुन सकते हैं। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान, जहां जहां मेरी आवाज सुनी जा रही है, तमाम दोस्तों को कहेंगे खुश आमदीद। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल, मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी। इस ट्रांसमिशन को आपके लिए डिजाइन एंड प्रोड्यूस करती हैं मिस दफरानी। की हाल है, ठीक हो ना? अल्लाह लियो किड़े पास टुर पे हो? ताल्लुक मेरा जी जन्नत नजीर से, जिसे कहते हैं कश्मीर। 12:30 तक बैक टू बैक जबरदस्त किस्म का आपको म्यूजिक सुनवाएंगे, फिर उसके बाद आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। आज एक जबरदस्त किस्म के टॉपिक भी आपके लिए लेकर आया हूं, जिस पे आप लोग बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं, आपकी उस हवाले से क्या राय है, आपकी बात कर रहा हूं मैं।

ओके जी, वेलकम बैक. आतिफ असलम की आवाज़ को आप प्रोग्राम में सुन रहे थे. बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक और काफ़ी पुराना ट्रैक है, लेकिन ये जब भी सुनते हैं इसकी जो फील है वो बड़ी ज़बरदस्त है. 12:30 तक बैक टू बैक ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक आपको सुनवाएंगे. दोस्तों 4471 पे आपने मैसेज करने, अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम और बहुत ही खूबसूरत से पैगाम के साथ आप भेजेंगे 4471 पर. 4471 पर ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कबूतर है, आप दोस्तों के पैगाम लेकर हम तक पहुंचेगा इंशाल्लाह. इसके अलावा हम कॉल शामिल करेंगे 0511100101 और 0519202540 पे. दोस्तों आप लोगों ने कॉल करनी है, कोशिश करेंगे आज हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को ऐड कर सकें, नए दोस्तों को ऐड कर सकें. और जो दोस्त पोइट्री सुनाना चाहते हैं, शायरी से उनको बहुत ज़्यादा लगाव है, उनको हम 1:45 से ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह मौका देंगे. और वो ज़रूर इसमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं कि अगर आप पहले सेगमेंट में कॉल करते हैं जो हमने टॉपिक रखा होगा उस पर बात कर सकते हैं, और आप बाद में भी अगर आप शायरी सुनाना चाहते हैं तो आप उस सेगमेंट में भी कॉल कर सकते हैं. इसमें कोई ममानत नहीं है. कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नए कॉलर्स को भी ऐड कर सकें. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपके पास ये सहूलत मौजूद है कि आप किसी भी तरीके से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपना होने का एहसास दिला सकते हैं, तो डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा. चाहे आप 4471 पे सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुन रहे हैं, सॉरी 4471 पे फीडबैक देंगे, अपना फेसबुक पे फीडबैक दे सकते हैं, या आपके लिए आसानी है कॉल करना तो आपको वेलकम करते हैं, कॉल ज़रूर कीजिएगा. मौसम दोस्तों बदल चुका है काफ़ी ज़्यादा. मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बात की थी कि अभी आते हुए अच्छी खासी जो है वो सर्दी फील हुई है, ख़ासकर बाइक राइडर्स जो हैं आपके लिए. तो दोस्तों आप लोग अपर अपना घरों से निकाल लें, आप उसका लाजमी इस्तेमाल करें. ये जो मौसम जब चेंज होता है, इसकी जो पहली लहर शुरू होती है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. वो लोग जो एसी के बहुत ज़्यादा आदी हैं, सोने होने एसी बंद कर दें, चूँकि मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है. एक तो दो फ़ायदे होंगे, एक तो सबसे पहला बड़ा फ़ायदा आपका बिजली का बिल कम आएगा, और सेकेंडली जो है आपकी सेहत जो है वो ठीक रहेगी. तो ये सेहत के हवाले से आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, चूँकि मेरे ख्याल में सेहत से बड़ी दुनिया में कोई भी नेमत नहीं है. तो ये हमारा ज़रा है जहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे हम ढेर सारी गपशप करेंगे. और इसके अलावा जो है वो शायरी के हवाले से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप कब कॉल कर सकते हैं 1:40 के बाद. फिर उसके बाद जो है हम ढेर सारी आपसे गपशप करेंगे, और जितना भी खूबसूरत कलाम आप सुनाना चाहते हैं तो लाजमी आइएगा, सुनाइएगा, हम आपको लाजमी सुनेंगे. मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं. 12:18 हो चुके हैं. आवाज़ ट्रांसमिशन में किसी भी किस्म का कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, जहाँ भी आप, जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए आसानी है. चूँकि बाज़ूकात होता है इस तरह कि ट्रांसमिशन ठीक नहीं पहुँच पाती, और वो इस वजह से कि आप लोग आगाह नहीं करते, तो हम अपनी टेक्निकल टीम, मास्टर कंट्रोल रूम, जो दिन रात 24 घंटे 365 दिन साल के आपकी खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं रेडियो पाकिस्तान में, और तमाम जो है वो इंजीनियर्स, तमाम जितना भी डिपार्टमेंट ये ट्रांसमिशन पेश करने में आपकी खिदमत में मसरूफ़ रहता है, हम उनको इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करते हैं. तो सुने हो इस ट्रैक के बाद आज के टॉपिक आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपने मेरे साथ साथ रहना है. मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी.

ओके जी, वेलकम बैक। खुश आमदेद कहते हैं तमाम दोस्तों को। 10 से 12 आज आपने सुना जी मोहम्मद यूसुफ को। और हफ्ते के दिन ज़्यादातर जिशान भाई जो हैं वो आउट ऑफ सिटी होते हैं। लास्ट थर्सडे जब उनका प्रोग्राम था, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों हफ्ते के रोज़ नहीं आते, तो उन्होंने कहा कि कुछ मसरूफियात हैं, शहर से बाहर जाना पड़ता है और बाज़ औक़ात कुछ इवेंट्स होते हैं। लेकिन मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो आपकी खिदमत में हाज़िर रहते हैं हफ्ते की रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। बहुत प्यारी आवाज़ इनकी माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत अंदाज़, प्लेलिस्ट इनकी बड़ी कमाल की होती है। हफ्ते और इतवार को आजकल, इतवार तो इनका अपना प्रोग्राम होता है शेड्यूल्ड 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। एक अरसा हो गया माशाल्लाह, उनको ऑलमोस्ट 7-8 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है ये वो प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा अब आजकल जो है वो हफ्ते की रात भी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो ये मच्छरों से अपने आप को बचाएं, ये जो आप इस तरह कर रहे हैं ना बाहर खड़े होकर, तो ध्यान क्या करें और अपना आप में बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है। बाइक राइडर्स जो हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि जो अपर वगैरह है, कोई हल्की फुल्की जैकेट आपने निकालनी है, तो ध्यान किया करें, स्लिप भी हो जाता है बाज़ औक़ात। काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं। लास्ट वीक हमारे मोहम्मद यूसुफ भाई, मुझे ही इन्होंने फ़ोन किया, बल्कि मैं ही पनौती हूँ, मुझे कहते हैं जी आए चाय पीते हैं। मैंने कहा मैं रेडियो पहुँच गया हूँ भाई, कहते नहीं जी चाय पीनी है, चाय का फिर इनकार और बड़ा मुश्किल हो जाता है वो सिलसिला। तो ये जो कल या परसों बारिश थी, 2-3 दिन पहले मेरा प्रोग्राम था थर्सडे को, हाउ इज़ दैट, हाँ, तो वो फिर यहाँ पे रेडियो के पास एक ढाबा है वहाँ पे हम पहुँचे, तो मुझसे पहले इन्होंने पहुँचना था, मैंने फ़ोन किया तो कहते हैं जी मैं फिर आहो, मतलब थोड़ी सी मैंने डाइव लगा दी, बाइक स्लिप हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। लेकिन फिर भी जो हल्की फुल्की जो चोटें रहती हैं वो तो आपको पता ही है, चूँकि दो टहरों वाला मामला है। अल्लाह ताला जी सबको अपने ज़ुमान में रखे। 12:24 हो चुके हैं दोस्तों, आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं कि आपने क्या आज गुफ्तगू करनी है। जो आप राय रखते हैं, जो भी आपकी थॉट्स हैं इस टॉपिक के हवाले से, वो मुझे आप बताएंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों ज़िंदगी के हवाले से, और रोज़ाना एक नई सुबह होती है, एक कुछ नए चैलेंजेस ज़िंदगी में सामने आते हैं, क्या करना है, कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है। कुछ लोग जो जॉब्स वाले हैं उनका तो एक पैटर्न सेट होता है कि आपने सुबह जाके क्या काम करना है। कुछ लोग बिज़नेस वाले हैं, कुछ टारगेट बेस्ड बिजनेस होते हैं, उनके लिए बड़ी टफ़ रूटीन होती है, ख़ासकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, सेल्स डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा खपता है जी, सारा सारा दिन, सारा सारा महीना उनके टारगेट्स होते हैं, उनकी अचीवमेंट, उनकी टेंशन्स, तो ये सारी चीज़ें इस ओवरऑल ज़िंदगी में आती हैं। फिर उसके बाद आपके मनपसंद लोग जिनके साथ आप वक्त गुजारना चाहते हैं, और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपको वक्त गुजारने का टाइम उनके साथ नहीं मिलता। हफ्ता या इतवार की 2 दिन या 1 दिन आप कह लें, जिस दिन आपको ऑफ होता है, उस दिन घर के काम काज इतने होते हैं, तो ख़ुद इंसान जो मतलब मैं बारहा अपने प्रोग्राम में बात करता रहता हूँ कि हमने ना कुछ नेचुरल चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी हैं। मतलब एक घरों में रिवाज होता है शाम की चाय का, 4 बजे के बाद या असर की नमाज के बाद लोग जो घर में अफराद मौजूद रहते हैं इकट्ठे बैठ के चाय पीना, कुछ हल्का फुल्का साथ बिस्किट वगैरह या कुछ भी आप उसके साथ स्नैक्स लेना, इसके अलावा चाँद को देखना। आज वैसे दोस्तों चाँद देखिएगा, बहुत खूबसूरत, ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, और वो लोग तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं जिनकी दस्तरस में इस तरह चाँद है कि आपके रूम से अगर वो नज़र आ रहा है, या आपकी जो बालकनी है या आपके रूम में जो विंडो है वहाँ से अगर नज़र आ रहा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। ये मैं आसमान वाले चाँद की बात कर रहा हूँ, आपके चाँद की बात नहीं कर रहा। अगर दस्तरस में नहीं है आसमान का चाँद, तो आप अपने चाँद को भी देख सकते हैं। तो सितारे देखना, चाँद देखना, पहाड़ों पर जाना, मतलब ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है, और मैंने टॉपिक इतना घुमा दिया है, इसको आसान करता चलो, इसको सिंगल लाइन पे, वन लाइनर में लेकर चलते हैं कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या ज़रूरी है। दोस्तों आज आपके कोर्ट में बॉल मैंने डाली है, आपने बताना है कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या ज़रूरी है। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एज ए मुस्लिम आप जानते हैं कि हमारे क्या रूल्स हैं, क्या फ़राइज़ हैं, तो इस टॉपिक को और ओवरऑल इस प्रोग्राम में आपने रिलीजियस से टैग नहीं करना। जनरली जो है वो ज़िंदगी में के हवाले से आप लोगों ने बात करनी है, और इसको हम रिलीजियस से साइड पे रख के बात करेंगे। मुझे कहते हैं गज़नफ़र महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे
और अपने जो मनपसंद लोग हैं उनकी बात तो आप हमेशा मानते होंगे। शिफाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं, वापस आते हैं, ढेर सारी गपशप करेंगे। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद के आने चलें, उससे पहले जी आपको ये सुनाते हैं। छोड़ा जी, मुझसे पहली सी मोहब्बत जी मेरे बहुत दिल के करीब है, इसमें डायरेक्ट शायरी भी है, आप वो सुनेंगे आपके दिल को बहुत अच्छा लगेगा। मेरी जानिब से ये आपके लिए।

0: भी है वसल की राहत किस्म।
1: ओके जी वेलकम बैक, तमाम दोस्तों को खुश आमदेद कहते हैं। 12:33 हो चुके हैं जी, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। और कुछ आपके पैगाम हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो कि हमें 4471 पे मिले हैं, और इसके अलावा facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर आप तमाम दोस्त जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टॉपिक दोस्तों आपके साथ मैंने शेयर कर दिए कि आज के दिन किस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। इस पर आप लोग आज फीडबैक देंगे, अपनी जो आपकी राय है, आपका जो एक्सपीरियंस है जो ज़िंदगी के हवाले से, वो आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 4471 पर मैसेज करना है, और उसके अलावा फेसबुक पे और लाइव कॉल आपके हम शामिल करेंगे। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मैं अपने प्रोग्राम में बात करता रहता हूँ, और आपको ये भी बारहा हमने आगाह किया है कि आने वाले दौर में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में ऑटोमेट हो जाएंगी, और इसका कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं वो बेहतर अंदाज में इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा प्रेशर है, प्रेशर होता है मैनेजमेंट की जानिब से, और जितने भी टॉप सीनियर लोग हैं वो इस पे रिसर्च करते हैं। और बाकायदा अब तो ये सिलसिला है कि इस पे कंपनीज़ जो हैं वो AI स्पेशलिस्ट जो हैं उनको हायर करते हैं, और उनको अपने ऑफिस वर्क के हवाले से आगाह करते हैं, और उनको बताया जाता है कि हमारे पास ये काम है, आप हमें गाइड करें कि हम किस किस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं, जहाँ पे 3 या 4 लोग काम कर रहे हैं वो आकर काम जो है वो सिमट कर या समेट कर 1 या मैक्सिमम 2 बंदों तक महदूद कर दिया जाता है। तो वो स्किल्स जो हैं दोस्तों इम्प्रूव करना शुरू कर दें, कि इससे पहले कि आपके मैनेजर साहब भी आपको ये कहें कि सुने हो ये थोड़ा आखिरी महीना है, और आप लोग जो हैं चूँकि आपका जो काम है वो रिपीटेटिव है डेली बेस पे, तो हम इसको AI के ज़रिए ऑटोमेट कर देते हैं। जो हमने पैसे आपको मतलब 60-70 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपया सैलरी आपको पे करनी है, वो हम महीने की 5-10 हज़ार की सब्सक्रिप्शन हासिल करके किसी भी AI अच्छे टूल की वो हम वहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नुकसानदेह भी है, लेकिन पॉजिटिव लें इसको, स्किल्स सीखें, AI से रिलेटेड कोर्सेज करें, YouTube भरा हुआ है इस हवाले से, एक एक जो कोर्स करना शुरू कर दें, अपने आप को टारगेट दें 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, ताकि चीज़ें आपके जो है वो के लिए आसानी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, उमर इस्लामाबाद से। सर पोइट्री ज़्यादा सुनाओ, सुने हो 1:40 के बाद से कॉल कर लें, कोई मसला नहीं जी, आपकी ढेर सारी पोइट्री हम सुनेंगे। अफशां मुल्तान से मौजूद हैं भाई, जिशान का प्रोग्राम किस दिन होता है जी? जिशान भाई हफ्ते की रात 10 से 12 वो आजकल नहीं आ पा रहे, मसरूफ होते हैं, हफ्ते को उनके कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, अदरवाइज़ जुमेरात की रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक वो प्रोग्राम करते हैं। मतलब जुमेरात की दिन होता है, रात जुमा हो जाती है, मतलब आप इजी ये समझें कि जुमेरात को रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक वो प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्यानी साहब और तमाम लिसनर्स को, मुझे अशरफ कहते हैं, आपको लाहौर से सुन रहा हूँ, आपका डायलॉग जो है अल्लाह ले किड़े पास टूर पे हो बहुत अच्छा लगता है, कॉपी करता हूँ आपको। और नहीं सर कोई एतराज़ नहीं है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप किसी बहाने मुझे याद रखते हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो मज़ीद भी दोस्तों आप लोग 4471 पे मैसेज कर सकते हैं, अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में आपने जाना है, 101 लिखना है, स्पेस अपना नाम, शहर का नाम, और बहुत ही खूबसूरत से पैगाम के साथ आप भेजेंगे 4471 पर।

और इसके अलावा एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में सुकून है तो उसे बेसुकून ही में मत बदलें। अगर आपकी वजह से कोई सर दर्द की गोली नहीं खाता तो उसको ना खाने दें।

facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पे देखते हैं दोस्तों आप लोग कहां से हमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्या कहना चाहते हैं। आज जो प्रोग्राम के आगाज में मैंने आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट की है कि नए दोस्त जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे आज के प्रोग्राम में, तो उनको ज़रूर मौका देना है। हमारे जो रेगुलर कॉलर हैं आप भी हमारे लिए बहुत काबिले एहतराम हैं, और हम नए दोस्तों को भी आज के प्रोग्राम में मौका देंगे। देखते हैं कौन कहां से हमारे साथ मौजूद है। इस पोस्ट को जो कि फेसबुक पर मौजूद है, बराए मेहरबानी दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन कर सकें। ये हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है जी, जिसका नाम है facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान। मारिया अकबर हमारे साथ मौजूद है, कहती हैं अच्छी जिंदगी जीने के लिए जहनी सुकून और शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है। ताहिर अजीज हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। मौज़म रावलपिंडी से मोहम्मद उसामा आपका मैसेज है, केपी के मर्दान से सैयदा अरीबा शाह हमारे साथ मौजूद है, अरीबा बहुत शुक्रिया आपने पार्टिसिपेट किया। मलिक फराज हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम क्यानी भाई, क्या हाल है आपका, प्रोग्राम का इंतज़ार रहता है। और जिशान भाई का मलिक फराज फ्रॉम अड़ंग शरीफ से आपने मैसेज किया है, ये अड़ंग कश्मीर वाला है या कौन सा मेरे दोस्त। साहिब तबस्सुम साहब आपका बहुत शुक्रिया कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम क्यानी साहब। नवाजिश अली तबस्सुम पेरिस फ्रांस से आपको दिल की गहराइयों से सलाम और बहुत सी दुआएं जी, आपकी गुफ्तगू बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आप पेरिस फ्रांस से हमें सुन रहे हैं जी। समंदर के उस पार से आप हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया जी। मैं हैरान होता हूँ कि लोग कैसे समंदर पार रह लेते हैं अपने अपने से दूर, अपने रिश्तों से दूर, बहन भाइयों से, फैमिली से। अपने घर वालों की खुशियों के लिए ये सारी चीजें कुर्बान करना पड़ती हैं जी। आपने जी बहुत खूबसूरत बात हमसे शेयर की, कहते हैं इंसान की असल पहचान इसके अल्फाज नहीं बल्कि इसका अखलाक और दूसरों के लिए उसके दिल में मौजूद खुलूस होता है। अल्लाह लेओ किड़े पास डर पे हो। आयशा खान वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सारा हमारे साथ वाकेंड से मौजूद है, आज आपकी लाइट नहीं गई। अनम ने मैसेज किया जी, आज ईशान आसर का प्रोग्राम था लेकिन वो क्यों नहीं आए, रीज़न मैंने आते साथ आपको बताई थी, चूँकि मुझे मालूम होता है उनके जो लिसनर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, वो ढेर सारे सवाल पूछते हैं और मुझसे तो जो पूछता है मैं उसको बता देता हूँ। मैंने उनसे पूछा तो कहते थे मैं थोड़ा सा मसरूफ़ होता हूँ। खालिद मीर साहब नवाब शाह से मासद मौजूद है, कहते हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई मुखलिस और वफ़ादार दोस्त होना ज़रूरी है, लेकिन आजकल के दौर में मुखलिस मुश्किल है, आपने कहा है सच्ची बातें करते हैं जी आप। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, आई मलिक शाह नूर चक नंबर 15 ओकाड़ा से आपने मैसेज किया है भाई जान, बहुत शुक्रिया जी, जान पर आपने बड़ा ज़ोर दिया है। सना खान हमारे साथ मौजूद है, भाई तेरे लिए आतिफ असलम का ट्रैक प्ले कर दें प्लीज फ्रॉम पेशावर से आपने मैसेज किया है, कोशिश करते हैं जी, अगर रिक्वेस्ट पूरी ना हुई तो प्लीज नाराज मत होइएगा। 12:43 हो चुके हैं आज, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है या मुझे फील नहीं हो रहा है।

0: चलें जी, आपकी लाइव कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 051-111-0101-051-920-2540 पे आपके लाइव कॉल्स। बराए मेहरबानी, आपने सबसे पहले जो एहतियात करनी है वो क्या करनी है कि रेडियो सेट की आवाज़ आपने ऑफ रखनी है ताकि आपसे आसानी से बात हो सके। और इसके अलावा अगर आप हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ बात करने के दौरान हैंड फ्री का इस्तेमाल मत किया करें ताकि आसानी से आपसे बात हो सके। और उसके बाद जब आप रेडियो में प्रोग्राम सुनते हैं तो बेशक आप लोग जो हैं वो हैंड फ्री, मेरे एक दोस्त हैं वो बेशक को कहते हैं बिलाशक ये बात मैंने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमारे साथ मौजूद है आज की पहली कॉल?
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, वजीर कियानी बोल रहा हूं।
0: कियानी साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सेहत कैसी है और आज पहली कॉल? माशाल्लाह
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अंदाजा लगाया कि हमेशा वो मैं कहता हूँ देर करता तो देर करते करते कॉल मिलती नहीं।
0: ठीक है,
1: आप सोचा है कि भाई पहले ही कॉल कर लें, पहले 15-20-25 मिनट में कॉल मिल जाती है।
0: नहीं सर,
1: बाद में जो है ना फिर वो मिलनी मुश्किल हो जाती।
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। सर अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए क्या दरकार है?
1: जी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पहले तो इंसान को यह है कि गम हो या खुशी हर दो सूरत में उसकी रजा पे राजी रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही
1: बात है,
0: बिल्कुल सही बात।
1: दूसरी बात यह है कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आपको जिंदगी का साथी अगर मुखलिस और अच्छा और वफादार मिले तो फिर इस तरफ से भी खैर हो जाती है। और दूसरी तरफ से अगर बिजनेस में है तो बिजनेस में अगर उसमें भी आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए, अच्छे एम्प्लॉय चाहिए, अच्छे चाहिए, और उसके लिए आप अच्छा होना पड़ेगा।
0: ये चीज
1: ये बहुत जरूरी है।
0: ये सब जरूरी
1: है, क्योंकि यकीन जानिए मैं बहुत क्या कहता हूँ कि आप अपने एम्प्लॉय से अगर उनको खुश रखेंगे ना तो आप खुश रहेंगे। उन यार उनके साथ मैं कहता हूँ आप बैठ के, ये मुमकिन नहीं होता, बहुत कम होता है, उनको खुश करने के लिए आप हफ्ते में एक दिन उनके साथ खाना बैठ के खा लें, काफी अब लगे, यानी वो खुश रहेंगे तो आपका बिजनेस सही है। अगर वो खुश नहीं है तो बिजनेस आपका नहीं, मतलब उस तरह चलेगा।
0: बहुत अच्छी
1: बात की,
0: बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया नजीर साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।
1: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज जी, जजाकल्ला। नजीर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तरह नेक्स्ट कॉल हम देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बहुत एहसान है। बहुत शुक्रिया सर, रावलपिंडी से आपने कॉल की। सर टॉपिक सुना आपने?
2: टॉपिक सुना है आपका, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इस चीज की जरूरत।
0: जी जी, इस पे क्या आपका एक्सपीरियंस क्या गया?
2: करेंगे तीन चीजें, आजीवी और सादगी अपना लें।
0: अच्छा,
2: आजीवी और
0: सादगी
2: तो बेहतरीन जिंदगी गुजरेगी आपकी।
0: बहुत प्यारी बात की है प्यारे भाई आपने, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद थे। 47 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा 2:15 तक। पहले हम 12 से 2 करते थे प्रोग्राम।

0: अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें जी, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है, बराए मेहरबानी रेडियो सेट की आवाज़ ऑफ किया, कि इतनी ज़ोर की जो है वो कनेक्ट होता है ना कानों के साथ, चूँकि जो हेडफोन्स हम इस्तेमाल करते हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और मैं तो वैसे ही एक कान जो है बहुत अरसे से तंग कर रहा है मुझे, तो प्लीज़ आप ध्यान क्या करें, लिसनर्स जो हैंड फ्री से रेडियो सुन रहे होते हैं उनके लिए भी बहुत तकलीफ दे वाला ये मामला होता है। अस्सलाम वालेकुम। सर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, सेहत ठीक है आपकी?
1: आपकी दुआएं माशाल्लाह जी, बहुत सेहत सही हो जाती है जब थोड़ी सी खराब भी हो ना, जब आपका शो सुनते हैं।
0: अरे क्या बात है जी, क्या बात है जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे सर जी, अच्छी जिंदगी।
1: बहुत मेहरबानी मेरी तरफ से भी आपको, यही दुआ।
0: बहुत शुक्रिया सर। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए क्या जरूरी है ये आपने बताना है जी, सुल्तान रही की आवाज में।
1: ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया।
0: चले
1: कोशिश करता हूँ।
0: जी जी करें ना कोशिश।
1: अच्छी जिंदगी गुजार वास्ते दूसरे को खुश रखना पड़ता जी।
0: होए होए होए,
1: अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो तो दूसरे का साथ करो, उन्हें कदर करो, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला खुद ब खुद जिंदगी अच्छी कर देगा।
0: क्या बात है जी, माशाल्लाह छा गए सर, आप छा गए।
1: बड़ी मेहरबानी जी, तुम्हारी दुआवां ने बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। देखो जी, जो कुछ भी है दुनिया का माल इतने ही रह जाता जी, नाल कोई भी नहीं जाता,
0: इतने रह जाता
1: है। जिहड़ा जिहड़ी खुशी मिलती है ना अच्छी जिंदगी, उसी की होती है जिहड़ा दूसरे का साथ करता है।
0: बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया सर जी, ख्याल रखिएगा।
1: बहुत बहुत मेहरबानी, आपको बहुत बहुत सलाम जी।
0: जज़ाकअल्लाह। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बड़ी जबरदस्त ये आवाज निकालते हैं तो कुछ पाकिस्तान के लेजेंड्स की, और आप इनको अप्रिशिएट लाजमी किया करें। लाहौर से ये कॉल करते हैं, लाहौर स्टूडियो भी इन्होंने विजिट कर रखा है। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं बाज आ गए, चलें कोई बात नहीं। आतिफ असलम की आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी।

0: सलमा राशिद हमारे साथ डीएचए से मौजूद हैं। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने जी लाहौर से पार्टिसिपेट किया। आप कहती हैं भैया जी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए लाइफ में फैमिली में मोहब्बत और इत्तेफाक होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स आपने लिखा है। इसके अलावा सना खान भाई, आपने आतिफ असलम का जो सॉन्ग प्ले किया था उसका नाम क्या है पेशावर से पहले, जो हमने बाखुदा उसका टाइटल है जी आतिफ असलम का वो ट्रैक, और अभी हमने तेरे लिए इसको प्रोग्राम में शामिल किया है। और सना सलमा जो आपने डीएचए से मैसेज किया, बहुत शुक्रिया। आजकल ये एक बड़ा वसी टॉपिक है, इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगु भी होती है, ये कि फैमिली के हवाले से जब भी बात होती है तो प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होते हैं जॉइंट फैमिली में आके। अब जो है हमारे जो बड़े रहे बुज़ुर्ग, उन्होंने काफ़ी टाइम जो है अपनी ज़िंदगियां जो है वो जॉइंट फैमिली में गुजारी। तब हालात डिफरेंट थे, जो ज़िंदगी के मामलात थे वो डिफरेंट थे। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं और डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, हर किसी की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हरगिज़ इसकी मुखालफत नहीं कर रहा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होना चाहिए, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा, लेकिन एक अपनी ओपिनियन, हर इंसान को हक होता है ओपिनियन देने का। मेरी ये ज़ाती राय है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल बनाता है। हाँ, एज ए मेल मर्द हजरात ये सोचते हैं कि यार जॉइंट फैमिली ईजी होती है, या तीन चार भाई मिल के किसी एक ने बिजली का बिल देख लिया, किसी एक ने घर का किराया देख लिया, किसी ने ग्रॉसरी देख ली, तो निज़ाम इस तरह चल जाता है और कुछ आप अपना कुछ बना भी लेते हैं। लेकिन जॉइंट में जब भी कुछ बनता है वो एट द एंड जाके काफ़ी ज़्यादा, चूँकि देखें जब हर तीन भाइयों की माशाल्लाह शादी है, उनके जब बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं, वहाँ से मामलात ख़राब होते हैं। और जो किचन होता है ये अब जॉइंट भी रहे लेकिन इसको सेपरेट करना मेरे ख्याल से वो एक सुकून की जो पहली घड़ी होती है वो ख्वातीन के लिए भी और घर के सुकून के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि इस चीज़ को सेपरेट कर दिया जाए। हाँ, शुरू में फैमिली में जो भी पहला बंदा इस चीज़ में के हक में आवाज़ बुलंद करता है ना कि सेपरेट होना चाहिए या अलग रहना चाहिए, किचन अलग होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा बदनाम होता है। लेकिन वही शख्स जो है वो अपने बाद आने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून करता है और वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी बनाता है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं हरगिज़ जॉइंट फैमिली की मुखालफत नहीं कर रहा, अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनसे काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। आप में से कुछ दोस्त मेरे साथ एग्री करेंगे, ख़ासकर ये जो आप जो हैं, ये जो ख़वातीन कुछ सुन रही हैं, आप लाजमी इस बात से एग्री करेंगी। नेमत शाह हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इखलाक आपने लिखा, आई थिंक आप ये लिखना चाह रहे हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इखलाक होना चाहिए। हुमा पिंडी से, भाई जिशान क्यों नहीं आए, मैं शुरू में बताया वो मसरूफ़ होते हैं। हमाद मलिक कोटली आज़ाद कश्मीर से आप हमारे साथ मौजूद हैं, और आपने कहा जो औरों के लिए प्यार रखते हैं, जज्बा रखते हैं, वो कभी टूट कर बिखर नहीं पाते। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपने शायरी के अंदाज़ में अपने होने का एहसास दिलाया। प्लीज़ आप लोग 4471 पर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज किया करें। कराची से हमें 4471 पर बहुत कम पार्टिसिपेशन होती है, लाहौर से फिर कुछ बेहतर मामलात रहते हैं। इसके अलावा मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, पूरा पाकिस्तान हमें इस वक्त सुन रहा होता है, चूँकि अब रात काफ़ी जल्दी हो जाती है, ऑलमोस्ट 6:10 या 15 पर मगरिब की अज़ान होती है, फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा मतलब टाइम गैप है ऑलमोस्ट 6 घंटे का, अभी 1 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 घंटे हो चुके हैं। और ये जैसे जैसे आगे मौसम बदलेगा, सर्दियां आएंगी, ये हमारा ये जो रात का प्रोग्राम है इसमें फीडबैक इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि बहुत देर हो जाती है। तो आप लोग जिस वक्त सुन रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम, क्या नहीं भाई, कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अपना बहुत प्यारा सा नाम बताएं आप।
1: जी मलक इरफान बात कर रहा हूँ, मंडी मॉल।
0: इरफान भाई बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, क्या कहना चाहेंगे?
1: सर सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जब 12 बजते हैं ना तो कोई माड़ा सा भी नजर चल जाए ना तो एक दफा तो ऐसा लगता है जैसे झटका लगा है।
0: क्या मतलब? मतलब समझ नहीं आई।
1: मतलब जब आपके इंतजार का दिन होता है ना, ये हफ्ते का ये बात कर रहा हूँ कि जब फिर आपका बीजीएम शुरू से ही होता है ना टा ना ना जो मजा आता है, क्या नहीं भाई आ गया, क्या नहीं भाई आ गया।
0: इरफान भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी वैसे कोशिश होती है मैं 15-20 मिनट बल्कि बाजू का तो 1 घंटा पहले आ जाता हूँ, लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि वो थोड़ा सा लेट आना होता है, फिर आते
1: हैं। यार एक ना आपसे जो मोहब्बत है ना उसकी बात कर रहा हूँ कि बहुत ना एक झटका सा लगता है जब कोई म्यूजिक चल जाए।
0: चले बहुत शुक्रिया इरफान भाई आपकी इतनी मीठी मोहब्बत का, और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए क्या आपके ख्याल में होना चाहिए? ये तो दूसरा
1: है। सबसे पहले तो सेहत होनी जो है ना अल्लाह की नेमत, वो बहुत अच्छी है।
0: कोई
1: तो दूसरी बात ये है कि अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो ना तो जिंदगी में सुकून ही सुकून है। तो तीसरा जो है ना दोस्त, ये तीन चीज अगर जिंदगी में तीन चीजें हो ना तो मेरे ख्याल से जो है ना बहुत अच्छी जिंदगी गुजर जाती है। क्योंकि दोस्त बहर का साथी होता है, घर जो जीवन साथी होता है, अगर वो आते ही अल्लाह माफ करे नाराज हो जाए तो फिर भी इंसान का थकावट जो है ना वो उतर जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है, ठीक हो गया, ठीक है।
1: तो दूसरी बात ये है कि पिछली दफा एक बहन ने मेरे लिए मेरी सेहत के लिए दुआ की थी लाहौर से, उसका शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह ताला उसको भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आपके लिए एक जनफर भाई, इसी तरह आप आते रहे और रौनक लगाते रहे।
0: बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह गपशप करते हैं। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे।

0: बहुत शुक्रिया जी आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया। डॉक्टर सलाम आज साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी। हफ्ते में 3 दिन दोस्तों आपसे मुलाकात रहती है, जुमेरात और जुमा रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, जबकि हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब रात 12 बजे से लेकर 2:15 तक हम ये बहुत प्यारी सी महफिल से जाते हैं। नेक्स्ट कॉल हम प्रोग्राम में शामिल करने से पहले मैं कुछ फेसबुक के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करूंगा। समरा खलील भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। समरा आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मैसेज है जी फसीहा जन्नत ने, आपने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम भाई अच्छी ज़िंदगी के लिए। वैसे आज का हमारा टॉपिक ये है, जिन दोस्तों ने अभी अभी ज्वाइन किया आपको बताता चलूँ कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके ख्याल में क्या ज़रूरी है। ये आज आपने जो आपका अभी तक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है या आप सोचते हैं कि आपकी क्या थॉट है इस हवाले से, या आपसे अगर पूछा जाए तो आप इस पे क्या जवाब देंगे। फसीहा बहुत शुक्रिया जी, आपने कहा मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी अल्लाह का शुक्र है, वालिदैन की इज़्ज़त और दूसरों के लिए आसानी पैदा करना। दिल साफ हो तो ज़िंदगी खुद ही अच्छी गुजरती है। और अपने बहुत आपने बहुत प्यारा सा टॉपिक चुना है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फसीहा। देखें ज़िंदगी में ना आपने कई दोस्त या कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत अच्छे होते हैं, जो दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, दूसरों के लिए बहुत सी कुर्बानियां उन्होंने दे रखी होती हैं और सैक्रिफाइस बहुत करते हैं, अपने लिए चीज़ नहीं ख़रीदते, दूसरों के लिए मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन उनके साथ एट द एंड अच्छा नहीं होता। तो ये लाइन जो आपकी है कि अगर आप इसमें कोई शक नहीं है, कुदरत का निज़ाम है और इसमें आप अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं आपके साथ भी अच्छा होता है, लेकिन आपने 100 times ऐसे देखा होगा कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो रिवर्ट में आपके साथ अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे आप क्या लॉजिक देंगे। डॉक्टर किश्वर साहिबा, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर, मनपसंद शख्स एंड अच्छा दोस्त होना चाहिए। ये सारियाँ गल्ला ना व्याह तो पहले ही बंदा कहना, बाद से कुछ नहीं कहना। बाद में कहता है जी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ढेर सारे पैसे होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। बहरहाल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। वकार तबस्सुम पिंडी से मौजूद हैं। तूबा अली ने पार्टिसिपेट किया, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है क्यानी भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। विकास तबस्सुम ने जी एक बड़ा ज़बरदस्त सा मैसेज किया, आप अंदाज़ा करें। कहते हैं जी आप कैसे हैं, आपने आज सवाल किया है इसके जवाब में कि मैंने मोहब्बत की थी, वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मैंने शादी ही नहीं करता। अब अल्लाह लियो किड़े पास टोर पे, क्यों क्या वजह, लड़की ने कर लिया तो आप ही कर लें, कोई हाल नहीं यार। यंगस्टर्स को क्या हो गया आजकल के यंगस्टर्स को मेरे भाई, और भी दुख है जी मोहब्बत के सवाल जमाने में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रैक शामिल किया था जिसमें वो कहते हैं कि तेरी आंखों के सिवाय दुनिया में रखा ही क्या, उसमें ये एक टैग लाइन थी कि और भी दुख है मोहब्बत में जमाने में मोहब्बत के सिवा। आयशा खान आपका बहुत शुक्रिया जी, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए खुद अच्छा होना जरूरी है। ये बात जी, ये चीज नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अब्बासी साहब क्या हाल है आपका।
1: अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहचान लिया
0: सर। देख मैं पहचान लेता हूँ, मैं बस कोशिश होती है कि बंदे खुद अगर नाम बताएं तो अच्छा लगेगा। मरी की ठंडी हवाएं आ रही है भरगो में।
1: आ रही है, आ रही है मरी की ठंडी हवाएं।
0: ठीक हो गया, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर इस टॉपिक पे।
1: सर मैंने सेगमेंट में कॉल करनी नहीं थी, मैं एक सेगमेंट में कॉल करता होता हूँ।
0: सर आप हुक्म करें, मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे।
1: टॉपिक तो मैं बात करूंगा, लेकिन वो ये है कि जो अगला वाला सेगमेंट है इसको जरा थोड़ा बढ़ाए ना, एक पीस तक नहीं आए क्योंकि सीनियर बहुत से लोग होते हैं।
0: नहीं मुझे कोई मसला नहीं है सर, जिस दिन
1: बहुत है ना,
0: असल में जब बहुत अच्छा बैक टू बैक कॉल्स आ रही होती हैं, मैं एक दफ़ा 2:30 तक भी किया है, 2:30 तक किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो मैं देखता हूँ ना कि फेड आउट हो रही हैं चीज़ें, फिर हम उसको 2:15 तक ना लेकर जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी अगर अच्छा सिलसिला चलता रहा तो कोई मसला नहीं जी।
1: अगर इससे

0: चले इस पे कर लेते हैं, इस पे मैडम की सख्त अप्रूवल मुझे चाहिए होगी तो कर लेंगे, कोई मसला जैसे आप कहेंगे। ठीक है,
1: अमित को सुन रह जाते हैं, रीदा की कॉल रह जाती है, अब तो दूर आती है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी कॉल नहीं दिखती, उसके लिए रहे वो।
0: चले इस पे कर लेते हैं, कर लेते हैं, कोई मसला।
1: तो टॉपिक तो यह है कि मुख्तसर यह है कि मेरे ख्याल से इल्म की दौलत जो है ना, या अगर होगी तो इससे बंदा पैसा भी कमा सकता है और पैसे से सब कुछ खरीद भी सकता है। अगर इल्म होगा, जैसे आपने बात की है एआई की स्किल्स की बात की आपने, तो मेरे ख्याल से इल्म की दौलत होना चाहिए। अगर इल्म दीन का भी हो तो फिर आखिर का भी फायदा है, अगर दुनिया का हो तो दुनिया का फायदा है,
0: इसमें कोई शक नहीं,
1: सब कुछ हासिल कर,
0: कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त बात किया, बहुत शुक्रिया,
1: करते हैं।
0: जजाकअल्लाह सर, मैं वेट करूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी, हमारे साथ कौन मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं। 0519202540, 0519 111 0101 ये जी आप टेलीफोन नंबर है, यहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपनी जो दिल की बात है वो आप लोग हम तक पहुँचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? साजिद साहब लाहौर से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे?
2: अरे एक बात करूंगा मैं, अनिल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बुरे वक्त में बुरे टाइम में मेरा साथ दीजिए, थैंक यू वेरी मच अनिल भाई।
0: ठीक है,
2: नाम जितने सुनने वाले है ना, यासीन समझते हैं, हर नमाज में मुझे याद होती है, सबसे पहले मेरी दुआएं उनके लिए होती है, मैं हमेशा याद रखता हूँ, किसी के लिए मेरे दिल में नफरत नहीं होती।
0: बहुत अच्छी आदत है सर आपकी, खुश रहे आप, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा
2: हाँ, तो आपके लिए बहुत दुआएं और तमाम सुनने वालों के लिए। वो कहते हैं ना, कोई जब मुस्कुराता है तो दिल पे चोट लगती है।
0: ठीक हो गया,
2: वो आंचल में तेरा मुस्कराना याद आता है।
0: क्या बात है जी, क्या बात।
2: मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर, कोशिश कीजिएगा कि बहुत शुक्रिया जी, कोशिश कीजिएगा जो दोस्त शायरी सुनाना चाहते हैं ना, आप लोग 1:45 के बाद लाजमी कॉल किया करें, मुझे उस वक्त ना बहुत ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत होती है। हमारे साथ नादान मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कहते हैं जी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सब्र और शुक्र करना बहुत लाजमी है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है मेरे भाई, आप इस हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज कुछ कॉल्स हमारी ड्रॉप हो रही हैं, अब इसके बैकएंड पे क्या रीजन है या प्रेशर बहुत ज्यादा है या क्या, अल्लाह बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैने भाई क्या हाल है, खैरियत है?
0: क्या हाल है जी, सर रात ही 1 बजे जाके की कर रहे हो अल्लाह ले हो?
3: ओ कैने भाई तेरा प्रोग्राम में सर नींद ही कोनी आ रही है, यूसुफ भाई का प्रोग्राम लगा रहे हो, तेरा लगे मैं
0: ना सर
3: इनका प्रोग्राम है, तक के सर फोन
0: सर है, तक के सर है, कितने तक रहे तो समा थे, कैमरा थोड़े लगे कि थे बस दुआ किता करो। ठीक है,
3: इंसान को बहुत सारी दौलत हो
0: ना जी, फिर क्या फायदा इस दौलत है जी,
3: दुनिया
0: तेरे दौलत भी है, भी है,
3: सब
0: कुछ है,
3: सब तो वड़ी गल है, माँ प्यो की दवा, माँ प्यो की दवा हो तो तेरे बच्चे भी खुश हो सन, तेरी बीवी भी खुश है, तेरा माँ भी जैसे माँ प्यो तेरा खुश है, अल्लाह भी तेरे तो खुश हो।
0: बिल्कुल सही गल है, बहुत बहुत सुनिया गल कर दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान, जहाँ जहाँ मेरी आवाज सुनी जा रही है, आज मेरे ग्राई किसी ने कॉल नहीं की जी, कश्मीर से आज अभी तक कोई कॉल नहीं आई, और कश्मीरी हो अल्लाह लियो कि टुर पे हो अखियां दा।

0: बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर सना, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहती हैं कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ पाकीज़ा जज्बे, साफ दिल और साफ दुआ, अच्छा दिल और एहसास होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपके फीडबैक का। इसके अलावा हमारे साथ सना मेनास मौजूद हैं, आपने जी दोहा कतर से आप हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। थैंक यू सो मच जी आपके मैसेज का। आपने कहा जी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो पैसा होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने जवाब दिया कि और कोई इधर उधर की बात नहीं की। इन्होंने कहा जी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा होना चाहिए, ये कहना जी सना का जो इस वक्त कतर में मौजूद है। ऑब्वियसली वो जो है वो जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर हैं, तो बेहतर इस चीज़ को कोट कर सकती हैं कि अपनों से दूर, अपने मुल्क से दूर अगर इंसान किसी पर्पस के लिए रहता है तो वो किस लिए रहता है। सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए कि उसके जो घर वाले हैं या जिनको वो छोड़ कर सात समंदर पार या दूर जाता है, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पैसा है। उन्होंने कोई इधर उधर की बात नहीं की, सीधा लिखा कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सना, आप हमारे साथ दोहा से मौजूद हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सारा खान थैंक यू जी, आतिफ असलम का हमने ट्रैक प्रोग्राम में शामिल कर दिया था, आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी, डिस्टॉर्शन तो आज बहुत ज़्यादा आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। चैलेंज आपका बहुत अच्छी हो गई।
0: बहुत शुक्रिया जी आप की कॉल का। तो आपके कद्दू कैसे हैं?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने चांद की बात की ना, तो आज लाहौर में भी बहुत क्यूट चांद लग रहा है। और आज जो है, कल जो है मेरे चांद वापस आए थे, मुझसे मिलने के लिए आए थे, और आज जो है वो चले गए हैं, किसी काम से गए हैं। तो वरना आज जो है ना दोनों ने इकट्ठे बैठ के कॉल मिलानी थी।
0: अच्छा, मैं आसमान वाले चांद की वैसे बात कर रहा था।
1: वो आसमान वाले वो कहते हैं ना, हस्बैंड भी बात सफर ना, लाइफ पार्टनर भी आपका चांद होता है ना।
0: अच्छा, लाइफ पार्टनर भी आपका चांद होता है, ये किसी किसी के लिए होता है बस। चलें बहुत शुक्रिया।
1: लेकिन वो मेरे लिए सिर्फ मेरे चांद ही हैं।
0: क्या बात है, हमेशा खुश रहें। रिमशा मुझे ये बताएं कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए क्या चीज जरूरी है?
1: अगर मैं अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले मैटर करती है आपकी पढ़ाई, वो इसलिए क्योंकि आपको पढ़ाई के जरिए एक जॉब मिल गई है जिससे आप अपने मामलात को सेटल कर पाते हैं, अच्छा बना पाते हैं। और दूसरा ये कि आपने स्किल सीखा हो, कोई ना कोई काम सीखा हो कि आपको किसी जिंदगी में किसी का ना मोहताज ना हो, हर काम आप खुद करेंगे, किसी से करवाना ना पड़े। तीसरा ये कि आपके लाइफ पार्टनर अच्छा हो, जो आपको सपोर्ट करने वाला हो, दुख सुख में आपके साथ खड़ा होने वाला हो, और आपकी जिंदगी जो है ना बहुत खूबसूरत।
0: क्या बात है, क्या। और आपकी जो सास समीदान है वो सपोर्ट करने वाली ना हो।
1: सास नहीं, सास है।
0: ठीक हो गया, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है।
1: और मैं इश्तियाक अंकल को बहुत ज्यादा सलाम करना चाहूंगी, अल्लाह पाक उन्हें हंसता मुस्कुराता रखे। अभी तक उनकी कॉल नहीं, मतलब फर्स्ट कॉल जो है ना उनकी मिलती है,
0: उन्हीं की होती है। मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ इश्तियाक साहब का, ठीक है।
1: बिल्कुल, क्योंकि मैं भी उनका बहुत इंतजार कर रही हूँ, उनका बहुत बहुत सलाम, और सभी सभी सुनने वालों को मेरा बहुत अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि देखिए मैंने इतनी मुश्किल से कॉल मिला, मेरे का लगता है आज मेरी कॉल नहीं मिली, क्योंकि अभी ना बैल जा रही थी, मैंने कहा उठा लिया वरना मुझे गुस्सा आ जाएंगे, मैं नहीं उठाऊंगी, मैं दोबारा करूंगी नहीं।
0: मिल गया कॉल, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, ठीक है।
1: अल्लाह हाफिज
0: जी। रिमशा हमारे साथ मौजूद थी, और 1:16 हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शुभ के 2:15 तक। देखते हैं इस मामले को कहाँ तक लेके जाते हैं। बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा हुआ तो वो हम लाजमी डेफिनेटली उसको आगे लेके जाएंगे। और उस सेगमेंट में मैंने सजाद भाई के हवाले से एक खबर भी आपको देनी है, और अभी चूंकि वक्त है, नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम
0: सर जी,
2: क्या है भाई, क्या हाल है? त्रेड़ मान बोलता
0: हूं मैं, बिल्कुल ठीक ठाक। त्रेड़ साहब आप कैसे हैं, से ठीक है आपकी?
2: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: क्या आई रात छा गए हो बिल्कुल
0: सर, बहुत शुक्रिया मोहब्बतें तोड़ियां। मौसम कैसा उठे दा?
2: मौसम
0: ठंडा
2: है, शुरू है अगले दिन। तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ये तो हो ही है, लेकिन इसे भाई ये भाई
0: क्या बात है। त्रेड़ साहब
2: पंखे ना हो बंद कर सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा सर, की ऐड करना चाहोगे तुसी?
2: अच्छा
0: अच्छा
2: जैसा कि जिंदगी है, इस किराए किराए की जिंदगी है, इसको रजिस्ट्री का ना सोचे। दो चार दिन की जिंदगी है। और दूसरा ये है कि अपनी जिंदगी में से झूठ निकाल दें, सबसे पहले ये है कि झूठ निकाल दें और कुरान मजीद की तिलावत करें, थोड़ी बहुत कर लें, या उसको अगर नहीं पड़ेगी और तो चुम लें।
0: बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक नहीं।
2: और अगर अगर वो एक बंदा था जो वो पड़ा हुआ नहीं था, तो उसको जब शौक चढ़ा पढ़ने का तो नजर उसकी काम हो गई थी, तो वो ऊपर अंगली जात के कहता था ये भी मेरे अल्लाह ने सच्चा लिखा है, ये भी मेरे अल्लाह ने सच्चा लिखा है, उसकी भी बख्शिश हो गई थी। तो इस वजह से वो जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हम बर्बाद हुए सारे के कुरान होकर, तो इस तरह से हमने कुरान मजीद को भी तर्क कर दिया, हमने ओ अपने कल से भी ऊपर रख दिया कि अब तक हमारा हाथ ऊपर ना पहुंच सके।
0: बिल्कुल सही कह, सही कह रहे, ठीक हो गया।
2: तो इस वजह से
0: बहुत शुक्रिया त्रेड साहब, बहुत शुक्रिया अपना ख्याल।
2: शेरवली भाई आए थे जजाकल्ला,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। त्रेड साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, 1:20 हो चुके हैं दोस्तों, और प्रोग्राम के टॉपिक के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन लगता है वो कोई सुनता ही नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा जो भी टॉपिक होता है इसको रिलीजियस से थोड़ा सा प्लीज साइड पे रखा करें, ये मिक्स एंड मैच चीज़ें होती हैं। एज ए मुस्लिम हमारा टॉप प्रायोरिटी जो है क्या फ़राइज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, वो एक फ़र्क चीज़ है, तो थोड़ा सा ख्याल रखा करें इन चीज़ों का। बहरहाल बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सना कहती हैं जी हम अपने खुद ही चांद हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी जी, बजाय आप किसी को अपना चांद बनाएं। एक तो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत चांद आसमान पे आज अगर आपकी दस्तरस है तो ज़रूर जाके देखिएगा, उससे ऑलमोस्ट पूरी आपकी जो टॉप रूफ है, जो आपकी छत है, वो रोशन होगी, उसको आप लाजमी जाके देखें। तो सना कहती हैं कि हम खुद अपने चांद हैं, वैसे उन्होंने लिखा था कि साढ़े चांद में तो ग्रेन लगा हुआ है, नहीं जी माशाल्लाह बहुत प्यारा चांद है। इसके अलावा जी और मून शरीफ ठीक हो गया जी, बिल्कुल आपने मैसेज किया, थैंक यू सो मच जी आप लोगों के तमाम कॉल्स का। मेरी किसी भी बात से आप लोगों की दिल आजारी होती है तो उसे माजत, लेकिन कुछ एस ओ पीज होती हैं, प्लीज़ उसको फॉलो किया करें। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
0: सर जी कैसे हैं आप?
3: दुआएं आपकी जनाब।
0: सर गला खराब आपका, ऐसे
3: करें बस जरा मौसम चेंज हो रहा है ना
0: सर, बस मौसम चेंज हो रहा है। सईद ख्वाजा साहब
3: फराम कदीराबाद मुल्तान,
0: कदीराबाद मुल्तान से, मुल्तान शहर से जी कॉल आई है। सर क्या कहना चाहेंगे, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए क्या जरूरी है?
3: बस दूसरों का ख्याल रखें, आपकी जिंदगी समझ जाएगी।
0: क्या सर बड़ी मीठी बात की है वैसे आपने। ठीक हो गया, पहली बात
3: मीठे होंगे तो अच्छे लगेंगे।
0: क्या बात है जी, मीठा होना बहुत जरूरी है आजकल के लिए,
3: बहुत जरूरी है। बाकी अल्लाह का शुक्र अदा करे बंदा हर दम।
0: क्या बात,
3: शायरी है मेरे पास अपना।
0: सर शायरी
3: है मैंने निकाली हुई है सर।
0: सर बस 1:45 जी जी ठीक है,
3: ठीक है सर,
0: बहुत शुक्रिया, ठीक है बहुत शुक्रिया जी। शायरी के सेगमेंट में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। डॉक्टर सेना ने मैसेज किया, कहती हैं जी कौन लोग हो तुसी, मतलब मुझे उन्होंने कहा, मैं वैसे आप तमाम दोस्तों को जब वो कहता ना अल्लाह लियो किड़े पास से टुर पे हो, तो वो एज ए फनी वे में कहते हैं, उन्होंने कहा जी कौन लोग हो तुसी, अच्छी जिंदगी के लिए सिर्फ जिंदगी होनी चाहिए और बाकी सब कुछ हो ही जाएगा। तो ये भी वैसे एक अच्छी चीज़ है, अच्छी लाइन है, मतलब अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले तो थोड़ी जिंदगी होनी चाहिए ना, बाकी गलत बात है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। शरारती मैसेज करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
4: केरी साहब क्या ले?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे आप?
4: A1
0: पिशावर से लाला ने कॉल, आप जब A1 कहते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
4: एक तो सर आपने वो कुछ तो सब चलाया शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा।
0: ओए होए होए, उसमें था क्या वैसे? मुझे बताया ना, वो कहता क्या है? मुझे तो बस म्यूजिक ही समझ आता है, बाकी वो क्या कह के जाती है जाता है।
4: और सर इसमें ये है कि बस वो जो एक दूसरे का दीदार करते हैं ना, तो उससे पाबंदी लग गई है।
0: ओए ऐसे एक दूसरे के दीदार, ऐसी बातें ना करें, ऑनर ना की शर्म आती मुझे।
4: तो सर वो आपने टॉप तक रखा है कि जिंदगी जो अच्छी गुजरेगी तो इसके लिए क्या करना चाहिए,
0: क्या करना?
4: तो ये सब कॉलर आते हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो बहुत बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं कहता हूँ कि सर ये तो एक आपका प्रोग्राम सुनने के इससे मतलब बहुत बंदा कुछ सीख लेते हैं।
0: क्या
4: करें, बाकी ऐसे मन हो के सारे तकरीबन प्रोग्राम। और दूसरी बात ये सर, किसी की दिलाजारी ना करें, कोई किसी की बात बुरी लगी तो उसको दिल पे न ले, बस खुशी खुशी से हंस के मुस्कुराते, मतलब है कि
0: क्या बात है लाला, आप बहुत मीठे आदमी हैं माशाल्लाह, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, ठीक है?
4: थैंक यू सर,
0: बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। ये तो आपने बात की थी ना कि आपके प्रोग्राम से कुछ सीख लेता है कोई, अल्लाह करे कि कभी प्रोग्राम जो है मेरे घर में से भी कुछ सुन ले। वो तो कहते हैं भाई दुनिया से आगे ना टाइम ही ज़ाया किता है। वकास तबस्सुम, थैंक यू जी, बिग फैन है आप 101 के, बहुत शुक्रिया। नादान कहते हैं भाई मैं लड़की हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा फिर नाम बता दें, NADAN, ये आई थिंक मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ जी, नादान ही बनता है। बहरहाल अपना नाम ज़रूर बता दिया करें, अगर नहीं बताना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लड़की हैं जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। मैडम आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कहती हैं कि मेरा आज पाँव फ्रैक्चर हो गया है, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी नीयत ज़रूरी है, अच्छे अमल और अच्छे दोस्त जो आपके दर्द में आपका सहारा बने। सबसे पहले तो जी आपके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दें, आमीन। इसका ढेर सारा ख्याल रखें आप। वालेकुम सलाम, आपने मैसेज किया और आपने बड़ी अहम बातें बताई अच्छे दोस्त के हवाले से। दोस्ती आजकल बड़ी हम आम सा वर्ड बोल देते हैं कि ये मेरा दोस्त है, अच्छे दोस्त की पहचान जो है वो दोस्तों आजकल के टेन्योर में, आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। एक तो ये है कि इंसान की नीयत क्या है, आपको गैब का इल्म नहीं है, आप नहीं पहचान सकते कि आपके फ्रंट पे आपके सामने जो शख्स है वो आपके हवाले से दिल में क्या नीयत रखता है। ये चीज़ें ना अमल से ज़ाहिर होती हैं, तो जो भी आपके रिलेशन में होते हैं उनके अमल से चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि वो आपके साथ मुखलिस हैं। और एक लाइन एक दफ़ा मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल की थी कि सबसे खूबसूरत चेहरा वही है जिसको आप मुसीबत में, मुश्किल वक्त में आवाज़ दें और वो आपकी आवाज़ में आमीन कहे। तो ये एक बहुत गहरी बात है कि सबसे खूबसूरत चेहरा वही है जिसको आप मुश्किल में, किसी भी मुसीबत में आप आवाज़ दें तो आपकी आवाज़ पे आमीन कहे, मतलब आपकी आवाज़ पे जी करे कि जी मैं हाजिर हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा जी अस्सलाम वालेकुम, शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच जी आपके मैसेजेस का। दोस्तों इस पोस्ट को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि नए लोग भी हमें ज्वाइन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी।
5: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
5: कैली भाई क्या हाल
0: है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, रेडियो ऑफ करने का बहुत शुक्रिया।
5: नहीं मैं रेडियो, मैं मेरा पहले ही ऑफ है।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, शायद कहीं से आवाज आई थी। बहरहाल प्यारा सा नाम सबसे पहले।
5: नहीं आप, आपके रेगुलर कॉलर हैं, आप पहचाने, मैं आखिर में बताऊंगा अपना नाम।
0: सर प्लीज बता दें, बादाम बहुत महंगे हैं, मेरी याददाश्त वैसे ही बहुत कमजोर है।
5: आपको तो हम याद रखते हैं ना, आप भूल जाते हैं।
0: नहीं नहीं सर,
5: हाशमी रिवाज गार्डन लाहौर।
0: रिवाज गार्डन लाहौर से सर, आप हमेशा मैसेज भी करते हैं, अच्छा लगता है। हुक्म सर।
5: अच्छा पहली बात मैं कहूंगा, कल हमारे बड़े प्यारे आरजे से, आरजे हैं सुजात खान के वालिद साहब की डेथ हुई है।
0: जी जी मैं वही बताने वाला था।
5: हाँ कल बताया था उन्होंने, विश्वा भाई ने, अतर भाई और निशान नाथर गए थे उनके जनाजे में, तो अल्लाह ताला उनकी मकसद करे
0: आमीन
5: और उनके दर्जात को बुलंद करे
0: आमीन आमीन।
5: और टॉपिक पे आने से, टॉपिक पे बात करूंगा, अच्छी जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है।
0: जी जी
5: पैसा भी एक हद तक होना चाहिए, आपकी बुनियादी जरूरियात पूरी हो
0: ऐसे,
5: लेकिन कि एक कॉलर ने कतर से की थी ना कॉल, सब कुछ पैसा है, सब कुछ पैसा नहीं है। मैंने ऐसे भी कुत्ते मिलेनियम देखे हैं, परहेजी खाना खाते हैं और बड़ा पैसा भी है उनका, लेकिन उनकी जिंदगी को जब करीब से देखा मैंने तो बड़ी, किसी की औलाद नाफरमान है, कुछ बीमारी की वजह से खा पी सकते।
0: अच्छा,
5: मेरा ख्याल है पैसा जरूरत के मुताबिक होना चाहिए। और दूसरी बात, आप दूसरों की जिंदगी में आसानियां पैदा कीजिए, उनकी खुशियां जो है ना बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं।
0: कम होते हैं
5: जितने आप दूसरों के काम आ सकते हैं ना,
0: ठीक है,
5: आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।
0: बहुत प्यारी बात की आपने सर।
5: आए
0: सर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी, जजाकल्ला। 1:27 हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2:15 तक। बंदा नाचिस को कहते हैं जी गजनफर महमूद कियानी, मेरे बैकग्राउंड में आप लिविंग लेजेंड मैडम आपदा परवीन की आवाज़ सुन रहे हो, और इनकी आवाज़ में जो सुकून है।

0: नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: सब
0: तो पहले तो सेहत दे
1: बिस्मिल्लाह करा मैं सुकला सोनी गल करा तो ना के 101 की रौनक कश्मीर की आम कश्मीर की जान उस्तादे मोहतरम बेदर फरमा मुस क्या नहीं साथ साथ बिस्मिल्ला से जी है और जिना रावत हुआ है उस्तादी में ना रावत हुई
0: मैं इश्तियाक साहब तुसा ना बहुत शुक्रिया सा माशाल्लाह इस उम्र इतनी
1: जी कुरा तुदे नी नजर कुरा नजरी ने लई गे छे सोने हो ओ सोने हो कुरा नजरी ना लई गे छे तो साजी दे पिजर टप गए से बे आखा के जिंदगी ना साथी तो नी पाबी सी ते दुनिया ती चले गे ते हुन बस अल्लाह अल्लाह करने आला आयो ते बस दुआ करो ना कि अल्लाह ताला ने जन्नत
0: फरमा आमीन आमीन आमीन सा बस अपना ख्याल रखा करो ना से दुआ करता करो
1: जी बड़ी मेहरबानी उस्ताद जी मैं कुछ बदे ने ना के ना जाना वा कदे इजाजत दियो
0: सर मैं तुसे रोक ही सकना
1: हां बड़ी मेहरबानी बहुत प्यारे इंसान हो मैं उस अजीम मां की भी सलाम और सलूट पेश करता कि जिन अजीम मां तुसे की जन्म दिता
0: तुसे बस ना बहुत मोहब्बत तुसे नहीं ते जल्दी जल्दी ना के ने किस किस ना ना के
1: अच्छा उस्ताद जी सबसे पहले ते असनी लाहौर तो रक्षा बेटी है बड़े प्यार ना जनाब आए आजकल इस्लामाबाद की शादी हुई जी उस बच्ची दी वो लाहौर आए थे तो हम उसान बाद चले गए ना उन्हें भी गुरु सलाम इस अलावा जनाब अनीला बेटी की सलाम पेश करना चाहना ये भी लाहौर तो एक साजदा बेटी है जी लाहौर तो इन्हें की सलाम है लाहौर पता है आना रहना मैं शो भी तो की सलाम पेश करना रहना इस अलावा साहब जी असा ने सारे जनाब पीढ़ी की शान है जनाब नजीर किया नहीं साहब
0: क्या बात है क्या
1: बात है सलाम नहीं देने पर कोई गल नहीं बीमार बंदा हालांकि मेरे सारे उस्ताद है तो मैं सलाम पेश कर शायद इंसारी साहब जी हैदराबाद तो ना की सलाम पेश करता करना चाहना वा तो इस अलावा जैसे कमांडर बेटी बहुत प्यारी बेटी मतलब पुरानी तो मेरी पूरी टीम की सलाम का सलूट पेश करता
0: बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखा करो बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का ये हमारे लिसनर हैं जी बड़े काबिल एहतराम और एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक प्रोग्राम में मैं शामिल करने जा रहा हूँ जी और 1:35 हो चुके हैं मुझे कहते हैं गज़नफ़र महमूद कियानी ताल्लुक मेरा जी जन्नत नज़ीर से जिसे कहते हैं कश्मीर और हफ्ते में 3 दिन दोस्तों आपसे मुलाकात रहती है जुमेरात और जुमा रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जबकि हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की महफिल हम सजाते हैं।

बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सना ने मैसेज किया है, कहती हैं जी कॉलर्स जो हैं आपके और ओवरऑल दुनिया में लोग बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह, लेकिन इतने अच्छे, अगर सारे इतने अच्छे हैं तो क्यों पाकिस्तान में इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, क्यों लोग एक दूसरे को तंग करते हैं, अगर सब इतने अच्छे हैं तो ये प्रॉब्लम कहाँ आ रहे हैं। तो इसमें मैं एक बात कहता हूँ कि जो है अगर सब इतने ज़्यादा जो हर कोई आपको पता है कि किसी न किसी इश्यूज में इन्वॉल्व है, तो ये आखिर ये खुशियाँ जा कहाँ रही हैं, जब सारे ही परेशान हैं तो ये खुशियाँ जो हैं ये कहाँ गुम जाती हैं। 1:41 आपका मेरा साथ, 2:15 तक रहेगा हॉस्टल लाइफ में। थोड़ी सी हम बात करते हैं कि बहुत मुश्किल स्टेप होता है, ज़्यादातर आप में से कुछ दोस्तों ने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अपने घर वालों से दूर गुजारा होगा अगर, तो आप लोग बेहतर फील कर सकते हैं। एक सर्टेन एज होती है, मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं, फर्स्ट क्लास से लेकर पहली से पांचवी तक मैं हॉस्टल तो नहीं लेकिन घर से दूर रहा फैमिली से, और वो जो टाइम था बड़ा मुश्किल टाइम ज़िंदगी का। चीज़ें गुजर जाती हैं, वक्त गुजर ज़रूर जाता है, वक्त की एक सबसे अच्छी आदत यही है कि गुजर जाता है, लेकिन मुश्किल वक्त ना थोड़ा सा, तो मैं बड़ा जहन में सोचता होता था कि यार मुझे क्यों घर वालों ने, मैं पता नहीं कहीं से उनको रोड से मिला हूँ, क्यों मुझे सबसे अलग किया हुआ है, सारे बहन भाई इकट्ठे रह रहे हैं मैं अलग हूँ। तो हॉस्टल लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, और ये सबसे ज़्यादा जो फील होता है वो आपकी ना जो माँ बाप दोनों करते हैं, फादर जो होते हैं वो एज ए, चूँकि उन्होंने घर की कमान संभाली होती है, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सख्त डिसीजन लेने होते हैं, तो प्रिटेंड करते हैं कि उनको फ़ील नहीं होता, माँ को सबसे ज़्यादा फील होता है। और जो छोटा आपका बच्चा होता है या आप हॉस्टल लाइफ छोटी एज में अगर आप गुजार रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ासकर इनिशियल स्टेजेस पे जब आप अपने बच्चों को हॉस्टल में या अपने से दूर करते हैं तो वो सर्टेन टाइम जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक कायनात का निज़ाम है कि इंसान अपने आप को जिस हाल में ढालता है, शुरू में प्रॉब्लम ज़रूर होती है, मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम आता है कि आप उस चीज़ के आदि हो जाते हैं, मतलब तकलीफ़ कम नहीं होती, एहसास कम नहीं होता, आप उस चीज़ को ना बियर करने का मतलब सहने के आदि हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी के निज़ाम चलाने शुरू कर देते हैं। आपने बहुत छोटी एज में देखा होगा बच्चे हॉस्टल्स में, ख़ासकर जो कैडेट कॉलेज में जाते हैं, या कुरान हिफ्स करने के लिए बच्चों को घरों से दूर जब मसाजिद में या मदारस में दाखिल किया जाता है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल पीरियड होता है, जितना वो मुश्किल टाइम देखते हैं इतना ही पेरेंट्स जो हैं वो मुश्किल टाइम देखते हैं, लेकिन पेरेंट्स ख़ासकर माँ और बाप जो हैं वो उन्हीं की भलाई के लिए कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जो है ये आकर इनका जो ज़िंदगी संवर जाएगी। और आजकल के दौर में तो आप जानते हैं एजुकेशन आपके पास नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है तो आप मार्केट में कंपीट नहीं कर सकते, हर कोई डॉक्टर तो बन नहीं सकता, आजकल के दौर में डॉक्टर बनना तो आसान नहीं है। ये 5-6 डॉक्टर मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ मुझे ये बताएं कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए आजकल के दौर में कितने पैसे चाहिए, ये अमाउंट लाजमी आपने कोट करनी है ताकि हम अंदाज़ा कर सकें कि ये जो लोग जिनकी यंग जनरेशन है, जिन्हें हम नवा नवा ब्याह होया है, इन्होंने अगर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है तो ये कैसे बनाएंगे। टाइम कम है, हम नेक्स्ट सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं, डॉक्टर वाले बात का जवाब मैं ज़रूर ऑनर करूँगा कि कितने पैसे लगते हैं।

0: चलें जी दोस्तों, अब हम लाइव कॉल जो आपके प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपने जस्ट जो है वो अपने अपने अंदाज में शायरी सुनानी है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस सेगमेंट को फॉलो करना है। अब जो लोग कॉल कर रहे हैं वो हमने जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से टॉपिक रखा था उस पर हम बात नहीं करेंगे, और सुजात भाई के हवाले से इस प्रोग्राम में मैंने बताना था, वो ऑन एयर हमारे कॉलर ने बताया कि उनके फादर की डेथ हुई फ्राइडे को, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। सुजात खान FM 101 की एक बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत प्यारी आवाज़ और सीनियर आर्जी हैं वो हमारे, अल्लाह ताला उनकी पूरी फैमिली को सब्र दे। अब हम आपकी लाइव कॉल 0511111001 0519202540। क्या करना उन दिलों में रहकर जो आपके नहीं। तो नेक्स्ट पहली कॉल इस सेगमेंट की, कौन हमारे साथ मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। अब्बासी साहब,
1: आप इस बात की बात कर रहे
0: हैं? जी जी सर, मैं पहचान ली, क्या सुनाएंगे सर?
1: बाकी बातें तो पहले हो गई हैं, आप शायरी
0: सुनाएंगे? जी जी
1: सर, वो है कि खिजा की रुतबे गुलाब चेहरा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये
0: है।
1: जरा सी गलती तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, तो ऐसे बातों से बेताल्लुक बना के रखना
0: कमाल ये है।
1: जिंदगी आवाज आ रही है? हाँ, वो नहीं आ रही।
0: जी जी आ रही है, मैं कह रहा हूँ कमाल ये है।
1: किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है।
0: कमाल ये है, क्या बात है, क्या बात।
1: किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है।
0: कमाल ये है।
1: वह जिसको देखे तो दुख पलट कर लड़खड़ाए शिकस्त खाए, लबों पे अपनी वह मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है।
0: कमाल ये है, क्या
1: कहने भाई। शेर देखिएगा कि हजार ताकत वो सौ दलीलें, फिर भी लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत दुआ के खुशबू बसा के रखना कमाल ये
0: है। कमाल ये है, क्या
1: बात है, गुलाब चेहरा बना के रखना
0: कमाल ये है, क्या बात है।
1: बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। तमाम सुनने वालों को निजाफी ममीद उल्साई
0: बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत प्यारे अंदाज में आपने एक नज़्म में सुनाई, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह लियो कॉल थोड़ी मिल गई। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: अंसारी साहब,
2: तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए,
0: तू ना आया तो हम चले आए।
2: ताकि हमारे यहाँ 10 बजे से नशरियात रही है, फिर भी हमारी मोहब्बत देखे तो हम आपके पास आ गए।
0: बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, मैं कंट्रोल रूम को बताता हूँ, वो कुछ करते हैं, ठीक है।
2: अच्छा, तो शेर तो सुनेंगे या खुद
0: मैंने सुनाए सुनाए सुनाए
2: हाय हाय हाय शेर सुने आप अपना। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे, हाँ तो करते हैं
0: सर, मैं
2: हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा को
0: दिखाई ना दे, क्या बात है।
2: खतावार समझेगी दुनिया तुझे, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, इतनी ज्यादा सफाई ना दे,
0: सफाई ना दे
2: कि अपने सिवा को दिखाई ना दे,
0: दिखाई ना दे। बहुत शुक्रिया।
2: सुने सुने सुने सुने, ये रुसवा करेगा तेरे प्यार को, ये रुसवा करेगा तेरे प्यार को, सजाए उसको दे रिहाई ना दे,
0: तन्हाई ना दे, क्या बात है।
2: रिहाई रिहाई
0: रिहाई ना दे,
2: सजा इसको दे रिहाई ना दे,
0: रिहाई ना दे
2: खुदा। हाँ, एक और, ये काली घटा और ये जुल्फे तेरी, ये काली घटा और ये जुल्फे तेरी, साया इसका दे जुदाई ना दे,
0: जुदाई ना दे। अंसारी साहब छा गया आप,
2: अपने सिवा को दिखाई ना दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना اللہ حافظ جی
0: بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. انصاری صاحب حیدرآباد سے ٹرانسمیشن, اگر ایم سی آر میں میری آواز سنی جا رہی ہے تو دیکھ لیجیے گا سر, آپ کی محبت کا شکریہ. نیکسٹ کال ہمارے ساتھ کون موجود ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 051-111-000-101. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر؟
3: جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ لاہور سے ارم بات کر رہے
0: ہیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ارم, بہت شکریہ لاہور سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. کیا سنائیں گی؟
3: جی سب سننے والوں کو السلام علیکم, سب سننے والے سماچر کو ہری داخل کو, اور شاعری تو ہے لیکن دور میں سنائیں گے.
0: سنائیں جی.
3: زندگی بھر

यार विछड़े यार तू जिंद मेरी पता नहीं कदों मेरे होने गे नैने कमल होए ने रो रो के नैने कमल होए ने रो रो के।

0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: मेरा भी तो ये कहना कि उसके लिए एक शायरी है कि डब्बा डब्बा डब्बा डब्बे में पान, डब्बा डब्बा डब्बा डब्बे में पान, आई लव यू अनिल आपकी जान।
0: बहुत शुक्रिया जी, इसका जवाब वो खुद ही देंगी। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, खुश रहें जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल जी, डब्बे में डब्बा, ये हम जब बचपन बहुत ज़िंदगी के हसीन वक्त में जब हुआ करते थे, ये शेर स्कूल टाइम में लिखा करते थे। टीचर्स डे वैसे आ रहा है उस टाइम, टीचर्स के हवाले से भी और अपने दोस्तों के हवाले से ये ख़त, इस तरह के अशआर जो हैं वो लिखे जाते थे। 0511111001 पर आप इस वक्त हमें खूबसूरत शायरी सुना रहे हैं। मुझे लगता है कि इरम ने एक दफ़ा हमें फ़नी शायरी भी हमें सुनाई थी, अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर सुनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: सर, खुश आमदीद। सर बहुत शुक्रिया, लाहौर से आप पार्टिसिपेट, क्या सुनाएंगे सर?
2: सर मैं सिर्फ आपको दो शेर सुनाऊंगा।
0: सर सुनाए सुनाए
2: सुने सर कंदा, ये अभी अगर आपको अभी गाना सुना रह गई है ना, उसके मुताबिक मैं शेर सुनाऊंगा आपको। कंदा चंगी मंदी सजना कोलो, ओ चंगी मंदी सजना कोलो, ते सवारी हो जांदी ते यार यारां दा गिला नहीं करे दे, ओ यार यारां दा गिला नहीं कर दे, ते असल प्रीत जिना दी, ओ यार यारां दा गिला नहीं कर दे, ओ असल प्रीत जिना दी।
0: क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया सर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। कुछ और सुनाना चाहेंगे आप?
2: सर मैं बस, मेरा दिल कर रहा था आज भाई से बात करने का, मैं पिछले डेढ़ घंटे से कॉल मिला
0: सर, मोहब्बत सर, मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
2: बड़ी मेहरबानी सर, अपना ख्याल रखिएगा,
0: अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
3: बंदा फरवत से आ गया मैं।
0: सर बहुत शुक्रिया, क्या सुनाएंगे सर?
3: आज ये मैं चाहता हूँ कोई नौजवान नस्ल को शामिल करूँ, नौजवान नस्ल के शायर है आमिर सईद, बड़े अच्छे शायर है।
0: ठीक हो गया,
3: तो उनकी एक नज़्म शामिल करूंगा मैं।
0: जी जी सुनाए सर।
3: नज़्म का उन्वान है अजब पागल सिर्फ ठीक है।
0: उन्वान दोबारा बताइएगा सर, आवाज कट गई थी थोड़ी सी।
3: अजब पागल सी लड़की है।
0: अजब पागल सी लड़की है।
3: अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर रोज कहती है बताओ कुछ नया लिखा।
0: क्या बात,
3: मैं जब भी उसे कहता हूँ कि हाँ एक नज़्म लिखी है मगर उन्वान देना है, बहुत बेचैन होती है, वो कहती है सुनाओ। मैं उसे अच्छा सा एक उन्वान देती हूँ, वो मेरी नज़्म सुनती है और उसकी बोलती आंखें किसी मिसरा किसी तशबीह पर यूं मुस्कुराती हैं, मुझे लफ्जों से किरने फूटती महसूस होती हैं। वो मेरी नज़्म को अच्छा सा एक उन्वान देती है और इसके आखिरी मिसरे के नीचे इसके अदाए बेनियाजी से वो अपना नाम लिखती है। मैं कहता हूँ सुनो ये नज़्म मेरी है, तो फिर तुमने क्यों अपने नाम से मंसूब कर ली है। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखें मुस्कुराती हैं, वो कहती है बड़ा सादा सा रिश्ता है कि जैसे तुम मेरे हो इसी तरह इस तरह ये नज़्म मेरी है। अजब पागल सी लड़की है, अजब पागल सी लड़की है।
0: क्या बात है जी, क्या बात, बहुत शुक्रिया जी,
3: अल्लाह
0: हाफिज, थैंक यू सो मच जी, आपकी इन खूबसूरत अल्फाज, कीमती वक्त आप तमाम दोस्तों का। हर इंसान की ज़िंदगी में दोस्तों एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि जब आप एक इस ऐसे स्टेज पे खड़े होते हैं जहां आप ये लाइन कह सकते हैं कि फिर मैंने वो सब देख लिया जिसे सोचते हुए मुझे डर लगता था। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: वालेकुम सलाम, क्या नहीं भाई, कैसे
0: हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना बहुत प्यारा सा नाम बताइएगा
4: जी। मतलब इरफान बात कर रहा हूँ, तो पंजाबी शायरी शामिल कर
0: सर तुसी करो लेकिन रेडियो बंद कर दो
4: जी।
0: آپ شاعری شامل کریں لیکن ریڈیو بند کر دیں پلیز.
4: ریڈیو بند کر دیا نا اب ٹھیک ہے؟
0: اب ٹھیک ہے سر, سنائیں سر.
4: وہ کہندا ہے الف آو مائی تینوں اللہ لے آوے, آو مائی تینوں اللہ لے آوے, کیڈے مہنے یار دوائے نے, ایک اک دا بار نہیں سی سن دی جنڑی, ایک اک دا بار نہیں سی سن دی جنڑی, لکھاں منا دے بار چوائے نے.
0: کیا بات,
4: متھے تے ہاتھ دھرنا نہ ہی سکھیا, تساں در در دے سلام کرائے نے, غلام فریدا شالہ وسنی جوکاں ساڈے ہسدے نین روائے.
0: کیا بات ہے عرفان صاحب, بہت شکریہ, خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے,
4: تمام سننے والوں کو سلام آپ کے لیے,
0: جزاک اللہ, اللہ حافظ. نیکسٹ کال جی, ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ 0519202540. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعید خواجہ فرام قدیر آباد ملتان.
0: خواجہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر, کیا سنائیں گے؟
5: ہاں جی, میرے پاس حمد ہے جی, اور میرا تخلص بھی شہید ہی ہے, میری اپنی ہے یہ.
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سنائے سر.
5: ہاں جی ہاں جی. اے رب دو جہاں میری وفاؤں میں تو اوصاف رکھنا,
0: کمال ہے
5: آ کر میں زمان ہوں, جو خطائیں میری تو معاف رکھنا,
0: معاف کرنا.
5: میں خطا کار اوگنہار اور تیری رحمت ہے لا محدود, میں خطا کار اوگنہار اور تیری رحمت ہے لا محدود, اپنے کرم سے میرے گناہوں پر اپنا تو توا غلاف رکھنا,
0: غلاف رکھنا.
5: ذرا بولتے آئے, ذرا حوصلہ مجھے دیتے آئے.
0: جی جی, میں آپ کے ساتھ ہوں, اور بہت خوبصورت الفاظ اور بہت گہری باتیں آپ
5: موسن ہیں ساری,
0: غلاف رکھنا. کیا رب,
5: ذرا بولتے آئے, ذرا حوصلہ مجھے دیتے آئے.
0: جی جی, میں آپ کے ساتھ ہوں, اور بہت خوبصورت الفاظ

0: ने मेरा तकिया और चादर हो तो ही देखी बरिया की।
1: क्या बात है।
0: तकवा बने मेरा तकिया और चादर हो तो ही देखी बरिया की। रहे साया आलिया बागा मुझे तू मिस गया सलाम रखना।
1: सलाम रखना। क्या बात है।
0: ना खौफ ना रे जहन्नम ना मैं ताले फिर दो से बरिंगा। ना खौफ नारे जहन्नम ना मैं ताले फिर दो से बरिंगा। फक्त इल्तजाए सईद अपनों में मेरी तू जियाफ रखना।
1: जियाफ रखना। क्या बात है। क्या बात
0: है। जियाफ ये निकाला मैंने जियाफत से। अच्छा दो मिनट और हैं मेरे साथ।
1: जी जी सर आप सुनाए कोई मसला नहीं।
0: दिल जख्मों से मखमूर ये उन्वान मैंने रखा हुआ है इसका।
1: ठीक
0: है। अरफाना ही कलाम ही है।
1: ठीक है ठीक है।
0: मैं हुआ मजबूर और तू रहा जमन में बेकसूर।
1: बेकसूर।
0: सब मौसम तुझ पे निछावर और मैं मौसमों से दूर।
1: क्या बात है जी।
0: तेरा मिला पहाड़ों से मेरा रिश्ता दर्द खीरा।
1: क्या बात।
0: खार बनी है यारे जिगर दिल जख्मों से मखमूर।
1: कमाल।
0: तू चाहे तो समझ सकती है यूं जीस्त मेरी। तू चाहे तो सफर समझ सकती है यूं जीस्त मेरी। गिरे बिजली विशाल की तो जलते हैं हम मिसले टूर।
1: क्या बात है जी। क्या बात
0: है। शैबा हो तेरे मिलन का कर इस दिल नादा को। शैबा हो तेरे मिलन का कर इस दिल नादा को। जन्नत मेरे किस कारण क्या करूंगा ऊर तो ऊर।
1: क्या बात है जी। क्या बात है।
0: साकी नाकी साकी मैं पिला वादत की तौहीद के प्याल में। साकी मैं पिला वादत की तौहीद के प्याल में। नशा हो दो आदशा मैं शब तक रहे जिसका सरूर।
1: क्या बात है जी। क्या बात है।
0: मजार मजाज में देखा तुझे हुआ हकीकत से आशना। मजाज में देखा तुझे हुआ हकीकत से आशना। बीमार था अजल से दवाए फितरत दे जरूर।
1: दे जरूर। क्या बात है जी। क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर।
0: बहुत एक आखिरी शेर है सर।
1: जी जी।
0: वफा करके हासिल हो जफा इस दारे फानी में। वफा करके हासिल हो जफा इस दारे फानी में। जख्म जख्म हो के सईद बसरान का दुनिया से दूर।
1: दुनिया से दूर। सईद साहब बहुत शुक्रिया। बहुत कमाल के अंदाज से आप लिखते हैं और खुश रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ठीक है
0: जी। आपकी आपकी जरा नवाजी है कि आपने मुझ गरीब को अपना टाइम भी दिया और दाद भी दी।
1: सर जजाक
0: शायर की कीमत दाद ही होती है।
1: दाद ही होती है सर। बहुत शुक्रिया। जजाक जजाक खुश है। खुश हैं जी। माजद के साथ अगर आप मेरी इस वक्त आवाज़ सुन रहे हैं सईद साहब आप बात कर रहे थे तो इस दौरान जो डिस्कनेक्ट हुई है आपकी कॉल तो मैं आपसे माजद चाहता हूं चूँकि आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छी शायरी सुनाई है। इस तरह कॉल मुझसे मुनक़ता हुई तो मैं आपसे ऑन एयर माजद करता हूं। बहुत शुक्रिया सईद साहब। आप नेक्स्ट कॉल कीजिएगा लाजमी। आप कुछ कह रहे थे कुछ आखिरी अल्फाज से। बहरहाल माजद करता हूँ मैं उसकी। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा। ठीक है।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं। ठीक है
2: अल्लाह का शुक्र है। सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: सबको सलाम।
2: अच्छा एक बात और भी अच्छी सुनाऊंगी कि आप कहते हैं कि नेमत सारी दुनिया की चीजें अल्लाह की नेमत है। अगर ये भी है कि अच्छा खावन अच्छी बीवी ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अच्छी औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है।
1: बहुत बड़ी नेमत। इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं।
2: अब आपको मैं ये सुनाती
1: हूँ। सुनाए जी सुनाए।
2: ये रह के पता नहीं मैं बात का मैंने बना लिया है।
1: सुनाए।
2: अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। अपने पे आए तो कहते हैं आजमाइश की घड़ी है।
1: आजमाइश की
2: तो जी अपने पे आए तो कहते हैं आजमाइश की घड़ी है। दूसरों पे आए तो कहते हैं नियत की घड़ी है।
1: क्या बात है। क्या बात है।
2: यही बात है ना बेटा।
1: बिल्कुल सही बात
2: है। वैसे ही कहते हैं ना।
1: ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे। इस पे ना बहुत लंबी बात हो सकती है जो आपने बात की है। फिर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया उसने कॉल की थी। ठीक है। अल्लाह ने वाला। जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जिसने कॉल ना। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी कौन हमारे साथ मौजूद है। अब शायद سعید صاحب کی کال ڈسکنیکٹ ہو کے اب انہوں نے

सुन रहे होंगे तो सर आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी, माजत, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। आप हमारे लिए, आप सब कॉलर्स जो हैं, सब लिसनर्स जो हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। सना जो आप ट्रैक कह रही हैं वो नहीं मिल पा रहा, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की अपने ड्यूटी ऑफिसर से, लेकिन वो कहते हैं कि चुप करके तुसी प्रोग्राम करो, आते साथ गाने मांगना शुरू करते हैं ढेर सारे। 051111100101 051920254।

0: अस्सलाम वालेकुम जी,
1: जी वालेकुम सलाम,
0: कैसे हैं आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं?
0: अल्लाह का एहसान। अपना प्यारा सा नाम और फिर क्या सुनाएंगे सर आप?
1: जी मेरा नाम नासिर अब्बास है, इस्लामाबाद से कॉल कर रहा हूँ।
0: नासिर भाई बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से आपने कॉल की। सर क्या सुनाएंगे आप?
1: जी हम आजादी की एक नज़म है, वो सुनाऊंगा आपको।
0: ठीक है, सुनाए सुनाए सर।
1: मेरी तौबा मैं केड़ा कुफर कर लिया, तू बशर हूं मैं तेनू खुदा आखिया है। हेलो,
0: जी जी आप सुनाए, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल।
1: मेरी तौबा मैं केड़ा कुफर कर लिया है, तू बशर हूं मैं तेनू खुदा आखिया है। तेरे घर नू मैं जिगला सजेंदा रही हूं, तेरी चौकट नू मैं सजदागा आखिया है। सच्ची तो भाईवार सच्ची जुहा, तेरी पूरी नू मैं सभा आख्या है। तेरे वा तेरी एहसान मिलदा रहूं, तेरी जिदनी नू तेरी अदा आख्या है। भावे अपने इलाके च बड़ी ढोर हाई, तेरे दर ते तो खुद नू गदा आख्या है। मेरा सोना सजन एडा भोला ना बन,
0: एडा भोला ना बन।
1: हाँ मैंने मेरा सोना सजन एडा भोला ना बन, मैंने इलमे जो टाइम मैंने क्या आख्या है। ये सदमा तो आके उन्हें खांदा वगा है, मेरा चन मैंने तां बेवफा आख्या है।
0: बेवफा आख्या है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने इस्लामाबाद से पार्टिसिपेट किया और पंजाबी में बड़ी ज़बरदस्त। आपने ये आपने खुद लिखी है या किसकी है ये?
1: नहीं, मैं वो आपको सुना रहा हूँ ना सर। ये सदमा तो आके उन्हें खांदा वगा है, मेरा चन मैंने तां बेवफा आख्या है। आख्या तो तैन सजन आख्या है, वेख्या तो तैंता मेरा वेख्या है। उस बशर दी मैं सोचा नु खा दे लिया, जिस बशर तेन बैरी निगाह वेख्या है। ये सर हमारे जान का एक शायर है, आकिब सकलानी।
0: अच्छा अच्छा,
1: ये उसकी नजम है जी। असल में बेसिकल जंग का हूँ।
0: जंग से आप ठीक हो गया? वो मुझे थोड़ा बहुत लहजे से अंदाजा हो गया था। और इसमें ये लाइन बड़ी मजे की है कि तू भोला ना बन।
1: सर हम हैं तो बेस पर जान के, लेकिन प्रोग्राम आपका रोजाना सुनते हैं
0: सर। जजाकल्ला जजाकल्ला सर, बहुत शुक्रिया अपना। बहुत ज्यादा ख्याल रखें और उस भोले को कहें कि भोला ना बड़ो। ठीक है, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़ जी। ज़िंदगी में मुश्किलें पैदा करके दूसरों के लिए, और जब कोई भोला, वैसे ये एक ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको चीज़ों का पता चल जाए। कभी आपकी ज़िंदगी में इस तरह हुआ है कि एक शख्स के हवाले से आपको पता है कि उसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, और वो इसके बावजूद आपको सच्चाई का भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको घुमा रहा है। और ये इंसान वहीं पे करता है जहाँ पे रिश्तों की लाज रखता है, किसी वजह से, किसी मोहब्बत की वजह से, किसी ख्याल की वजह से, किसी लाज की वजह से, कि फिर लाइन वही आती है कि तू भोला ना बन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम
0: सर,
1: क्या क्या है? ठीक है,
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप बताएं कैसे हैं, सेहत कैसी है?
1: श्यालकोट
0: से सर, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। क्या सुनाएंगे सर?
1: मैं बस मुख्तसर से एक रुबाई सुनाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है।
0: जी जी सर, सुनाएं सर।
1: मैं दूसरे जो कॉलर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम दें।
0: ठीक है,
1: ताकि किसी और को भी मौका मिल सके।
0: ठीक है सर।
1: और एक और ये कहना है कि एक शख्स के खो जाने का डर क्यों नहीं जाता?
0: क्या बात,
1: एक शख्स के खो जाने का डर क्यों नहीं जाता? ये बोझ मेरे दिल से उतर क्यों नहीं जाता?
0: क्यों नहीं जाता?
1: मंजिल पे पहुंच के भी उसे खोना पड़ेगा, मंजिल पे पहुंच के भी उसे खोना पड़ेगा, मंजिल पे पहुंच के भी उसे खोना पड़ेगा। ये तय है तो फिर शौक के सफर क्यों नहीं जाता?
0: क्यों नहीं जाता?
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। शौके सफ़र क्यों नहीं जाता, मतलब ये बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने कही है। इसको अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, या आप अंदाज़ा करें कि कुछ रास्ते जो होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे होते हैं, आपको पता होता है कि इसका कोई हासिल वसूल नहीं है, आप रोज़ बरोज़ वो सफ़र करते हैं, और लेकिन आपका दिल भी ये जानता है, जिसके लिए आप सफ़र कर रहे होते हैं उनका दिल भी ये जानता है कि ये मामलात बाज़ ना बिल्कुल क्लियर होते हैं कि यार ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की तरफ से मौजे वो एक अलग चीज़ है, वो एक फ़र्क चीज़ है, वो हर किसी के लिए ख़ास चीज़ें नहीं होती, लेकिन दुआ ज़रूर किया करें, दुआ में बहुत ताकत होती है। अगर नहीं भी कबूल होती तो ये तो हमारा ईमान है ना कि उसके बदले में हमें बहुत कुछ मिलता है, तो शो के सफ़र क्यों नहीं जाता, शायद ये लाइन बोली थी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैनी साहब बहुत शुक्रिया आपने दोबारा ज्वाइन किया, क्या सुनाएंगे? जी सर सुनाए सुनाए। ठीक है, अगर आप वक्त की वजह से कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, हम इसको दो बीस ठीक हो गया सर, ठीक। क्या बात है जी, क्या बात। हजारा पुराने छेड़ा। क्या बात है जी, क्या बात है। उम्र सारी।
1: बहुत शुक्रिया
0: बहुत शुक्रिया जी नजीर
1: जी,
0: साहब, जजाकअल्लाह, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का,
1: आमीन।
0: आमीन, बहुत शुक्रिया। आज के इस महफिल की लास्ट कॉल हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी, देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया सही साहब, वो असल में मुझे ये गिल्ट फील हो रहा था कि आप बात कर रहे थे तो इस तरह नामुकम्मल।
1: जजाक
0: जजाकअल्लाह,
1: हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम लोग हैं।
0: बहुत
1: अब
0: शुक्रिया
1: मेरी कॉल मिल गई है तो मैं कहता हूँ एक शेयर एक चीज और सुना दूं।
0: सर, चलो सुना दे सुना दे।
1: मेरी मेहरबानी जनाब जी, और है भी सर की मजा आएगा,
0: ठीक है
1: और
0: सुनाइए।
1: उसका है अपना क्या कहते हैं अल्फाना ही कला नहीं। हाँ,
0: जी जी सर सुनाए।
1: तेरी मेरी एक मर्जी तो एक दूसरे तू जुदा क्यों, तू मैं दी तकरार है तो मैं तेरे तू फिदा क्यों,
0: क्यों
1: मन दे मैलियां दी मैल दो में आबे रहमत नाल, गफार भी है सतार भी है तो ऐब मेरे बेरिदा क्यों, फस गई दुखा दे भंवरे च कश्ती मेरी बगा दी, डूब वन अरमान मेरे तो तू मेरा ना खुदा क्यों।
0: क्या बात है
1: ये सराय की आपको समझ आती
0: जी
1: है
0: जी,
1: ना?
0: मुझे समझ आ रही है, समझ आ रही है।
1: अच्छा, इश्क दीरा सिर उठे ते अखी तो खून उठे, वो कहते हैं आंखों से खून बह रहा है
0: जी
1: और
0: जी
1: इश्क दीरा सिर कट दीरा है,
0: क्या।
1: इश्क दीरा सिर उठे ते अखी तो खून उठे, सिर दे मन मिराज इश्क दी तो दुखा दी सजा क्यों,
0: क्यों
1: हिजर दी भाग गुलजार करे ते बांबड़ बल्ले शहीद विशाल दा,
0: क्या बात है।
1: हिजर दी भाग गुलजार करे ते बांबड़ बल्ले शहीद विशाल दा, ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਕਿਉਂ
0: ਕਿਉਂ
1: ਦੁੱਖਣ ਜੋ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਇਹ ਉਸਕਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਕਿਉਂ
0: ਕਿਉਂ
1: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ
1: ਬੜਾ ਆਪਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ
0: کافی حد تک میں سمجھ لیتا ہوں. بہرحال بہت شکریہ اپنا, بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. بہت شکریہ, اللہ حافظ. سمرا خلیل جی ہماری لسنر ہیں اسلام آباد سے اور بہت اچھی رائٹر بھی ہیں ماشاء اللہ, خود لکھتی بھی ہیں اور ان کی جو بک ہے وہ ایک پبلش ہونے جا رہی ہے, اس حوالے سے آپ کو ہم ڈیٹیل بتائیں گے اور آپ نے لازمی اس کو دیکھنا ہے. سمرا مغل, آپ اس جو بک کا نام ہے وہ بک انتھولوجی اس کا نام ہے, اور اس کے آرڈر بھی آپ لوگ آن لائن کر سکتے ہیں. اس کے آرڈر ڈیٹیل کہاں آپ کو مل سکتی ہے اس کی, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل شامل کروں گا. مجھے فیس بک پہ آخری کچھ پیغامات موصول ہوئے ہیں, ان کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. آج میڈم انیلا جو ہیں وہ نہیں پارٹیسپیٹ کر سکی, اب اللہ جانتا ہے کیا ریزن ہے, اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے. ہم سب جو ہے وہ لسنرز مجھے یاد رہتے ہیں, کچھ کے نام لے پاتا ہوں کچھ کے نہیں, تو جن کا نام نہیں آنر کر سکتا تو پلیز ناراض مت ہوا کریں. ہمارے اشتیاق صاحب نے دوبارہ شاعری سنانی تھی, وہ بھی جوائن نہیں کر پائے. عریبہ نے لکھا ہے کہ دل کو تو روک لیا کہ کرے پردہ پوشی, مگر آنکھوں نے میرا راز مگر کھول دیا. ہے اس کی تمنا کہ قبول ہو دعائیں, ہم نے بھی اس کے ساتھ آمین بول دیا. آخری شعر لکھتی ہیں کہ دھڑکے ہی جا رہا تھا دل بے وجہ, ہم نے دل کی دھڑکنوں کو تھمنے کا بول دیا. بہت شکریہ سیدہ عریبہ شاہ, آپ ہری پور سے ہمارے ساتھ موجود رہی. آپ تمام دوستوں کی چاہتوں محبتوں کا بہت شکریہ. بندہ انا چیز کو کہتے ہیں جی غزنفر محمود کیانی, آپ مجھے سن سکتے ہیں ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب رات 12 بجے سے لے کر آلموسٹ 2:15 بجے تک ساتھ رہتا ہے. اور اس کے علاوہ ہاؤز ایٹ اسپورٹس کی بیٹ کا میں پروگرام کرتا ہوں تھرسڈے اینڈ فرائیڈے رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک. سوشل میڈیا پہ آر جے غزنفر کیانی کے نام سے ایک آفیشیل پیج ہے, اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں, اور غزنفر کیانی کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم مل جائیں گے. آپ کی تمام کالز, تمام ایس ایم ایس اور جتنے بھی پلیٹ فارم سے جہاں جہاں آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. زندگی اچھی گزارنے کے لیے کیا ضروری ہے, اس پہ بے تحاشا فیڈ بیک آیا, بہت اچھا لگا. ہر کسی کی اپنی اپنی اوپینین تھی, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تمام دوستوں کی جو رائے ہے اس کو آن ایئر کر سکوں. یہ پروگرام میرے لیے خود فزیکلی بہت تھراپی کا کام کرتا ہے. آپ یقین جانیے کہ اوور آل پورے ویک کی اتنی زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے, اتنے زیادہ معاملات, کام کاج. آج تو بالکل ہمت نہیں تھی, لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ایک دفعہ بس پہنچ جائیں ریڈیو اسٹیشن, پھر 2 گھنٹوں کا سمجھ نہیں آتی, پتہ ہی نہیں چلتا. آپ لوگوں کی دعاؤں کا, آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک بات, کہ زندگی میں کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کا دل نہ دکھے. اپنے اساتذہ کرام کا ہمیشہ احترام کریں, والدین کا خیال رکھیں, ان کی خدمت کریں, اور ایک دعا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ضرور کیا کریں کہ رب تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس دنیا میں اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے کا محتاج نہ کریں. آمین. زندگی شرط ہے دوستو, انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اور ایک خاص دعا پلیز اپنے بھائی کے لیے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کی زیارت کروائیں. آمین. زندگی شرط ہے, انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. تب تک رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال, और जाते जाते उस्ताद असद अमानत अली ख़ान की आवाज़, मेरे दिल की आवाज़ आप सब के लिए। अल्लाह हाफिज़।

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 F.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।